सुप्रभात। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और साथ ही FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी रांची है। आज दिन है शनिवार, शक संवत की ज्येष्ठ माह की 1948 की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 जून सन 2026। प्रातःकालीन प्रसारण के साथ हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: हिंदी में समाचार सुनिए दिल्ली केंद्र से। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120

0: स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है, 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगे। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमारस्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है खेती किसानी। इस कार्यक्रम में आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे फूलों की खेती पर। वाचन अनीता तिर्की का।
3: झारखंड में व्यावसायिक स्तर पर फूलों की खेती की असीम संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में ग्लैडियोलस, गेंदा, जरबेरा, गुलाब और कुछ हद तक कुछ खेतों में रजनीगंधा की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके अलावा गुलदाउदी, कार्नेशन, एंथूरियम, एस्टर और चमेली की खेती भी की जा सकती है। क्रोसेंड्रा को भी लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। दक्षिण भारत में इसकी खेती बहुत ज़्यादा होती है। कुछ मौसमी फूल हैं जिनका उपयोग कट फ्लावर या सजावट के रूप में होता है। स्वीट पी, कैलेंडुला, एंटरहिनम, पेंजी, एनुअल क्राइसेंथेमम, डायंथस और गेंदा प्रमुख है। इनकी खेती सीमित मात्रा में की जा सकती है। फूलों की खेती करने में आरंभ में काफी कम पूंजी की आवश्यकता होती है। ग्लैडुलस की खेती को ही लें तो एक एकड़ में लगभग 75,000 से 80,000 प्रति एकड़ फार्म की आवश्यकता होती है। अगर 2 रुपया प्रति कॉर्न का ही दाम रखा जाए तो 1.5 लाख से 1,60,000 रुपए सिर्फ कॉर्न पर ही खर्च करना पड़ेगा। जरबेरा, रजनीगंधा, गुलाब इत्यादि के पौधों पर ही आरंभ में काफ़ी खर्च करना पड़ेगा। अच्छा गुलाब का पौधा 15 से 20 रुपए में मिलेगा। एक एकड़ में लगभग 10,000 से 11,000 पौधा लग जाएंगे। इस तरह से एक एकड़ में लगभग 2 लाख रुपया सिर्फ पौधा पर खर्च करना पड़ेगा। इसी तरह जरबेरा की खेती पर भी आरंभ में काफ़ी पूंजी की आवश्यकता होगी, लेकिन आरंभ में पूंजी लगाने के बाद फूलों की खेती से 1 लाख से 1.5 लाख तक आमदनी प्रति वर्ष होती रहेगी। फूलों की खेती में दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है मार्केटिंग की। फूलों की खेती से लाभ तभी होगा जब फूलों की बिक्री हो जाएगी, इसलिए किसान भाई आरंभ में छोटे पैमाने पर खेती शुरू करें और धीरे धीरे इसकी मांग को देखते हुए अधिक क्षेत्र में करें। इस प्रकार अगले वर्ष खेती के लिए प्लांटिंग मटेरियल भी उपलब्ध रहेगा और कम खर्च में फूलों की खेती आरंभ हो जाएगी। झारखंड ग्लैडुलस की खेती के लिए उपयुक्त है। इसकी खेती वर्ष के अधिकांश समय में की जा सकती है। गर्मी में फूलों का डंठल छोटा होता है। इसकी खेती के लिए दिन का तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने से फूल अच्छा मिलता है। अधिक गर्म और अधिक ठंडा मौसम इसके लिए हानिकारक होता है। इसकी खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली जमीन जिसमें प्रचुर मात्रा में जीवांश हो अच्छी मानी गई है। हल्का अम्लीय मिट्टी भी इसके लिए उपयुक्त है और झारखंड की जमीन अम्लीय है जो कि ग्लैडुलस की खेती के लिए उपयुक्त है। ग्लैडुलस में रजनीगंधा की तरह फूल स्पाइक में आते हैं, यानी फूल का डंठल होता है जिसमें कई फूल लगे होते हैं। पौधों की लंबाई 80 से 90 सेंटीमीटर तक होती है और स्पाइक की लंबाई 60 से 70 सेंटीमीटर तक होती है। स्पाइक यानी फूल की डंठल पर 10 से 12 फ्लोरेट आते हैं जो कि अलग अलग रंग के होते हैं। ग्लैडुलस की कई अच्छी किस्में हैं। पुरानी किस्मों में अमेरिकन ब्यूटी, 2020, चेरी ब्लॉसम, फ्रेंडशिप, लिली ब्लू इत्यादि किस्में हैं। नए भारतीय किस्मों में मनमोहन, मुक्ता, मनीषा, मोहिनी, अप्सरा, आरती, शोभा, सपना, मीरा, नजराना और पूनम है। इन किस्मों को नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर और IARI नई दिल्ली से प्राप्त किया जा सकता है।
2: कार्यक्रम खेती किसानी के अंतर्गत फूलों की खेती इस विषय पर जानकारी दे रही थी अनीता तिर्की। आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। आइए सुनते हैं आज का चिंतन, संकलन एवं वाचन दिनेश कुमार लाल का।

0: धर्म का सार यही है कि मनुष्य को मनुष्य की सेवा करनी चाहिए, यानी मानव जीवन का उद्देश्य सेवा ही परम धर्म है। सेवा ही असल में मानव जीवन का सौंदर्य और श्रृंगार है। सेवा न केवल मानव जीवन की शोभा बल्कि परम पिता परमेश्वर की सच्ची आराधना भी है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, गरीबों को धन देना, अनपढ़ को विद्या देना ही हर व्यक्ति का सेवा धर्म है। असल में दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से किया गया प्रत्येक कार्य सेवा है। यदि हम किसी कामना के लिए दूसरों की सेवा करते हैं तो वो सेवा नहीं है। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हमारे मन में असीम शांति की अनुभूति होती है। हम भले ही कितने सुविधा संपन्न क्यों ना हों, लेकिन जो सुख हमें दूसरों की सेवा करने से मिलता है वो सभी सुखों में सर्वोपरि है। सेवा करने से जो संतोष प्राप्त होता है वो किसी और कर्म से संभव नहीं है। सेवा भाव से व्यक्ति दूसरों के दुखों को दूर करने की चेष्टा में अपनी परेशानियों को भूल जाता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति मानवता की सेवा में जुट जाए तो दुनिया में गरीबी, अशिक्षा, अहंकार, घृणा, पाप और क्रूरता इत्यादि अवगुण स्वतः समाप्त हो जाएंगे और तब सभी सुखी संपन्न और प्रसन्न हो जाएंगे। असल में हर देश की भाषा, संस्कृति और बोली अलग अलग हो सकती है, लेकिन सभी के कल्याण का मार्ग मानवता की सेवा ही है। हम सभी को क्रोध, घृणा, अहंकार को त्याग कर अपने भीतर दया, क्षमा और सेवा का भाव जागृत करना चाहिए ताकि समाज, देश, दुनिया में शांति स्थापित हो सके। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि इस लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि दया ही श्रेष्ठ धर्म है। अगर दीनहीन, असहाय और जरूरतमंद व्यक्ति पर दया दिखाते हुए उनकी सेवा और सहायता नहीं करेंगे तो कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता है। लेकिन जब हम एक दूसरे की सहायता करेंगे तभी हमारा घर, समाज, देश और विश्व उन्नति की ओर अग्रसर होगा। हमारे वेदों में कहा गया है कि मनुष्य, तू दो हाथों से कमा और सैकड़ों हाथों से दान कर। इसी तरह प्रकृति भी हमें यही सीख देती है कि तेरे पास तेरा अपना कुछ नहीं है, जो है वो दूसरों के लिए है।
1: ये था आज का चिंतन दिनेश कुमार लाल के स्वर में।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पहले एक देशभक्ति रचना सुनेंगे हम मुकेश की आवाज में।

दोस्तों, नया दिन एक नए अवसर की तरह होता है। इस सुबह की शुरुआत अगर ईश्वर की प्रार्थना और अच्छे विचारों के साथ हो तो पूरा दिन सकारात्मकता से भर जाता है। आइए अपने दिन की शुरुआत करें एक प्यारे से भजन के साथ। आवाज़ है अनुप जलोटा की।

दोस्तों, जीवन की भाग दौड़ में शांति और संतोष का अनुभव केवल अध्यात्म और सत्संग से ही संभव है। श्रद्धा और भक्ति से भरे इन पलों के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम आराधना यहीं संपन्न होती है।

बड़ी चतुराई से मंथरानी रानी कैकेयी के मन में कौशल्या तथा राम के प्रति ऐसे विष का बीज डाल दिया जिसके प्रभाव में सूर्यकुल के सुख समृद्धि हर्ष और उल्लास सबको एक बारगी सुखा डालने की क्षमता थी। सौत की ईर्ष्या की सैकड़ों उल्टी सीधी मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर मंथरा ने कैकेयी को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। कहती है, हे रानी, अपना मित्र या शत्रु तो पशु भी पहचान लेते हैं, परंतु तुम्हें तो अपने हित अहित की पहचान नहीं है। एक पखवाड़े से राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं और तुम्हें इसकी सूचना आज मुझसे मिली है। हे स्वामिनी, अब तुम्हारी स्थिति वही होगी जो दूध में पड़ी मक्खी की होती है। यदि पुत्र सहित राजा की चाकरी करोगी तब तो यहां रह पाओगी, अन्यथा तुम्हें भी दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। अपने अनिश्चित भविष्य की आशंका से रानी कैकेयी कांप जाती है। अब उन्हें ये भान होता है कि पिछले कई दिनों से उनकी दाहिनी आंख फड़कती रही है और रातों को बुरे बुरे सपने आते रहे हैं। वो मन में ठान लेती हैं कि मायके जाकर शेष जीवन बिता देंगी, किंतु जीते जी सौत की चाकरी नहीं करेंगी।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:55 पर दिल्ली केंद्र से क्रमशः संस्कृत और हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत डॉक्टर सुरेश राव से आपको जानकारी मिलेगी बवासीर के कारण और बचाव पर। भेंट करता होंगे संजीव कुमार लाल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरीली का वक्त होगा 7:15 पर। पर कानून की बात में सुनिएगा भेंट वार्ता, निशुल्क विधिक सहायता और विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका पर। और इस विषय पर संजीव कुमार लाल की बात होगी श्री दीपक कुमार साहू से, प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। दिल्ली केंद्र से 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज प्रसारित होंगे और 8:30 पर आप सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार।

0: लोक रंग में पंच परगनिया लोक गीत सुनिएगा तुलसीदास गोस्वामी और साथियों से 8:45 पर। रस रंजन इस कार्यक्रम का वक्त रहेगा सुबह 9 बजे से। 9:30 पर प्रसारित होगा शास्त्रीय संगीत, जिसमें आप जीएन उर्मा से सुनेंगे गिटार पर राग नट भैरव। आलाप और जोड़ के बाद 2 गति प्रस्तुत होंगी, दोनों ही गति 3 ताल में निबद्ध होंगी। तबले पर संगत करेंगे श्यामानंद झा, हारमोनियम पर श्यामा प्रसाद नियोगी। सुबह 10 बजे कल्याणी के अंतर्गत भेंट वार्ता होगी नशा मुक्त भारत अभियान और नालसा की डाउन स्कीम पर। भेंट वार्ताकार होंगे श्री दीपक कुमार साहू, भेंटकर्ता होंगे संजीव कुमार लाल। साथ ही चर्चा होगी परिवार में बिगड़ती एकता आखिर क्यों, प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। जोहार रांची का वक्त होगा 10:30 पर और फरमाइशी गानों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन पाएंगे 11:30 पर। महिलाओं का पसंदीदा प्रोग्राम गृह लक्ष्मी का समय रहेगा दिन के 12 बजे से। शैक्षणिक प्रसारण का समय रहेगा 12:30 पर, जिसके अंतर्गत वार्ता होगी संस्कृत भाषा में सुविचार तथा सुक्तियां। वार्ताकार होंगे मनोज कुमार मिश्रा, प्रस्तुति सहयोग अवधेश कुमार की और प्रस्तुति होगी गौरव पांडे की। फिल्म संगीत में हिंदी गाने होंगे 12:45 पर। दिल्ली केंद्र से 1 बजे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित होंगे। 1:10 पर प्रसारित होगा प्रादेशिक समाचार। उपशास्त्रीय संगीत अनुरंजनी में ठुमरी और दादरा आप सुन पाएंगे 1:20 पर और कलाकार होंगी शोभा गुरटू। ये था आज कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण। कुछ ही पलों में दिल्ली से क्रमशः संस्कृत और हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः स्लोवाक गणराज्यं प्रति प्रस्थास्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अस्यां यात्रायां स्लोवाक देशस्य प्रधानमंत्रिणा फिको इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति, तथा च सहकारस्य नूतनान् मार्गान् अन्वेषयिष्यति। प्रवासावधौ प्रधानमंत्री राष्ट्रपतिना पेलेग्रिनी इत्यनेन सहापि मेलनं करिष्यति। द्वैपाक्षिक व्यापारे निरन्तर वृद्धेः दृष्ट्या प्रधानमंत्रिणः यात्रायाः महत्त्वं वर्धते। यच्चतुर्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे 1 बिलियन US डॉलर परिमितम् अतिक्रम्य गतवर्षे 8.1 बिलियन US डॉलर परिमितम् आसीत्। अनया यात्रया यूरोपीयसंघस्य सदस्यराष्ट्रैः सह सहकारं सुदृढं कर्तुं भारतस्य प्रतिबद्धताम् अपि सुदृढं भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य देहरादून नगरस्य भारतीय सैन्य अकादम्यां पासिंग आउट परेड इत्यस्य समीक्षां करिष्यति। अस्मिन् वर्षे पासिंग आउट परेड इतीदं ऐतिहासिकं भविष्यति, यस्मिन् प्रथमवारं महिलाः पुरुषैः सह पथसंचलनं करिष्यन्ति। अस्मिन् भव्य समारोहे 500+ पुरुषाः महिलाः च अन्तिमं पदं स्वीकृत्य भारतीय सेनायां अधिकारित्वेन नियुक्ताः भविष्यन्ति। भारतीय सैन्य अकादम्याः पासिंग आउट परेड न केवलं सैन्य परम्परा अस्ति, अपितु राष्ट्रसेवायां समर्पितानां युवाधिकारिणां कृते नूतन यात्रायाः आरम्भोऽपि अस्ति। केन्द्रीय गुरु उद्योग इस्पात मन्त्रिणा एचडी कुमारस्वामिना उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विनिर्माण आधारित वृद्धेः वृत्त्यावसर निर्माणस्य च विषये अभूतपूर्वं महत्त्वं प्रदत्तम्, येन औद्योगिक वृद्धिः त्वरिताभवत्, बृहद् वृत्त्यावसराश्च कल्पिताः। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन सह वार्तालापं कृत्वा गल्फ प्रदेशे यूएस नौसेनया कृताक्रमणस्य विषये प्रबलं विरोधं प्रकटितम् यस्मिन् त्रयः भारतीयाः नाविकाः मृताः। सामाजिकान्तर्जालीये पटले एकस्मिन् लेखे डॉ जयशंकरः अवदत् यत् वाणिज्यिक नौवहनं विरुद्धं एतादृशानि प्राणघातक आक्रमणानि न्यायोचितानि न सन्ति इति। ओमान तटस्य तटे पलाव ध्वजयुक्तस्य एमटी सेटेबेलो जलयानस्य उपरि अमेरिकादेशस्य आक्रमणे भारतीयदलस्य त्रयः सदस्याः मृताः येन नवदिल्ल्या तीक्ष्ण प्रतिक्रिया प्रदत्ता। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः दृढतया उक्तवान् यत् ऑपरेशन सिन्दूर अभियानस्य समये स्वदेशीय प्रक्षेपास्त्राणाम् असाधारणं प्रदर्शनं भारतस्य रक्षाशोधस्य विकास पर्यावरण व्यवस्थायाः वर्धमान शक्तेः परमाणम् अस्ति। रक्षा अनुसंधान विकास संघटनस्य रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशालायाम् उन्नतास्त्र प्रणाली परिसरस्य उद्घाटनावधौ रक्षामन्त्रिणा उक्तं यत् शक्त्यै शान्तेः आवश्यकता अस्ति तथा च तस्याः शक्तेः सर्वाधिकः विश्वसनीयाधारः आत्मनिर्भरता एव अस्ति। दिल्ली एनसीआर क्षेत्रे गतरात्रौ निरन्तरं द्वितीयरात्रौ प्रचण्ड वृष्टिः अभवत्। वृष्ट्या सह मेघगर्जनं तीव्रवायुः विद्युद्योतनं चाभवत्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन दिल्ल्याः तथा समीपस्थानां क्षेत्राणां कृते रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। आईएमडी इत्यनेन सावधानं कृतं यत् आर्द्रकालः अनुवर्तयितुं शक्यते। अग्रिमेषु कतिपयेषु दिनेषु मेघवृष्टिः निरन्तरं भवितुमर्हति। क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशालायां तिसृणाम् ओडीआई क्रीडायां श्रृंखलायाः प्रथमायां क्रीडायां भारतं अफगानिस्तान दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडा सार्धैकवादने आरभ्यते इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में तीन भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि भारत को यूरेशिया के ऐतिहासिक और सभ्यतागत साझेदारों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में एससीओ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सुरक्षा संपर्क और अवसर के ढांचे से प्रेरित है। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इन बैठकों का उद्देश्य नीट पुनर्परीक्षा के लिए प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना, तैयारियों को मजबूत करना और परीक्षा की निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता बनाए रखना है। परीक्षा 21 जून को होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में श्री वैष्णव ने अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभागीय परीक्षाओं को कम्प्यूटर आधारित कराने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देश की खुदरा मुद्रास्फीति दर इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। नई मुद्रास्फीति श्रृंखला के अंतर्गत लगातार पांचवें महीने में महंगाई में वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: पांच सौ 46.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम का विषय है बवासीर, कारण और बचाव। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर सुरेश राव, भेंट करता है संजीव कुमार लाल।
4: मित्रों नमस्कार। मित्रों आजकल की बिगड़ती और बदलती जीवन शैली में बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर के अंदर चली जाती है और आप इस बीमारी को इग्नोर करने लग जाते हैं, और जब आप बीमारी को इग्नोर करने लग जाते हैं तो बीमारी अपना विकराल रूप धारण करने लग जाता है, फिर आप घोर परेशानी में घिर जाते हैं। एक ऐसा ही बीमारी है बवासीर, जो हमारे खान पान के कारण हो जाता है, हमारे बिगड़ती जीवन शैली के कारण हो जाता है और भी बहुत सारे उसके कारण हैं। तो बवासीर होने का कारण क्या है, पहचान कैसे करें कि इस हम बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, और इसका उपचार और अपने जीवन शैली में किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखें ताकि ये बीमारी हम तक नहीं आए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित हैं आयुष चिकित्सक डॉक्टर सुरेश राव। राव साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, बवासीर होने का प्रमुख कारण क्या मानते हैं आप?
5: सबसे पहला कारण तो है कि कब्ज, जो आजकल हर एक भारतीयों में 60-70% इस चीज़ को लेकर परेशान है, क्योंकि आजकल का हमारे लाइफ स्टाइल या हमारे जीवन शैली जो हो गई है, ज़्यादातर हमारा फिजिकली वर्क वैसा नहीं रहता है, ज़्यादातर बैठ के काम करना शिटिंग वर्क है, ज़्यादातर हम लोग है ना मेंटली है ना प्रेशर पड़ता है, यही सारी चीज़ों के कारण हमारे, और नाइट वॉचिंग ज़्यादा है, मोबाइल में ज़्यादा देर हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, ये सारी चीज़ों के कारण क्या है, हमारा जीवन शैली बहुत सारे बिगड़ चुके हैं, उसके कारण हमारे कब्जियत हमेशा बनी रहती है। ज़्यादातर है ना आजकल जंक फूड, फास्ट फूड, और मसालेदार ज्यादा यूज होने के कारण ये बीमारी ज्यादा ही बढ़ रहा है इस चीज को लेकर।
4: ज्यादा समय तक बैठकर काम करना, लैपटॉप के सहारे काम करना, और काम करते ही जाना और उसके बीच में हम ब्रेक नहीं दे पाते,
5: नहीं लेते हैं।
4: और मोबाइल में लगे रहना, और खान पान तो हमारा आजकल बिगड़ गया है। सही समय पर ना खाना, ना पीना, ना सोने, ना जागने का समय हमारा निर्धारित है। डॉक्टर साहब, इस बीमारी का पहचान क्या है?
5: इसको तीन भाग में हमारे मेडिकल टर्म में डिवाइड किया गया है। पहला है पाइल्स, फिशर, फिस्टुला। जनरली जो फिशर होता है वो क्या होता है कि मलद्वार के बीच में या मलद्वार के रास्ते में, उस मांसपेशियों के बीच के रास्ते में, वहाँ पर एक कट लग जाना या वहाँ पर दरारें बन जाना, जिसके कारण मरीज को बहुत ज़्यादा जलन, दर्द और ब्लड आना, कभी कभी लैट्रिन के साथ चिपका हुआ, ये सारी समस्या होती है जिसको फिशर बोला जाता है। पेशेंट इतना ज़्यादा इसको है ना प्रॉब्लम होता है कि उसको टच भी नहीं कर सकता है। कभी कभी उसके साथ है ना बैठना, उसके साथ अपने जीवन को है ना बढ़ाना बहुत सारा मुश्किल हो जाती है। और के बाद एक बवासीर आती है। बवासीर के क्या लक्षण होते हैं कि आप जब टॉयलेट में जाते हैं, प्रेशर देते हैं, उसके कारण क्या होता है कि उस मांसपेशियों में, मलद्वार के मांसपेशियों में एक सूजन जैसा कन्वर्ट हो जाता है या आ जाता है। उसके कारण क्या होता है, मस्से जो होते हैं जिसको हम लोग छूने से या हाथ से टच होने से महसूस होता है कि वहाँ उभार जैसा हो गया है, इसको हम लोग बवासीर में बोलते हैं। तीसरा चीज़ क्या हो गया है कि आपका फिस्टुला, फिस्टुला में जनरली क्या होता है, संक्रमण के कारण एनस के पास कोई फोड़ा या फुंसी टाइप का हो जाता है, जिससे मवा जाना, पानी आना, बहुत ज़्यादा पेन होना, ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो इसको हम लोग फिस्टुला में गिनती करते हैं। जनरली जो फिशर की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये आजकल भारत में 60-70% हर आदमी को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, क्योंकि कब्जियत इसकी मेन है। दूसरी चीज़ क्या है कि खान पान, अच्छा खान पान हम लोग को नहीं मिल रहा है, ज़्यादा पानी का सेवन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण व्यायाम नहीं है, योगा नहीं है, ये सारी चीज़ों के कारण क्या होता है, पेशेंट अपने लाइफ स्टाइल को इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर चुका है, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग को कब्जियत मेन आ जाती है। इसी के कारण पेशेंट क्या होता है, फिशर की प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती है। और ये क्या होता है कि कभी कभी अगर स्टार्टिंग रहा वीक, वन वीक की रही या 2-4 दिन की रही, तो ये आप घर के उपचार से या थोड़े से खान पान के चेंजेस से आप इसको ठीक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़े, लेकिन जब ये क्रॉनिक हो जाता है, 6-8 वीक हो जाते हैं, तब ये क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है। उस समय आपको एक अच्छे चिकित्सक से मिलना जरूरी होता है और सही उपचार करना जरूरी है। बहुत सारे है ना पेशेंट इस चीज़ को ना नहीं बताने का मेन रीज़न क्या होता है कि शर्म के कारण, शर्मिंदा के कारण, ये ऐसी जगह पर होने के कारण पेशेंट इसको इग्नोर करते चला जाता है, और उससे क्या होता है कि बीमारियां बढ़ते चली जाती हैं। इस बीमारियों को जब आप नज़रअंदाज करते हैं, आगे जाके इस बीमारी से कैंसर होने की भी चांसेज रहती हैं। इसीलिए आप समझिए कि फिशर क्या है, पाइल्स क्या है और फिस्टुला क्या है, ये तीनों चीज़ों को जब समझेंगे उस हिसाब से आप अपना सही और सही सटीक तरीके से अपना खान पान हो या आप है ना अच्छे डॉक्टर से मिल सकते हैं।
4: डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया बवासीर जिसे हम पाइल्स कहते हैं या फिस्टुला या फिजर, तीन अलग अलग चीज़ें हैं,
5: तीन अलग,
4: लेकिन प्रायः सभी लोग इसको मिलाकर बवासीर समझ लेते हैं, और बवासीर का इलाज वो अपने हिसाब से या किसी से पूछकर वो शुरू कर देते हैं, तो मर्ज तो वहीं का वहीं रह गया,
5: राइट सर,
4: और बीमारी
5: बढ़ती चली जाती है।
4: तो कैसे इन सब चीज़ों का निदान किया जाता है?
5: देखिए, ज़्यादातर है ना इस बीमारी का हम लोग ज़्यादातर अपने खान पान और अपने है ना जीवन शैली को चेंज करके ही कर सकते हैं इसको। अगर आप अपने खान पान को लेकर मॉर्निंग में वॉकिंग करें, ज़्यादा मात्रा में पानी पिए, सही समय पर आप खान पान करें, ज़्यादा आप फाइबरस फूड लें, हरी साग सब्जी लें, फल फ्रूट्स लें, मसालेदार, नॉनवेज, मछली, अंडा, ये सारी चीज़ें अभी आप अवॉइड करें, तो उससे क्या होगा कि बहुत हद तक आपको पाइल्स होने के चांसेस ना के बराबर है। इसका एक और मेन रीज़न क्या है, जेनेटिक, मतलब कि आपकी वंशागलित, मतलब अगर आपके ना फैमिली में किसी को पाइल्स है या फिशर है तो उससे भी आपको हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मेन रीज़न है। इससे आपको बचने का मेन सबसे अच्छा एक ही चीज़ है कि अपने जीवन शैली को चेंज करें, और कब्ज को, अगर आपको है ना कब्ज अगर दूर रहेगा अगर आपकी कब्ज की बीमारी नहीं रहेगी, कब्ज का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो आपको पाइल्स होने के चांसेस ना के बराबर है। ये मेन रीजन है सर।
4: लगातार बैठ कर काम करना, ये कितना प्रभावित करता है बवासीर को?
5: बहुत ज़्यादा सर, बिकॉज है ना, जब आप लगातार उस पर बैठते हैं तो जो मलद्वार के है ना मांसपेशियाँ होते हैं, जहाँ वहाँ पर वेन सप्लाई होते हैं, जहाँ पर आपके वहाँ पर ब्लड का सप्लाई होता है, जब आप ज़्यादा देर उस पर बैठते हैं तो उस पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका ब्लड का सप्लाई वहाँ पर पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। अब उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है कि बीच बीच में आप उसको ब्रेक ले सकते हैं। ज़्यादा देर बैठ के काम करने से क्या होता है कि उस मांसपेशियों में ना ब्लड का सर्कुलेशन उतने अच्छे से नहीं होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर फिर से आपको मस्से आना, या नहीं तो वहाँ पर एक दबाव पड़ के वहाँ पर मोशन सही से क्लियरेशन नहीं होती है, टॉयलेट आपको सही से पास आउट नहीं होता है।
4: आयुर्वेदिक में बहुत सारे इलाज घर पर ही किया जा सकता है, और घर के रसोई में भी बहुत सारे ऐसे मसाले हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप सेवन कर इलाज कर सकते हैं। तो इस बवासीर में कौन सी ऐसी विधि है या कौन सा ऐसा उपचार है जो आपके घर पर ही उपलब्ध है और उसके सेवन से इस बीमारी से आप अपना बचाव कर सकते हैं?
5: सबसे अच्छा है कि आप है ना स्टीम बाथ ले लीजिए। स्टीम बाथ का मतलब क्या होता है कि गर्म पानी, वार्म वाटर, वो हल्का सा वार्म वाटर हो, उसमें आपके नीम के पत्ते डाल दीजिए या फिटकरी डाल दीजिए, उसके बाद सोच के बाद आप वहाँ पर 10 से 15 मिनट उस पर बैठ जाइए। उससे क्या होगा कि जो मांसपेशियाँ का सिकुड़न हुआ है वो आपका कम हो जाएगा, पेन रिलीफ मिलेगी आपको। दूसरा चीज़ है कि आपके घर में बहुत सारे नारियल की तेल होती है, एलोवेरा होते हैं, उसका आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तीसरा सबसे अच्छा है कि आपके घर में कच्चा दूध हो, उस दूध में आप अगर नींबू डाल के पीते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदेमंद मिलता है। ज़्यादातर आप पाइल्स, फिशर, फिस्टुला का जो भी ट्रीटमेंट हो या इलाज घर में करना चाहते हैं, अगर टेम्प्रोरी है, मतलब स्टार्टिंग है, तो आप अपने घर में उसी हिसाब से कर सकते हैं इस सब चीज़ों को। और हरी साग सब्जी ज़्यादा खाएं, ज़्यादातर पानी ज़्यादा मात्रा में कीजिए, और सुबह में व्यायाम जरूरी है, एक्सरसाइज, योगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इस बीमारी से बचने के लिए अपने पेट को साफ रखें। पेट को साफ रखने के लिए सबसे अच्छा एक उपाय है जो मैं खुद भी करता हूँ, मॉर्निंग में आप जैसे ही है ना बेड से उठते हैं, एक गुनगुना पानी, उसमें हल्की सी काला नमक थोड़ा सा डाल के आप सुबह में 1 से 2 ग्लास पीजिए, जिससे आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा। जितना हो सके जंक फूड और फास्ट फूड से अवॉइड कीजिए, पेट आपका साफ रहेगा तो बवासीर आपसे दूर रहेगी।
4: तो मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, खान पान नियमित कीजिएगा और अच्छा भोजन कीजिएगा और बाहर के भोजन से परहेज कीजिएगा, तो आप सुख रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेश शाह आज आप इस कार्यक्रम में। और मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और आज का दिन आपके लिए खुशनुमा हो। धन्यवाद।
0: स्वास्थ्य चर्चा में आप जानकारी ले रहे थे बवासीर के कारण और बचाव पर डॉक्टर सुरेश राव से। इनसे बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल। अगला कार्यक्रम सुबह सुरीली।

प्यार भरे इस सवेरे में ठंडी हवा के झोंकों के साथ और पक्षियों की चहचहाहट के बीच आप सभी को आभा का प्रातः स्नेहिल वंदन और बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, सुबह सूरज की किरणें हमारे जीवन में एक नई उम्मीद और उमंग लेकर आती है। उसी उमंग को और गहरा करने के लिए हम लेकर आए हैं बेहतरीन गीतों और सुरीली यादों का यह खास कार्यक्रम सुबह सुरीली। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों के साथ। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म है सरगम।

0: सुबह सुरीली की अगली पेशकश है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गोपाल दास नीरज के बोलों को संगीत दिया है ST बर्मन ने। फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी।
1: उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब,

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुरीली। अगला गाना 1963 की फिल्म दिल एक मंदिर का है, रचना हसरत जयपुरी की, संगीत शंकर जयकिशन का।

अगला गीत आनंद बख्शी का लिखा, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म है गोरा काला। इस गाने में जादुई आवाजें हैं मुकेश।

कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए फिल्म बड़े दिलवाला से, रचना मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत आरडी बर्मन का। इस गाने को अपनी आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

दोस्तों, सुबह की किरण हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर अंधेरे के बाद एक रोशन सवेरा ज़रूर होता है। बस ज़रूरत है तो उम्मीद का दामन थामे रखने की। आज के लिए बस इतना ही। सुबह सुरीली की अगली कड़ी में फिर मिलेंगे कुछ और सुरीली धुनों के साथ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम कानून की बात, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी निशुल्क विधिक सहायता और विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका पर। इस विषय पर संजीव कुमार लाल की बात होगी श्री दीपक कुमार साहू से। प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की।

0: मित्रों नमस्कार। मित्रों जब आप किसी कानूनी समस्या में पड़ जाते हैं और आपको यह लगने लग जाता है कि हमारी बात अब न्यायालय तक जाने चाहिए और हम न्यायालय में मुकदमा दायर करेंगे, तो जब आप मुकदमा दायर करते हैं तो उसकी एक अलग प्रक्रिया है। उसमें आपको पैसे लगते हैं, आपको उसमें एडवोकेट लेना पड़ता है और उसके लिए आपको शुल्क अदा करना पड़ता है। भारतीय संविधान के अनुसार आपके लिए एक अलग वैकल्पिक व्यवस्था की गई है जिसमें आपको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। जो भी कानूनी सहायता है आपको निःशुल्क प्रदान की जाएगी। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि निःशुल्क विधिक सहायता कैसे प्राप्त करें और विधिक सेवा प्राधिकरण जिससे आप विधिक सहायता निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं और ये विधिक सहायता कैसे प्राप्त करें, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए आज कानून की बात कार्यक्रम में आमंत्रित हैं झालसा के अंडर सेक्रेटरी श्री दीपक कुमार साहू जी। दीपक जी स्वागत है।
1: नमस्कार
0: दीपक जी। निःशुल्क कानूनी सहायता या जिसे हम कहें निःशुल्क विधिक सहायता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से लोग पात्र हैं?
1: जी बिल्कुल, जैसा कि हमारा भारतीय जो संविधान है वो सभी को समान न्याय प्रदान करने का एक संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है, लेकिन इसी बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामाजिक रूप से, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जिनको न्याय के लिए जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, वैसे लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान रखा गया है। भारतीय संविधान ने इसके लिए एक विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 लागू किया गया, उस पर बताया गया ऐसे कौन कौन से संस्थान बनेंगे जो विधिक सेवा निःशुल्क जिनको प्रदान किया जाएगा। मैं आगे इस क्रम में ये जोड़ के बताना चाहूँगा कि जो हमारा लीगल सर्विसेज एक्ट है उसके 1987 में एक सेक्शन 12 का जिक्र किया गया है, उसमें बहुत सारे कैटेगराइजेशन

0: हैं कि किनको किनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कर सकते हैं, निःशुल्क विधिक सहायता दे सकते हैं, सेवाएं दे सकते हैं, फ्री एडवोकेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो अपना केस न्यायालय के समक्ष निःशुल्क लड़ सके और जो भी न्याय उनको ससमय उनको मिल सके। जैसे कि या बच्चे हैं तो उनको निःशुल्क विधिक सहायता देने का प्रावधान है। उसके अलावे जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी निःशुल्क प्रावधान है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस हो गए, बहुत सारे लेबर इंडस्ट्री से जुड़े मामले हो गए, और भी वैसे केसेस जहां पर लगता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए, तो उनको हम लोग इंस्टीट्यूशन जो है झालसा, जैसे हमारे झारखंड में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार है, जिला स्तर पे जिला विधिक सेवा प्राधिकार, और तालुका स्तर पे जो तालुक लेवल पे जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उनके माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कानूनी जो सलाह है वो देते प्रदान करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एडवोकेट देते हैं, न्यायालय में जो लगने वाले जो शुल्क होते हैं वो भी उसमें माफ़ हो जाते हैं। केस लड़ने के लिए जो भी दस्तावेज की आवश्यकता होती है, कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपीज की जो निकासी निकाला जाता है, ये सारा कुछ हम लोग उनको प्रदान करते हैं। तो जैसे उसके अलावा भी वैसे व्यक्ति जिनका इनकम वार्षिक आय जिनका 3 लाख से कम का है, तो वैसे व्यक्ति भी अंडर सेक्शन 12 का जो लीगल सर्विस एक्ट के दायरे में आते हैं, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
1: जी, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए जो समाज के वर्ग के अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनको दिया जाता है और महिलाओं को दिया जाता है, तो इसमें जो आय का निर्धारण है वो सभी वर्गों के लिए है या कोई भी व्यक्ति जो इस सीमा से नीचे उसका आय है वो निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है?
0: जी बिल्कुल, अच्छा सवाल है। जैसे मैंने अभी कैटेगराइजेशन करके बताया, जो महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, इंडस्ट्रियल लेबर हैं, अनुसूचित जाति जनजाति हैं, या उसके अलावे भी जो है दिव्यांग हैं, तो वैसे लोगों के लिए कोई भी मतलब उनकी इनकम निर्धारित नहीं है।
1: जी, जी।
0: वैसे या कैदी हैं, जो भी जेल में कैदी हैं, इम्प्रिजनमेंट में हैं, प्रिजनर्स हैं, तो वैसे लोगों के लिए किसी भी तरह का कोई भी इनकम का क्राइटेरिया जो है निर्धारित नहीं है। लेकिन इसके अलावे अगर वैसे व्यक्ति आते हैं जिनका वार्षिक आय 3 लाख से कम का है, तो वो भी इसके फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल,
1: चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हैं
0: तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा। इस प्रोवाइड करने वाले जो होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस हैं, राष्ट्रीय स्तर पे नालसा है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, राज्य स्तर पे आपका जैसे झारखंड में झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और जिला स्तर पे जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार है वो संस्थाएं हैं जो इस तरह का लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने में मदद करती हैं।
1: जी, महिलाओं के लिए ये बाध्यता नहीं है कि उनकी आय कितनी है?
0: जी बिल्कुल,
1: यदि उनकी आय अधिक हो या किसी उच्च पदस्थ पर आसीन हो तो उनके लिए
0: आय का निर्धारण नहीं है सर।
1: महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है। दीपक जी, कोई ये निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना चाहता है, बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं भी होती है, समाज के जो निचले पायदान पे हैं वो इस जानकारी के अभाव में वो फिर इधर उधर भटकते रह जाते हैं, तो निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए वो कहाँ संपर्क करें, कैसे वो आवेदन करें?
0: जी बिल्कुल, अगर जिन किसी को भी लगता है कि इस कैटेगरी में आते हैं वो और उनको निःशुल्क जो विधिक सहायता चाहिए, निःशुल्क जो अधिवक्ता की आवश्यकता है अपने केस लड़ने के लिए, तो अपने जो नियरेस्ट आपके जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार या तालुका स्तर पे जो आपका सब डिविजनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होते हैं, या आप स्टेट राज्य लेवल पर जाएँ तो झारखंड लीगल एड सर्विस अथॉरिटी, कहीं पर भी आप जाकर अपना आवेदन दे सकते हैं, और एक लिखित आवेदन या आप मौखिक रूप से भी वहाँ बोलेंगे तो वहाँ पर जो मौजूद जो फ्रंट ऑफिस में जो PLVs होते हैं या फिर वहाँ उस इंस्टीट्यूशन के जो भी लोग हैं आपको वहाँ उसमें मदद करते हैं, लिखने में मदद करते हैं। तो इस तरह से आवेदन आप वहाँ देकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट के लिए लीगल एड के लिए आप वहाँ सिफारिश कर सकते हैं।
1: जी, जो पारा लीगल वॉलेंटियर हैं वो हर जगह है।
0: बिल्कुल।
1: तो दूर दराज के गांव के सुदूर अंचल में कोई व्यक्ति बैठा है और उसे लगता है कि हमारी बात न्यायालय तक पहुंचनी चाहिए, और वो वित्तीय रूप से बहुत सक्षम नहीं है कि अपनी बात वो पहुंचा सके, तो वो वहाँ जो नज़दीकी PLV है उससे भी वो संपर्क कर सकता है।
0: बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो भी जो अधिकार मित्र, मैं उसको बताऊँ, जो अधिकार मित्र भी बोला जाता है जो PLV से पैरा लीगल वॉलेंटियर से, वो ग्रामीण स्तर में ग्राम पंचायत

0: हों या ब्लॉक हों या पुलिस स्टेशन हो, सभी जगह पे ये अधिकार मित्र जो PLVs हैं, डेप्यूटेड हैं, उनको डेप्यूट किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो एकदम सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में है और वो लगता है कि काफ़ी डिस्टेंस हम ट्रैवल नहीं कर सकते, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते शहरों तक, तो आप नज़दीकी वहाँ पर जो भी जहाँ पर PLVs हैं अधिकार मित्र वहाँ पहुँचे और वहाँ पर भी अपनी बातों को रखना है। आप रख सकते हैं कि हमारे हमें केस करने की आवश्यकता और मैं सक्षम नहीं हूँ कि मैं इतना पैसा पे कर पाऊँगा। तो जो भी इस व्यक्ति या पर्सन जो उस कैटेगरी में आ रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं या हर व्यक्ति जिनका 3 लाख से वार्षिक आय कम है, वैसे लोग आप आवेदन देके वहाँ पर या फिर मौखिक रूप से भी वहाँ पर जो PLVs हैं उनसे आप बात करें, वो आपके बातों को कागजों में लिखते हुए संबंधित जो भी है डालसाज हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकारी या स्टेट लेवल के स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज जो इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ तक जो है वो पहुँचा देंगे। उसके बाद आपको वहाँ से जो भी फ्री लीगल सर्विसेज जो भी है आपको उसमें काउंसलिंग भी किया जाएगा, उसमें आपको कानूनी सलाह के साथ साथ आपको कानूनी के रूप से आपको जो मदद दिया जाएगा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगी।
1: क्योंकि हर जिला में DLSA का एक कार्यालय है, जिला विधिक सेवा प्राधिकार का, वहाँ आपको जाना होगा और वहाँ आप सिर्फ एक आपको आवेदन देना होगा और उस पर त्वरित गति से कार्यवाही होती है। यदि आपके मन में ये भावना उत्पन्न होती है कि कैसे हमारी बात पहुँचेगी, कुछ पैसे जमा नहीं करने पड़ रहे हैं, निःशुल्क है, तो ये धारणा आपको अपने मन से निकालनी पड़ेगी। आप इस निःशुल्क विधिक सहायता का बिल्कुल सुगमतापूर्वक आप इसका फायदा ले सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं और आपकी बात सक्षम अधिकारी तक पहुंचेगी। बस थोड़ी सी आपको जागरूक होने की आवश्यकता
0: और
1: है।
0: इसके लिए बीच बीच में हम लोग जैसे अपने था ना कि क्या लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस का भी क्या रोल है इसमें, तो जितने भी राज्य स्तर में जो भी जैसे लाइक हम झारखंड में बात करें तो झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार है और जिला स्तर पर जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार है, हम लोग इसका लीगल अवेयरनेस कैंप भी हम लोग पंचायत लेवल पे, ग्रामीण स्तर पे, शहरों पे चला रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि आपका अधिकार है निःशुल्क जो आपको विधिक सहायता, ये आपका ही अधिकार कार्य संवैधानिक अधिकार है और जहां पर भी लगता है कि हमको निशुल्क हमको विधिक सहायता चाहिए तो आप इंस्टीट्यूशन में जाकर अपना जैसे प्रक्रिया बताए प्रक्रिया के माध्यम से पहुंच सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं।
1: इसमें आपको वकील भी निशुल्क मुहैया कराया जाता है और आपकी बातें पहुंचती है न्यायालय के समक्ष।
0: जी, और इसमें ऐड करना चाहूंगा जो अधिवक्ता प्रोवाइड की जाती है जिला न्यायालय से लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुफ्त जो अधिवक्ता जो होता है वो दिया जाता है और अच्छे अधिवक्ता प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए कोई भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं जिनके पास लगता है कि नहीं मेरे पास पैसे के अभाव है, मैं अधिवक्ता कर पाने में सक्षम नहीं हूँ, तो भी वैसे व्यक्ति आए उनको अच्छे अधिवक्ता उनको निःशुल्क रूप से मुहैया करा दी जाइए ताकि वो अपने केस को आगे बढ़ा पाए, सही उन न्याय की तरफ बढ़ पाए, उनको न्याय मिल पाए।
1: जी, ज़माना निरंतर परिवर्तन की ओर है और बदलाव की ब्यार हर जगह बढ़ रही है। अब वो दिन लद गए जब आपको न्याय मिलने में बहुत विलंब होता था। न्याय प्राप्त करने का बहुत सारे साधन उपलब्ध हो गए हैं और ख़ासकर हम आज बात कर रहे हैं निःशुल्क कानूनी सहायता का, तो नालसा झालसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो हर ज़िले में है वहाँ से आप निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं और इसमें आपको एक पैसे भी खर्च नहीं होंगे, निःशुल्क आपको वकील भी मुहैया कराया जाएगा और आपकी बात सक्षम पदाधिकारी तक न्यायालय तक पहुंचेगी। क्या कहेंगे दीपक जी हमारे सुनने वाले साथी को, जो दूर अंचल को बैठे हमारे साथी सुन रहे हैं और वो अपने आप को भी लाचार और विवश मान रहे हैं कि कैसे हमारी बात पहुंचेगी और वित्तीय रूप से भी वो बहुत कमज़ोर हैं।
0: जी बिल्कुल, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी लोगों को लग रहा है कि इस तरह का हमारा केसेस है, हम आगे कैसे बढ़ें, हम कैसे समझें, तो मैं तो पहले ही बताऊंगा कि अपने जो भी नज़दीकी जो भी आपके पंचायत स्तर पे जो आपके लीगल एड क्लिनिक्स वगैरह जो हैं आप वहाँ जाएं, वहाँ पर जो तत्पर अधिकार मित्र PLVs हैं वहाँ पर वो आपको कानूनी रूप से आपको वहाँ पर मदद भी करेंगे। और जहाँ तक बात रही कोर्ट कचहरियों में अगर किसी तरह का कोई आपका केसेस पेंडिंग है या लग रहा है कि नहीं हमारे पास अधिवक्ता नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम आगे केस नहीं लड़ सकते, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप आगे बढ़ें, आप अपने नज़दीकी जिला विधिक सेवा प्राधिकार में ऑफिस में पहुँचें या राज्य स्तर में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में पहुँचें, आवेदन दें और जो हमारा जो संवैधानिक जो आप लोगों का जो अधिकार है कि जो निःशुल्क आप लोगों को न्याय के लिए हम लोग जो प्रतिबद्ध हैं, हर तरह से हम लोग आपकी मदद करेंगे, निःशुल्क आपको जो लीगल

0: और मुफ्त जो कानूनी सहायता के साथ साथ जो मुफ्त रूप से हम लोग जो अधिवक्ता मुहैया कराएंगे ताकि आप अपने केस के लिए आगे बढ़ सकें।
1: जी बस आपको थोड़ी जागरूक होने की आवश्यकता है, और यदि आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो फिर DLSA या विधिक सेवा प्राधिकरण वो दो कदम बढ़ाएगी और आपकी बात सुनी जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद श्री दीपक कुमार साहू जी, अंडर सेक्रेटरी झालसा। बढ़िया अच्छी आपने बातचीत की, निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कैसे करें और इसमें विधिक सेवा प्राधिकरण की कितनी महती भूमिका है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी चैनल पर इसी समय एक नई जानकारी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए, नमस्कार।
2: कानून की बात इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप जानकारी ले रहे थे निशुल्क विधिक सहायता और विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका पर। भेंट करता थे संजीव कुमार लाल, भेंट वार्ताकार थे श्री दीपक कुमार साहू, प्रस्तुति थी संजीव कुमार लाल की।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा।
2: खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
6: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
8: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में $1 अरब से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर $1.80 अरब तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
6: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
9: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
6: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
10: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर को भी बढ़ा स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड लेक्चरर तालित मिजेन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को

0: बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख हबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1.25 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
2: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमरीकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमरीका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजिल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज की अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमरीका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमरीकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
2: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 6-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jayshankar lodges strong protest with US Secretary of State Marco Rubio over US strikes on oil ship that killed 3 Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it opened to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's singles semi-finals of Australia Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead in ongoing match against Paraguay in Group D at Los Angeles. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be arriving in Nice, France this evening, embarking on a 2-nation European tour spanning France and Slovakia. This is the Prime Minister's 7th official visit to France since 2014 and carries special diplomatic weight. Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron are set to hold their first bilateral summit since the elevation of India-France ties to a special global strategic partnership earlier this year. The Prime Minister will also participate in the G7 summit in Ivan, reaffirming India's standing as an indispensable voice of the Global South on the world stage. Our correspondent joins us now from Nice, France.
6: On arrival this evening, Prime Minister Modi will proceed to his hotel, where he will attend a community reception bringing together members of the Indian diaspora from across the south of France. The engagements on 14th of June opened on a note of innovation and ambition. Prime Minister Modi, alongside President Macron, will inaugurate Bharat Innovates, India's flagship innovation showcase at the Palais des Expositions de Nice. More than 120 Indian startups and companies will come together with leading investors and business leaders from France and across the world, spotlighting India as a global destination for deep tech, artificial intelligence.

0: delivers city its cleanest air since September 15th, reports the Times of India. The Statesman, on its editorial page under the caption Demanding Proof, writes, for much of the past 2 years, investors appeared willing to suspend disbelief. Artificial intelligence was not merely a promising technology, it became the foundation of a market narrative. Share prices soared, valuations stretched, and every earnings season was interrupted through the lens of an AI-driven future. The recent turbulence in global stock markets suggests that this phase may be ending. Technological revolutions have always generated excitement, but financial markets eventually demand evidence. And finally, under the caption Peck Party, the Delhi Tribune captures a serene picture of a parrot and black-rumped flame-back woodpecker feeding on a wall. And with that, it's back to you, Sarabjeet.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to embark on 6-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lodges strong protest with U.S. Secretary of State Marco Rubio over U.S. strikes on oil ship that killed 3 Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it open to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's single semi-finals of Australian Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। कैबिनेट सचिव ने की 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाई। रांची के सभी मतदान केंद्रों पर आज से 2 दिवसीय विशेष कैंप SIR के तहत नाम जोड़ने और सुधारने का होगा कार्य। मुख्यमंत्री की मतदाताओं से बूथों पर जाने की अपील। राज्य सरकार ने राज्य की जेलों को हाईटेक बनाने के लिए दी प्रशासनिक स्वीकृति। गढ़वा और गुमला कारागार में आधुनिक CCTV कैमरे लगाने पर खर्च होंगे 16 करोड़ से अधिक। संताल परगना के रास्ते झारखंड में मॉनसून ने दी दस्तक। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में पूरे राज्य को कवर करने की जताई संभावना। और झारखंड T20 क्रिकेट लीग में आज खेले जाएंगे 2 रोमांचक मुकाबले। JSCA स्टेडियम में रांची टाइटंस और कोयलांचल सुपर किंग्स के बीच होगी पहली भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक कर 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने परीक्षा को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए। इस बीच NTA ने परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। आयुष मंत्रालय और हेबल्ड की ओर से कल एक ऐतिहासिक ऑनलाइन योगाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। देश विदेश के लाखों लोग एक साथ ऑनलाइन योगाभ्यास कर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने देशवासियों से इस मुहिम का हिस्सा बनने की अपील की है। नागरिक टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड से जुड़ सकते हैं।
3: आयुष मंत्रालय, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्था और हैबिल के साथ मिलकर हम एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें देश और दुनिया भर के लोग एक साथ ऑनलाइन योगाभ्यास करेंगे। मैं सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वे इस ऐतिहासिक प्रयास का हिस्सा बने, योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए और एक स्वस्थ विश्व का निर्माण करें।
2: राज्य में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। दो सीटों के लिए हो रहे इस त्रिकोणीय मुकाबले में झामुमो के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और भाजपा समर्थित परिमल नाथवानी मैदान में हैं। झामुमो और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उनके सभी विधायक एकजुट हैं, जिससे वे दोनों सीटें आसानी से जीत लेंगे।
4: कई विधायकों में बहुत ही नाराजगी है और उन लोगों ने मन बना लिया है कि किसी भी तरह से ऐसे लोगों को हराना होगा। तो आप देखिएगा, 10 से 12 लोग भारतीय जनता पार्टी के इधर उधर करेंगे क्योंकि वो व्यथित है।
5: 34 के 34 गठबंधन के साथ हैं, अपने प्रत्याशियों को जिताने के बाद जो शेष बचेगा उसकी भी गारंटी।
2: इधर भाजपा नेताओं का दावा है कि उनके पास आवश्यक आंकड़ों से अधिक विधायकों का समर्थन है और वे दूसरी सीट पर जीत दर्ज करेंगे।
6: जो भी यहाँ पर विधायक इनके हैं, जिनको करप्शन का शेयर नहीं मिल रहा है, वो अंदर ही अंदर नाराज है और एक बिकाऊ विधायक की तरह राज्यसभा के बाजार में बिकने को तैयार है। और हम इसलिए दावे के साथ कह रहे हैं कि निश्चित तौर से भाजपा के उम्मीदवार की जीत होगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे।
2: नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित एक दिवसीय मीडिया और सोशल मीडिया सम्मेलन में देश भर से 350 से अधिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें झारखंड से अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार सहित 16 अधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन में भ्रामक सूचनाओं से निपटने, चुनावी साक्षरता और निर्वाचन रणनीतियों पर गहन चर्चा की गई। रांची के सभी मतदान केंद्रों पर आज से 2 दिवसीय विशेष मतदाता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत लगाए गए इन कैंपों में नागरिक अपना नाम जोड़ और सुधार सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी मतदाताओं से बूथों पर जाकर अपने नाम जांचने की अपील की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश की जेलों को हाईटेक बनाने के लिए 16 करोड़ 86 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके तहत गढ़वा के नगर उटारी और गुमला कारागार में 531 आधुनिक सीसीटीवी कैमरे, स्कैनर और मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे। इस अत्याधुनिक तकनीक से जेलों की सुरक्षा व निगरानी व्यवस्था बेहद मजबूत होगी। रांची में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। पिछले 10 दिनों के भीतर शहर में 37,000 से अधिक ऑनलाइन और ऑफलाइन चालान काटे गए हैं। ट्रैफिक एसपी राकेश कुमार सिंह ने पुलिस से वाहन चालकों से हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और गति सीमा का पालन करने की सख्त अपील की है।
7: 1 जून से 10 जून तक 34,000 से अधिक गाड़ियों का चालान काटा हुआ है और ज्यादातर जो उल्लंघन हो रहा है वो रोड पे जहां तहां पार्किंग कर देना, जिससे ट्रैफिक बाधित होना, विदाउट हेलमेट ओवर स्पीडिंग ज्यादा देखने में आ रहा है। इसमें हमारा फोकस है कि लोगों के अंदर एक बिहेवियरल चेंज आए और एक ट्रैफिक सिविक सेंस रांची वासियों में डेवलप करने के उद्देश्य से हम लोग ये अभियान चला रहे हैं।
2: पश्चिम बंगाल सिविल सेवा परीक्षा के परीक्षार्थियों और यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे आज से रांची हावड़ा रांची परीक्षा स्पेशल ट्रेन चला रहा है। ट्रेन संख्या 08161 आज रात 9:30 बजे रांची से खुलकर सुबह 6:30 बजे हावड़ा पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह कल रात हावड़ा से खुलेगी। संताल परगना के रास्ते झारखंड में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, जो अगले 72 घंटों में पूरे राज्य को कवर कर लेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार संताल सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। हालांकि इस वर्ष अलनीनो के प्रभाव के कारण राज्य में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना जताई गई है।
8: एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिफिशिएंट रेनफॉल रहेगा और उसी की उम्मीद है और पूर्वानुमान में भी सुना होगा कि इस साल थोड़ा सा ओवरऑल भारत के लिए भी मानसून थोड़ा सा डिफिशिएंट रहने का चांसेस है और बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों को हर स्थिति के लिए तैयार रहने की भी जरूरत है।
2: झारखंड टी20 लीग में आज दो मुकाबले होंगे। पहले मैच में रांची टाइटंस के भिड़ंत कोयलांचल सुपर किंग्स से होगी, वहीं दूसरा मैच छोटा नागपुर रॉयल्स और संताल स्ट्राइकर्स के बीच खेला जाएगा। जेएससीए स्टेडियम में होने वाले इन मैचों को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह है। झारखंड की पहलवान प्रियंका महतो और प्रशिक्षक राजीव यादव अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप ट्रायल के लिए रांची से सोनीपत रवाना हो गए हैं। राष्ट्रीय पदक विजेता और जेएसएसपीएस की प्रियंका 14 जुलाई को दिल्ली में होने वाले ट्रायल में हिस्सा लेंगी। चयनित खिलाड़ी बाकू में होने वाले विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के झारखंड में दस्तक देने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मॉनसून वक्त पर, दस्तक बेअसर। प्रभात खबर के शब्द हैं, पंचायत सेवक रहते 20 साल पहले ली थी 500 रुपए की घूस, 80 साल की उम्र में जाएंगे जेल। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, मतदाता सूची में नामांकन जांचने के लिए बूथ पर जाएं लोग। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जिन शिक्षकों की नियुक्ति 2004 के पहले उन्हें भी पुरानी पेंशन का लाभ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कैबिनेट सचिव ने की 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाई। रांची के सभी मतदान केंद्रों पर आज से 2 दिवसीय विशेष कैंप SIR के तहत नाम जोड़ने और सुधारने का होगा कार्य। मुख्यमंत्री की मतदाताओं से बूथों पर जाने की अपील। राज्य सरकार ने राज्य की जेलों को हाईटेक बनाने के लिए दी प्रशासनिक स्वीकृति। गढ़वा और गुमला कारागार में आधुनिक CCTV कैमरे लगाने पर खर्च होंगे 16 करोड़ से अधिक। संताल परगना के रास्ते झारखंड में मॉनसून ने दी दस्तक। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में पूरे राज्य को कवर करने की जताई संभावना। और झारखंड टी20 क्रिकेट लीग में आज खेले जाएंगे दो रोमांचक मुकाबले। जेएससीए स्टेडियम में रांची टाइटंस और कोयलांचल सुपर किंग्स के बीच होगी पहली भिड़ंत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, एक रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहां जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान है, चलते रहेंगे।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16-18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और साथ ही FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रातःकालीन प्रसारण में आपके साथ मैं हूँ आभा। कार्यक्रम लोक रंग में आइए सुनते हैं पंच परगनिया लोकगीत। गायक कलाकार हैं तुलसीदास गोस्वामी और साथी।

पंच परगनिया लोकगीत में आपने सुना तुलसीदास गोस्वामी और साथियों से। इसी के साथ लोक रंग कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। अगला कार्यक्रम रस रंजन कुछ ही पलों में।

सुनने वाले तमाम श्रोताओं को आभा का प्यार भरा नमस्कार। आकाशवाणी रांची से कार्यक्रम रस रंजन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जीवन की भाग दौड़ में अक्सर हम उन छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं जो हमारे आसपास ही मौजूद होती है, और कहते हैं जहाँ रस है वहीं जीवन है, और जहाँ जीवन है वहीं राग और रंग भी है। आज के रस रंजन की शुरुआत साल 1981 की सुपरहिट फिल्म लव स्टोरी से। आनंद बख्शी के शब्दों को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने, सुरों में पिरोया है अमित कुमार और लता मंगेशकर ने।

अगला गाना जब वी मेट से, गीत को उस्ताद राशिद खान ने अपनी जादुई आवाज़ दी है और संगीत संदेश सांडिल्य ने दिया है, बोल इरशाद कामिल के।

कार्यक्रम में लौटेंगे अंतराल के बाद।

0: तस्वीर।
1: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
2: यहाँ मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
1: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
2: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
1: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
2: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: पापा लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: अरे पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ।
2: है
1: नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ।
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
6: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम रस रंजन में, और इस कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर का गाया हुआ, गीतकार आनंद बख्शी, फिल्म का नाम है शालीमार, संगीत RD बर्मन का।

अब सुनिए गुलशन बावरा का लिखा किशोर कुमार की आवाज में, संगीत आर डी बर्मन का, फिल्म है सत्ते पे सत्ता।

रंजन का आखिरी गीत सुनिए फिल्म तेरे नाम से। उदित नारायण और अलका याग्निक के सुरों को संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने, बोल हैं समीर के।

इसी के साथ रस रंजन कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कल सुबह ठीक 9 बजे इसी समय इसी फ्रिक्वेंसी पर फिर मिलेंगे। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए और आभा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है, आइए सुने शास्त्रीय संगीत। कलाकार हैं जी एन उर्मा, इनसे सुनेंगे गिटार पर राग नट भैरव। आलाप और जोड़ के बाद दो गते प्रस्तुत हैं, दोनों ही गते तीन ताल में निबद्ध हैं। तबले पर संगत कर रहे हैं श्यामानंद झा, हारमोनियम पर श्यामा प्रसाद नियोगी।

0: आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत में गिटार पर राग नट भैरव। आलाप और जोर के बाद दो गते प्रस्तुत थी, दोनों ही गते तीन ताल में निबद्ध थी। कलाकार थे जी एन उर्मा, तबले पर संगत कर रहे थे श्यामानंद झा और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे श्यामा प्रसाद नियोगी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कल्याणी। इस कार्यक्रम में आज भेंट वार्ता होगी नशा मुक्त भारत अभियान और नालसा की डाउन स्कीम पर। भेंट वार्ताकार होंगे श्री दीपक कुमार साहू, भेंटकर्ता होंगे संजीव कुमार लाल और प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की।
1: श्रोता मित्रों, आप सभी को नमस्कार, जोहार। आप सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी है स्वस्थ, खुशहाल और उत्साह से भरपूर होंगे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल्याणी और मैं हूँ आपका दोस्त युवराज कुमार। दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मनोरंजन, जानकारी, गीत और प्रेरणा से भरपूर एक शानदार कार्यक्रम लेकर। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए कुछ नए विचारों, रोचक चर्चाओं और मन को छू लेने वाला मधुर गीतों के सफ़र पर। आने वाले कुछ पलों में हम आपके साथ सीखेंगे, मुस्कुराएंगे और गीत संगीत का आनंद भी उठाएंगे। तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक विशेष चर्चा के साथ। दोस्तों, यह स्पष्ट है कि जहाँ एकता और सहयोग होता है वहाँ हमेशा विकास और प्रगति होती है। परिवार हमारा पूरा सहारा है और हमारे परिवार के सदस्य हमारे रक्त संबंधियों के समान है। प्रेम, करुणा और सहयोग का वास्तविक अर्थ परिवार शब्द में निहित है। वास्तव में परिवार विश्वास, आराम, खुशी और लगाव का पर्याय है। तो साथियों, आइए एक खास विषय पर हम आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि परिवार में बिगड़ती एकता आखिर क्यों। दोस्तों, परिवार समाज की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यह परिवार तभी सुखी,

0: समृद्ध और मजबूत बनता है जब उसके सदस्यों के बीच प्रेम, विश्वास, सहयोग और एकता बनी रहती है। परिवार की एकता केवल घर की खुशहाली ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास का भी आधार होता है। लेकिन आज के समय में अनेक परिवारों में एकता कमज़ोर पड़ती जा रही है। छोटी छोटी बातों पर विवाद, आपसी मनमुटाव, स्वार्थ और संवाद की कमी के कारण परिवार में दूरियां बढ़ती जा रही है। ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि आखिर परिवार में एकता क्यों बिगड़ रही है और इसे कैसे मजबूत बनाया जा सकता है। मित्रों, परिवार में एकता बिगड़ने के कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे संवाद की कमी। परिवार में एकता बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण आपसी संवाद की कमी है। आज के व्यस्त जीवन शैली में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर बातचीत करने के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। जब लोग अपनी भावनाओं, समस्याओं और विचारों का एक दूसरे के साथ साझा नहीं करते तब गलतफहमियां पैदा होने लगती है और रिश्तों में दूरी बढ़ जाती है। दूसरा कारण है स्वार्थ की भावना। जहां पहले परिवार में सामूहिक हित को महत्व दिया जाता था, वहीं आज कई लोग केवल अपने व्यक्तिगत लाभ और सुविधाओं के बारे में सोचते हैं। स्वार्थ की भावना परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सहयोग को कमजोर कर देती है तथा एकता को नुकसान पहुंचाती है। आर्थिक विवाद भी परिवार में विवाद का बड़ा कारण बनता है। संपत्ति का बंटवारा, आय व्यय को लेकर मतभेद, उत्तराधिकारी संबंधी विवाद और आर्थिक समानता परिवार की एकता को प्रभावित करते हैं। कई बार छोटे छोटे आर्थिक मुद्दे भी बड़े झगड़ों का रूप ले लेते हैं। आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव, तकनीक और आधुनिकता ने जीवन को आसान तो बना दिया है लेकिन परिवार के सदस्यों के बीच दूरी भी बढ़ाई है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग के कारण लोग एक दूसरे के साथ समय बिताने के बजाय आभासी दुनिया में अधिक व्यस्त रहने लगे हैं। इससे भावनात्मक जुड़ाव कम होता जा रहा है। मित्रों, भारतीय संस्कृति में बड़ों का सम्मान परिवार की नींव माना जाता है। जब परिवार के सदस्य बुजुर्गों के अनुभव और सलाह को महत्व नहीं देते तब पारिवारिक संबंधों में तनाव उत्पन्न होता है। बड़ों का सम्मान और मार्गदर्शन परिवार को एक सूत्र में बांधकर रखता है। अहंकार और जिद रिश्तों का सबसे बड़ा शत्रु है। जब परिवार के सदस्य अपनी गलती स्वीकार नहीं करते और हमेशा स्वयं को सही साबित करने में प्रयास करते हैं तब विवाद बढ़ता जाता है। जिद और अहंकार के कारण छोटी समस्याएं भी बड़ी बन जाती है। आपसी विश्वास की कमी किसी भी रिश्ते की मजबूत नींव होता है। जब परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास कम हो जाता है तब संदेह और गलतफहमियां जन्म लेने लगती है। इससे रिश्तों में कड़वाहट आती है और एकता कमजोर पड़ जाती है। साथियों, आइए हम जानते हैं कि परिवार की एकता बनाए रखने का क्या उपाय है और क्या हो सकता है। परिवार के सभी सदस्य नियमित रूप से एक दूसरे से खुलकर बातचीत करें, आपसी प्रेम, सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करें, बड़ों का आदर करें और उनकी सलाह का सम्मान करें। छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद ना बढ़ाएं। अहंकार और जिद छोड़कर समझौते की भावनाएं अपनाएं। परिवार के साथ समय बिताएं और सामूहिक गतिविधियों में भाग लें। एक दूसरे की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करें। मित्रों, परिवार की एकता किसी भी परिवार की सबसे बड़ी शक्ति होती है। जहाँ एकता होता है वहाँ सुख, शांति और समृद्ध स्वतः आती है। परिवार में एकता बिगड़ने के पीछे संवाद की कमी, स्वार्थ, आर्थिक विवाद, अहंकार और आधुनिक जीवन शैली जैसे कारण जिम्मेदार हैं। यदि परिवार के सभी सदस्य प्रेम, विश्वास, सम्मान और सहयोग की भावनाओं को अपनाएं तो हर प्रकार की समस्या का समाधान संभव है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि परिवार की मजबूती ही समाज और राष्ट्र की मजबूती का आधार है। इसलिए परिवार में एकता बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है। दोस्तों, नशा नाश का जड़ है। दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति नशा करता है तो वह अपना नाश करता ही है, साथ ही साथ परिवार, समाज और देश का भी नाश करता है। सरकार की ओर से भी लगातार नशा की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कुछ एनजीओ संस्थानों द्वारा भी इस योजना को सफल बनाने में सहयोग किया जा रहा है। तो मित्रों, आइए इस खास विषय पर नशा मुक्त भारत अभियान और नालसा की डॉन स्कीम पर विशेष चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है खास मेहमान श्री दीपक कुमार साहू जी, जो झालसा में अवर सचिव के पद पर है, और इनसे बातें करेंगे श्री संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों नमस्कार। मित्रों, हमारा देश भारत में युवाओं का एक बहुत बड़ा समूह है और यही युवा मेहनत करते हैं और देश और राष्ट्र को आगे बढ़ाते हैं और राष्ट्र की नई तस्वीर को गढ़ते हैं। लेकिन किसी कारणवश हमारे ये युवा साथी नशे के गर्त में चले जाते हैं, नशे के चुंगल में फंस जाते हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश को होता है। क्योंकि यही युवा जब अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं, पल्लवित और पुष्पित होते हैं इस राष्ट्र में, तो राष्ट्र को एक नए अंजाम तक पहुंचाते हैं। और युवाओं के साथ साथ एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे बुजुर्ग साथियों का और भी अन्य लोगों का नशे के आदत से वो फंसे हुए हैं, नशे के चुंगल में फंसे हुए हैं। नशे के कारण परिवार तबाह हो जा रहे हैं, इससे समाज को नुकसान पहुंच रहा है, आर्थिक क्षति तो होती ही है, और साथ साथ लोग नशे के कारण घर में हिंसा करते हैं। तो ये नशा किस क्यों किया जा रहा है, ये नशे के गर्त में हमारे युवा साथी क्यों फंस रहे हैं और इस नशे से कैसे वो बाहर आए, क्योंकि नशे की प्रवृत्ति जो है वो राष्ट्र को कैंसर की तरह खाई जाती है। यदि हम नशा को रोक दें तो फिर देश हमारा उन्नति के राह पर स्वतः ही आगे बढ़ जाएगा। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने मिले नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है कि नशा को जड़ से मुक्त कर दिया जाए। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं झालसा के अवर सचिव श्री दीपक कुमार साहू जी। ये इनसे आज बात करेंगे कि नशा मुक्त भारत अभियान क्या है और नालसा की एक बहुत अच्छी स्कीम है डाउन स्कीम, इसके सहारे कैसे नशा मुक्त भारत अभियान का हम शुरुआत करें। दीपक जी स्वागत है आपका। दीपक जी, नशा नाश की जड़ है, ये कितना नुकसान पहुंचा रहा है हमारे समाज को और खासकर हमारे युवा वर्ग को।
2: बिल्कुल आपने सही कहा, नशा नाश की जड़ है और आज के डेट में जो युवा पीढ़ी इस नशे के गर्त में जा रहे हैं, युवा पीढ़ी ही नहीं बल्कि आप देखेंगे बहुत बच्चे, जो बच्चे हैं बच्चे भी नशे का बहुत ही सेवन कर रहे हैं। नशे की वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से और अपने जो समाज के अंदर में जहां रह रहे हैं वहां पर अपने आप को बहुत ही मतलब डाउन तक वो ले जा रहे हैं। दूसरा चीज़ है इसमें कि जो घर हैं, घरों में इन नशा की वजह से घरेलू हिंसा के जो केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके अलावा आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं उस घर पे रहने वाले जितने परिवार के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आर्थिक रूप से परेशान हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नशा मतलब एक ऐसा, आपने कहा जैसे कि हमारे भारत देश को ये मतलब एक तरह से समझिए तो कैंसर की तरफ, गर्त की तरफ ले जा रहा है। तो नशा से पूरी तरह से लोगों का मतलब जो भी नशा के इस में जुड़े हुए हैं, घुसे हुए हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सर्वांगीण उनका विकास तक उनका रुक गया है। तो आज नशा वाकई हमारे लिए बहुत ही बड़ी मतलब मुद्दा है, उसको जड़ से हटाने के लिए भारत सरकार और नालसा जैसे नालसा के जो डाउन स्कीम से प्रतिबद्ध है और अपना काम कर रही हैं। अभी जो भारत सरकार का जो नशा मुक्त अभियान है उसमें भारत सरकार ये प्रतिबद्ध भी है कि 2029 तक हम लोगों को पूरा नशा मुक्त भारत बनाना है। साथ ही साथ इस परिदृश्य में जो भी है हमारा जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार का एक स्कीम है, बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है डाउन, जिसको हम लोग जानते हैं ड्रग्स अवेयरनेस एंड वेलनेस नेविगेशन स्कीम 2025 का है, जिसमें स्कीम को लॉन्च करने का पीछे उद्देश्य यही था कि जितने भी समाज में ये कुरीतियाँ हैं, नशा से संबंधित कुरीतियाँ हैं, जो नशा हो रही हैं, तो कैसे इसको हम प्रोटेक्ट करें, कैसे इसको हम प्रिजर्व करें, कैसे इसको हम रिहैबिलिएट करें। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ में ये डाउन स्कीम लाया गया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धरातल स्थल पर आइडेंटिफाई कर पाए, उनको प्रॉपर उनको काउंसलिंग कर पाए और उनका प्रॉपर रिहैबिलिएशन पुनर्वास किया जा सके।
1: जी, क्योंकि आपने सही कहा है कि जब कोई नशा करता है तो ये नशे का आदि बन जाता है, फिर उसका कोई भी होश हवास नहीं रहता है और नशे के कारण लोग गलत प्रवृत्ति की ओर भी अग्रसरित हो जाते हैं, चाहे वो चोरी हो, बलात्कार हो, हत्या हो, घरेलू हिंसा हो, एक बहुत बड़ा गलत दिशा की ओर वो बढ़ जाते हैं और फिर राष्ट्र को तो क्षति इससे पहुंचती है और समाज में भी एक गलत संदेश चला जाता है। तो प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा महती अभियान है नशा मुक्त भारत अभियान, तो इसमें जो नालसा की स्कीम है, डाउन स्कीम, एक बहुत बड़ी योजना है स्कीम है नालसा की, तो कैसे इन लोगों को आइडेंटिफाई करती है, पहचान करती है और कैसे इस चीज़ों को वो रोकती है?
2: बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या है इसमें कि हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी इसमें एक बहुत ही ऑब्जर्वेशन है कि जहाँ पर भी ऐसे पीपल सेंट्रिक प्रोन जोन है जहाँ पर नशा ड्रग्स एब्यूज़ हो रहे हैं, वैसे एरिया को आइडेंटिफाई किया जाए और इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए जितने भी लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस को भी ये डायरेक्शन है कि जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में कोलैबोरेशन करते हुए इस तरह के कार्यक्रम किया जाए, लीगल अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जाए नशा मुक्ति संबंधी, कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इससे क्या हमारे आने वाले जनरेशन को क्या नुकसान होगा, घर के अंदर जो लोगों की जो मानसिक और सामाजिक जो स्थिरता जो टूटती चली जा रही है उन सब चीज़ों को कैसे रोका जाए, तो इसके लिए डायरेक्शंस दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी। और इसी के आगे बढ़ते हुए नालसा जो है हमारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार ने एक नशा संबंधी स्कीम जो है वो लॉन्च किया है जिसका नाम हम जो बताएं आपको डाउन 2025 का स्कीम है। इस स्कीम के तहत क्या है, इसमें ये कहा गया कि जितने भी जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार हैं, डालसा है, डालसा लेवल पे एक जिला स्तर पे एक डाउन यूनिट बनाने की बात है। तो डाउन यूनिट क्या होगा, तो डाउन यूनिट होगा उसमें कुछ उनके जो मेंबर्स हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हमारे डाउन यूनिट में जो जिला के जो प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश जो होते हैं उनके चेयरमैन होते हैं, उनके अलावे अन्य उसमें जुडिशल ऑफिसर भी होते हैं जो पॉक्सो संबंधित या फिर NDPS के केसेस वगैरह जो जज साहब देखते हैं वो भी उनके मेंबर होते हैं, उसके अलावे PLVs होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आपके DC हैं, SP हैं या उनके समकक्ष अगर वो हैं तो, या उनके समकक्ष में SDPO हो गए, आपके SDO हो गए, तो वैसे लोग इसमें भी, उसके अलावे जो सिविल सर्जन हैं, मतलब उसके अलावा आपके अदर जो लीगल इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, NGOs हैं, मतलब हर वो व्यक्ति जो नशा संबंधी जो हमारा एक जो लोगों के बीच में एडिक्शन है या ड्रग्स का जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहा है, तो कैसे हम उसको इरेडिकेट करें, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, उसको कैसे हम प्रॉपर रिहेबिलिएट करें, करके एक डाउन यूनिट बनाएगा। और इनका काम है कि ये प्रॉपर डायरेक्शन दे लोगों PLVs के माध्यम से, अदर कम्युनिटी जो मतलब सोशल वर्कर्स हैं, NGOs के माध्यम से, कि हर उस जगह पे पहुँचे जो ज़्यादातर ड्रग एब्यूज एरिया हो और उस एरिया में जाकर वहाँ पर लोगों को आइडेंटिफाई करे कि उसमें बच्चे हों, यंगस्टर्स हों, वृद्ध हों, घरों पे भी जाकर देखना है कि कहाँ पर नशे का मतलब ज़्यादा यूज करने से वहाँ के घर की जो आर्थिक स्थिति या फिर वहाँ का वातावरण है खराब है, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद, पहला हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करने के बाद उनका जो है प्रॉपर काउंसलिंग किया जाए कि क्यों नशा हो रहा है, अगर जरूरत पड़े तो उनको नशा मुक्ति केंद्र पे भेजने की बात की गई है, नशा मुक्ति केंद्र भेजना प्लस उनको जो मेडिकल असिस्टेंस उनको मिलना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति जो है जिनको लग रहा है कि ड्रग्स एब्यूज है और किसी तरह का लीगल असिस्टेंस चाहिए, कोर्ट में जाकर अगर किसी पर्टिकुलर केस मतलब ड्रग्स से संबंधित केस है उसके माध्यम से अगर कोई कोर्ट में जाकर बातों को रखना है, तो अगर उसमें लीगल असिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए भी हम लोग फ्री लीगल एड सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्या है कि जब हम सारा उनको वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से, मेडिकल असिस्टेंट से, साइकोलॉजिस्ट के माध्यम, साइकेट्रिस्ट के माध्यम से जब हम उनको मदद पहुंचाते हैं, उसके बाद हमको प्रॉपर रिहैबिलिएशन का सोचते हैं। रिहैबिलिएशन की अगर हम बात करें तो उसमें डाउन स्कीम में कि रिहैबिलिएशन कैसे किया जाए, तो रिहैबिलिएट करने के लिए उनको हम कुछ भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम वगैरह से उनको जोड़ा जाए, उसको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स वगैरह उनको दिया जाए, उनके नशा संबंधी क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं और भी क्या चीज़ें, लीगल अवेयरनेस के क्षेत्र में उसको जोड़ा जाए ताकि उन सब चीज़ों से वो बाहर आए। इसके अलावा डाउन स्कीम में है कि हम प्रॉपर अवेयरनेस कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा जब तक हम लोगों के बीच में जाकर इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जागृति अभियान हम नहीं चलाएंगे, तब तक लोग इनके जो बैड इफेक्ट्स हैं उसके बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए भी जो हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चलती है, अवेयरनेस गांवों में, पंचायतों में या शहरों तक नहीं है, बल्कि दायरा है कि ये अवेयरनेस इवन जहां पर, चूंकि आज के डेट में जो ड्रग्स लेने का वो इंजेक्टेबल भी होता है, इंजेक्ट के माध्यम से भी होता है, तो जहां पर मतलब रेड लाइट एरियाज वगैरह है, मतलब सेक्स वर्कर्स लोग भी जहां पर है, तो वहां पर भी जाकर हम लोग का जो कैंप लगना है, वहां समझाना है कि इस तरह के इंजेक्टिव जो है आप ड्रग्स का नहीं लेना, इससे चांसेस ऑफ मतलब जो भी एड्स एचआईवी टाइप के बीमारियां होने के भी चांसेस होते हैं, उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। तो इस तरह के कंप्लीट अगर आप देखें तो डाउन स्कीम बृहद स्कीम है, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक यूनिट इस्टेब्लिश करने के बाद हर एक जगह पे पहुंच रहे हैं और वहां से आइडेंटिफिकेशन करके उनका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन तक हम लोग उसमें काम कर रहे हैं।
1: जी, तो एक बहुत बड़ा स्कीम है नालसा की डाउन स्कीम, और एक बहुत बड़ा चुनौती भी है पूरे देश के लिए
2: सर,
1: कि एक बहुत बड़ा वर्ग, चाहे वो युवाओं का हो, वृद्ध का हो या कोई अन्य वर्ग के भी व्यक्ति हो, नशे के गर्त में यदि वो आ जाते हैं तो अपना तो नुकसान करते ही
2: बिल्कुल,
1: और परिवार भी बिगड़ जाता है, और आर्थिक नुकसान वो अलग होता है, बच्चे की पढ़ाई बीच में रुक जाती है और बच्चा इधर उधर भटकता रहता है, और जहाँ उसे नशा सुलभ हो जाता है उस दिशा की ओर वो उन्मुख हो जाता है और फिर गलत राह अपनाने लग जाता है। इस नशे के चुंगल से बाहर निकालने के लिए बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं, कोई किसी जगह देख लेता है कि ये व्यक्ति नशा कर रहा है या नशे से परिवार बर्बाद हो रहा है, तो कैसे वो संपर्क करें?
2: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि आज के डेट में आप जब भी कभी रेलवे स्टेशन, चौक चौराहे कहीं पर भी जाएं तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे नशे में हैं, या फिर अन्य जो भी यूथ यंगस्टर के बीच में ड्रग्स का बड़ा सुनते हैं, ड्रग्स और ब्राउन शुगर, बड़े बड़े नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं। वैसी स्थिति में अगर आप कहीं जा रहे हैं, एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, उनका अपना एक नंबर है 1399, ये टोल फ्री नंबर है, आप कहीं देखते हैं कि अगर ड्रग्स संबंधी कहीं क्राइम हो रहा हो, अपने क्षेत्र में कहीं देख रहे हैं कि ड्रग्स से रिलेटेड कुछ किसी तरह की हिंसाएं हो रही हो, आसपास के क्षेत्र में कोई ड्रग्स ऐसा कुछ ड्रग्स हो जिसका कल्टीवेशन किया जा रहा हो, तो इस तरह के कोई भी संबंधित ऑफेंस आपके नज़र में आता है तो आप 1399 में टोल फ्री नंबर है, इसमें कॉल करें, भारत सरकार के नंबर है, उसमें त्वरित उसमें जो है उसमें कार्रवाई होती है, उस पर एक्शन लिया जाता है डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के तरफ से। उसके अलावे अगर लग रहा है कि कोई नशे के में पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से नशे की में ही धूर्त रहता है, वैसी स्थिति में अगर उसका पुनर्वास करना हो, उसको फिर से रिहैबिलिटेट करने की ज़रूरत है, तो वैसे स्थिति में हम कहाँ जाएँ, किन को कॉल करें, तो उनके लिए भी एक टोल फ्री नंबर है 1-444-6-1-444-6। तो ये नंबर पर भी आप कॉल करके जो है, आप कॉल करके अपना जो भी सूचना जो है दे सकते हैं, और इससे जो भी नशा मुक्ति केंद्र संबंधित या भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं उसमें जाती हैं, त्वरित कार्रवाई करते हैं, उनका रिहैबिलिटेशन का, उनको मेडिकल असिस्टेंस का, उनको साइकेट्रिस्ट के माध्यम से काउंसलिंग का सारा व्यवस्था प्रदान करते हैं। उसके अलावा भी लगता है कि ये ड्रग्स एब्यूज के इस तरह के लोग हैं जिनको कानूनी मदद चाहिए, या फिर इन दोनों में से किसी भी तरह का रिहैबिलिटेशन हो, या फिर उनको कंप्लेन संबंधित कुछ पैसा, तो भी आप नालसा का जो टोल फ्री नंबर है 15100, मैं रिपीट करता हूँ 15100 पे कॉल करके भी आप अपनी सूचना दे सकते हैं।
1: तो इन तीन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, 15100, 1399 और 1-444-6 पर आप अपनी बात रख सकते हैं और सूचना दे सकते हैं, और जहां भी इस तरह की गतिविधियां आपको दिखती है तो आप इस पर फोन कीजिए और इस पर त्वरित गति से कार्रवाई की जाती है।
2: बिल्कुल
1: दीपक जी, क्या आह्वान करेंगे खासकर हमारे युवा साथियों से कि नशे से दूरियां बनाएं और एक स्वस्थ जीवन जीवें और राष्ट्र को एक नई दिशा की ओर ले जाएं?
2: मैं सबसे पहले एक स्लोगन से स्टार्ट करूंगा, से यस टू लाइफ एंड से नो टू ड्रग्स। मैं सभी युवा साथियों से यही अपील करूंगा कि चूंकि आप देखिए देश का आप सबसे ऊर्जावान व्यक्ति हैं, जो भी आज के डेट में यूथ हैं सबसे ऊर्जावान व्यक्ति हैं, और अगर आप नशे का सेवन करते हैं, नशे के गर्त में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने देश का भविष्य तो बिगाड़ ही रहे हैं, अपने परिवार अपना भी भविष्य बिगाड़ रहे हैं। तो मैं आपसे यही अपील करूँगा कि ये नशा छोड़े, क्योंकि नशा से कुछ भी फायदा नहीं, नशा जैसे जैसे आप नशा में बढ़ेंगे तो आप अपने आप को भी बर्बाद कर रहे होंगे, परिवार भी आपके बर्बाद हो रहेगी, समाज भी आपके बर्बाद, देश को भी आप बर्बाद कर रहे होंगे। इसीलिए इस आह्वान के साथ मैं ही अपील करूंगा कि आप अपने अंदर से नशा को छोड़े, पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपना आगे का जो भी है आप बढ़ते, निरंतर बढ़ते रहिए, इससे आपका सर्वांगीण विकास होगा, ना कि नशा करने से।
1: क्योंकि आज के युवा देश के भावी कर्णधार है और यही युवा देश को आगे ले जाएंगे, राष्ट्र को बुलंदियों तक पहुंचाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत

नालसा की डॉन स्कीम पर लाभप्रद जानकारियां दे रहे थे और इनसे बातें कर रहे थे श्री संजीव कुमार लाल। मित्रों, अब बढ़ते हैं आज के अंतिम चर्चा की ओर। आज हम चर्चा करेंगे नशा से बिगड़ता परिवार, रोको नशा दूर करो निराशा विषय पर, और इस विषय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं नशा से बिगड़ता परिवार। मित्रों, परिवार समाज की आधारशिला है। एक सुखी और स्वस्थ परिवार ही एक मजबूत समाज और राष्ट्र का निर्माण करता है। परिवार में प्रेम, विश्वास, सहयोग और आपसी सम्मान का होना आवश्यक है। लेकिन जब परिवार का कोई भी सदस्य नशे की लत का शिकार हो जाता है, तब परिवार की खुशियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। शराब, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, अफीम तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पूरे परिवार को संकट में डाल देता है। आज नशाखोरी एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुकी है, जो अनेक परिवारों को टूटने का कारण बन रही है। नशे की बढ़ती समस्या, आज की आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव, गलत संगति, बेरोजगारी, दिखावे की प्रवृत्ति के कारण नशे का चलन बढ़ता जा रहा है। कई लोग मनोरंजन या शौक के रूप में नशा शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह उनकी आदत बन जाती है। कई बार नशे की लत लग जाने पर उनसे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। इसका दुष्प्रभाव व्यक्ति के साथ साथ परिवार पर भी पड़ता है। परिवार पर नशे का सबसे अधिक प्रभाव आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। नशा करने वाला व्यक्ति अपनी आय का बड़ा हिस्सा नशे की वस्तुओं पर खर्च कर देता है। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। बच्चों की पढ़ाई, भोजन, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जरूरतों पर खर्च कम होने लगता है। कई बार परिवार कर्ज के बोझ तले दब जाता है। नशे की लत के कारण व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा और आक्रामक हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। परिवार में शांति और सौहार्द समाप्त हो जाता है। पति पत्नी के संबंध में तनाव बढ़ता है और घर का वातावरण अशांत हो जाता है। नशे की लत बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चे अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखते हैं। यदि घर में कोई भी सदस्य नशा करता है तो बच्चों पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। वो मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते और कई बार गलत रास्ते पर भी चल पड़ते हैं। नशा व्यक्ति के शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। इससे अनेक गंभीर बीमारियां हो सकती है। जब परिवार का कमाने वाला सदस्य बीमार पड़ जाता है तो पूरा परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इलाज में होने वाला खर्च भी आर्थिक बोझ बढ़ाता है। मित्रों, सामाजिक सम्मान में कमी होना भी नशा का कारण माना जा सकता है। नशाखोरी के कारण व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा घट जाती है। लोग ऐसे परिवार से दूरी बनाने लगते हैं। इससे परिवार के अन्य सदस्यों को भी शर्मिंदगी और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। नशे के कारण परिवार के टूटने का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लगातार नशे और उससे जुड़े विवादों के कारण कई परिवार बिखर जाते हैं। पति पत्नी के बीच अलगाव, बच्चों की उपेक्षा और रिश्तों में दरार जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। कई बार स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि परिवार टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। साथियों, आइए हम नशे के बचाव के कुछ उपाय पर प्रकाश डालते हैं। नशे के दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। युवाओं को अच्छी संगीत और सकारात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित किया जाए। परिवार में प्रेम, संवाद, सहयोग का वातावरण बनाया जाए। विद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जाए। नशे की लत से पीड़ित लोगों को उचित परामर्श और उपचार उपलब्ध कराया जाए। खेल, योग और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए ताकि लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। मित्रों, नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है। यह आर्थिक, सामाजिक और मानसिक समस्याओं को भी जन्म देता है तथा परिवार के सुख शांति को नष्ट कर देता है। एक खुशहाल परिवार और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए नशे से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। हमें स्वयं भी नशे से बचना चाहिए और दूसरों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना चाहिए। जब परिवार नशा मुक्त होगा तभी समाज और राष्ट्र मजबूत, स्वस्थ और समृद्ध बनेगा। तो दोस्तों,
इसी के साथ आज का हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज की प्रस्तुतियां, बातें और गीत संगीत का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो मित्रों,

0: अब दीजिए अनुमति अपने मित्र युवराज को और फिर से होगी मुलाकात अगले सप्ताह नए विषयों, नई जानकारियों और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।
1: कल्याणी के अंतर्गत चर्चा हो रही थी परिवार में बिगड़ती एकता आखिर क्यों, साथ ही भेंट वार्ता, नशा मुक्त भारत अभियान और नालसा की डाउन स्कीम पर। इस विषय पर संजीव कुमार लाल की बात हो रही थी श्री दीपक कुमार साहू से। प्रस्तुति थी संजीव कुमार लाल की।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:30:50 होने को हैं। हम उपस्थित हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम जोहार रांची के साथ। जोहार रांची कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त सुनीता और मेरे साथ हैं
1: आभा।
0: आप सभी को हमारा
1: जोहार
0: नमस्कार। और आभा बताओ कैसी हो?
1: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए।
0: मैं भी अच्छी हूँ। और ये कार्यक्रम जब हम लेकर आते हैं ना, तो हमारे मन में ये बातें चलती हैं कि आज हम अपने श्रोताओं से क्या कुछ शेयर करेंगे, क्या बातें करेंगे, कौन सी जानकारी देंगे।
1: हाँ, और हमेशा की तरह हमारे श्रोता जानते ही होंगे कि इस कार्यक्रम में हम ढेरों जानकारियाँ
0: देते हैं और बीच बीच में हम उन्हें, क्योंकि उन्हें बोरियत ना हो इसलिए उन्हें हम कुछ कुछ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गीत भी सुनवाते हैं। और गीत की बात हो रही हो तो बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ आज इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। फिर हमारे पास करने को होंगी ढेरों बातें।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित
2: जोहार रांची कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और गीत हमने सुना, गीत के बस एक छोटा सा संदेश भी हमने सुना, और अब अपने श्रोताओं से बातें करते हैं कुछ अच्छी बातों पे, कुछ अच्छी बातें जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। तो आप बताओ क्या है वो अच्छी बातें जो हमें मोटिवेट करते, हमारे श्रोताओं को मोटिवेट करें।
3: तो कहते हैं ना, जीवन जितना सरल रखेंगे सुकून उतना ही ज्यादा मिलेगा, और शिकायतों में अगर उलझे रहेंगे तो दिल सदा परेशान रहेगा। छोड़ दीजिए बीते कल की थकान, नए सपनों को रास्ता मिलेगा। छोटी छोटी खुशियों को अपनाइए, जिंदगी भर
2: जिंदगी का सफर आसान लगेगा। तो कहने का मतलब बस इतना ही है ना कि जितना नॉर्मल, जितना कैजुअल तरीके से हम अपने रोज की जिंदगी जिएंगे ना, हमारे लिए जीना उतना ही सरल होगा। और बात करें अगर हम सुकून की, तो सुकून हमें तब मिलता है जब हम बाहरी मतलब बेवजह की बातों में हम उलझते नहीं है।
3: हाँ।
2: शिकायतें एक दूसरे की करें ना, या किसी
3: जितना
2: जीवन में जितनी शिकायतें कम हो ना, जीवन में सुकून उतना ही रहता है। और बात कर लेते हैं हम अपने जीवन के सफर की, रास्तों की। तो जीवन है, कठिन परिस्थितियां आती हैं, मुश्किलें भी आएंगी, समस्याएं भी आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम थक जाएं, हम हार जाएं। मन को मजबूत रखिए, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए, अपना संबल मजबूत रखिए। जिंदगी बहुत आराम से, आसानी से जो जिंदगी का सफर है ना, वो कट जाएगा।

0: आमा,
1: मुझे लगता है एक बात मैं तुमसे पूछ रही थी कि जब तुम सवेरे यहाँ आ रही थी स्टूडियो अपने श्रोताओं से बातें करने के लिए, सुबह आना तो बहुत ही अच्छा लगता है और सुबह में इतने सारे कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं हमारे केंद्र से तो और भी अच्छा लगता है, लेकिन जब रस्ते में तुम आ रही थी उस वक्त तुम्हें कैसा लग रहा था? मैं सुबह जागी थी इसलिए मैं पूछ रही हूँ।
0: कल जैसे कि बहुत बारिश हुई है तो उस अनुसार सुबह का मौसम तो बहुत ही ठंडा था, मतलब अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी और गर्मी का एहसास थोड़ा कम था,
1: मतलब लग रहा था कि अभी गर्मी नहीं है, लेकिन जब मैं आ रही थी
0: अभी धूप है ना, काफी धूप है, अभी
1: धूप है और ह्यूमिडिटी है, तो कैसा रहेगा मौसम का मिजाज आजकल में हम अपने श्रोताओं को थोड़ी सी बातें बता देते हैं। बता दें कि झारखंड में संथाल के रास्ते मॉनसून प्रवेश कर चुका है, थोड़ा सा धीरज रखिए, गर्मी बहुत जल्द कम हो जाएगी। पाकुड़ के पाकुड़िया समेत संथाल के कुछ हिस्सों में इसका असर भी दिखा है, कहीं काले घने बादल छाए रहे तो कहीं देर शाम बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग की माने

0: तो एक से दो दिन में मानसून का असर दिखने लगेगा और बताया जा रहा है कि झारखंड में पिछले वर्ष की तुलना में मानसून ने 5 दिन पहले दस्तक दी है और जबकि पिछले साल ये 17 जून को पहुंचा था।
1: और साथ ही मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के सभी हिस्सों में मानसून के प्रवेश करने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं और सिस्टम जो कह रहे हैं उससे झारखंड में बारिश होने की संभावना तो है ही, साथ ही उत्तर पश्चिम राजस्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक निम्न दबाव की ट्रफ बनी हुई है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, झारखंड, बंगाल से बंगाल की खाड़ी तक कायम रहेगा।
0: और बताएं अपने श्रोताओं को कि इसके अतिरिक्त दक्षिण पश्चिमी मानसून भी उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पूरे हिस्से में, पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार के आधे भाग, ओडिशा और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में कायम है। तो अगले 2 से 3 दिनों में ये झारखंड के अलावा बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के बाकी बचे जो क्षेत्र है वहाँ मानसून आ जाएगा। मौसम विभाग की मान ले तो 1 से 2 दिनों में झारखंड के रांची समेत कोल्हान के सभी जिले, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, सिमडेगा, खूंटी आदि जिलों में मानसून का प्रवेश हो जाएगा और इसके बाद पूरे झारखंड में इसका प्रवेश हो जाएगा।
1: और आपको पता ही है, आपको बता दें झारखंड में शनिवार को संताल के दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़, गुड्डा, साहिबगंज के साथ गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और रामगढ़ में आंधी और गरज के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है
0: और 2 से 3 दिनों में हर हिस्से में इसी तरह की मौसम को आप देख सकते हैं।
1: और जैसा कि मतलब झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है तो उसमें अगर देखा जाए तो झारखंड में जो है कायम रहेगा और गर्मी थोड़ी कम होगी,
0: गर्मी कम हो जाएगी। तो गर्मी कर रही हो तो तापमान बता देते हैं अपने श्रोताओं को। आज का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रहेगा और अनुमान आज के कर लेना तो बादल छाए रहेंगे, तेज हवा के साथ बारिश होने के कहीं कहीं आसार है। यानी कुल मिलाकर मौसम बेहद सुहाना है, बहुत प्यारा है और खुशी की बात यह है कि मानसून अब दस्तक दे चुका है। लोग बहुत परेशान थे भीषण गर्मी से, लेकिन अब और आज के बाद मौसम बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा और बहुत ही प्यारा हो जाएगा, यूं कहें कि बिल्कुल खुशनुमा हो जाएगा।

0: और आभा,
1: हाँ
0: गाना है बहुत अच्छे अच्छे सुनवा रही हो तुम अपने श्रोताओं को,
1: लेकिन आज गाने तो आप सुनवा रही है अभी, है ना,
0: हम दोनों मिलकर सुनवा रहे हैं क्योंकि अगर गाने अच्छे नहीं होंगे ना तो कार्यक्रम की खूबसूरती वैसे भी कम हो जाती है। बातें तो बहुत होती हैं, बातें हम करते भी हैं और आज भी करेंगे, और आज हम बात कर लेंगे अंतर्राष्ट्रीय अल्बनिज्म यानी रंगहीनता जागरूकता दिवस की, जो हर साल 13 जून को मनाया जाता है।
1: और आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य एल्बिनिज्म आनुवंशिक स्थिति, जिसमें त्वचा, बाल और आंखों में मेलानिन की कमी होती है, उससे पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों का जश्न मनाना है और उनके प्रति होने वाले भेदभाव को रोकना और समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करना है।
0: और हम अपने श्रोताओं को बताएं कि पहला रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया 13 जून 2019 को और इसका विषय था स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, यानी रंगहीनता एक दुर्लभ गैर संक्रामक अनुवांशिक रूप से जन्म के समय मौजूद भिन्नता है, जिसमें बालों, त्वचा और आंखों में मेलानिन के कमी के कारण त्वचा का रंग है ना
1: बदल जाता है,
0: जिससे सूर्य और प्रकाश की भेदता होती है, मतलब स्किन को वो ज्यादा प्रभावित करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं या देखते हैं कि जिनका स्किन हमारे स्किन से अलग,
1: अलग है, हाँ।
0: तो उन्हें खुद में शायद थोड़ी सी हीन भावना आ जाती है कि हम ऐसे क्यों हैं, मुझ में ऐसे क्या कमी है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए आज का दिन मनाया जाता है, इसलिए ताकि वो अपने आप को भी हमारे जैसा समझे, उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है, ये अनुवांशिक बीमारी है जिसका इलाज धीरे धीरे आ रहा है सामने और बहुत लोग इससे ठीक भी होते हैं। तो कोशिश ही करना चाहिए कि जो ये अगर इस रंगहीनता से कोई पीड़ित है तो उसे दुखी उदास होने की जरूरत नहीं है, उसे भी उतना ही हक है जितना हम और आप मिलकर अच्छे से जीते हैं, और उनसे भेदभाव करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसान है। अब ये बात और है कि मेलानिन की कमी उनके स्किन में है तो जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत होती है, तो इसी भेदभाव को दूर करने के लिए आज का
1: दिन जो है मनाया जाता है।
0: और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आज का दिन है इसे हम सब मिलकर उनको समर्पित करते हैं जो इससे पीड़ित है, और उनमें आत्मविश्वास की भावना जगाते हैं कि इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को स्ट्रांग रखिए और अपने काम जो करते हैं उसे संबल के साथ करिए। और हम आपके लिए खूबसूरत सा गीत लेकर आए हैं।

0: और आभा बात कर रहे हैं हम आज के दिन की, तो आज एक और खास दिन है, आज है इंटरनेशनल यंग ईगल्स डे। ये क्यों मनाया जाता है बताओ जरा,
1: तो आपको
0: और कब मनाया जाता है?
1: हाँ, तो हर साल जून के दूसरे शनिवार को ये मनाया जाता है,
0: जो कि आज है।
1: हाँ, और इस दिन का मुख्य उद्देश्य 8 से 17 साल के बच्चों और युवाओं में विमानन और पायलट बनने के प्रति रुचि जगाना है।
0: हाँ, और इस खास दिन से जुड़ी कुछ प्रमुख बातों पर नजर डाले, उद्देश्य पर नजर डाले, तो इस कार्यक्रम का लक्ष्य युवाओं को उड़ान का पहला अनुभव प्रदान करना और उन्हें विमान के चमत्कारों से परिचित कराना होता है।
1: और इसका आयोजक जो है, इसकी जो पहल है वो एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट एसोसिएशन द्वारा चलाई जाती है,
0: और इस पहल के तहत वॉलंटियर और प्रमाणित पायलट बच्चों को सामान्य विमानों यानी जनरल एविएशन एयरप्लेन्स में मुफ्त विमान यात्रा का अवसर भी देते हैं।
1: और साथ ही सीखने का मौका भी दिया जाता है इस दौरान। उड़ान के दौरान जो है बच्चों को विमान के नियंत्रण यानी कि कंट्रोल्स और उपकरणों के बारे में बुनियादी जानकारी भी दी जाती है।
0: तो ये बहुत अच्छी चीज है और बहुत अच्छी जानकारी भी है, क्योंकि जो बहुत बच्चे पायलट भी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आज का दिन बेहद खास है कि आज अगर वो 8 से 17 साल के आयु में है और इंटरेस्ट है, तो इसके द्वारा जो जिसके जो आयोजक हैं EAA, तो उनके जरिए आप इसमें भाग ले सकते हैं, विमानों के बारे में जान सकते हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान सकते हैं। और फिलहाल हम अपने श्रोताओं को एक गीत सुनवा लेते हैं, जो कि ये गीत जो है ना हवाई जहाज पे ही फिल्माया गया, यानी
1: बातें भी तो वही की,
0: बातें वही कर रहे हैं, तो एक प्यारा सा गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा देते हैं और साथ ही शुभकामनाएं देते हैं उन बच्चों को जो पायलट बनना चाहते हैं।
1: हाँ,

0: और बात आज के दिन की कर रहे हैं आभा, तो आज के इतिहास पर भी एक नज़र डालना ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और हमें आगे बढ़ने की भी प्रेरणा देती हैं। अगर कुछ दुर्घटना घटी तो उनसे हम सबक लेते हैं, और कुछ अच्छी बातें हुई तो उनसे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।
1: हाँ।
0: तो हम अपने श्रोताओं को बताएं कि आज यानी 13 जून 1420 में जलालुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था।
1: और सन 1940 की बात करें तो आज ही के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की हत्या कर उस हत्याकांड का बदला लेने वाले भारतीय उधम सिंह को लंदन में फांसी दे दी गई थी।
0: 1993 में आज के दिन ही किम कैम्बेल कनाडा की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी।
1: और 1997 में आज ही के दिन दिल्ली के उपहार सिनेमा
0: में एक दुर्घटना घट गई थी जिसमें काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी और बहुत लोग घायल भी हो गए थे। और बात कर ले आज के दिन 2002 में के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल समझौते की समय सीमा समाप्त हो गई थी।
1: और 2005 में आज ही के दिन ईरान 2009 के अंत से 25 वर्षों के लिए भारत को तरल प्राकृतिक गैस का निर्यात करने पर सहमति
0: बन गई थी।
1: हाँ।
0: और आज ही के दिन 2008 में टेलीकॉम मलेशिया ने आइडिया सेलुलर कंपनी की 15% हिस्सेदारी खरीद ली थी। और चीन और ताइवान ने विमान सेवा शुरू करने के संबंध में आज ही के दिन एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और बात कर लेते हैं उनकी जिनका आज निधन हुआ, जो हमारे बीच से चले गए। आज ही के दिन 2016 में मुद्रा राक्षस भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक और व्यंग्यकार थे, उनका निधन हुआ था।
1: 2008 में कीर्ति चौधरी, जो तीसरे सप्तक की एकमात्र कवित्री थी, उनका निधन हुआ था।
0: मेजर मनोज तलवार भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों में से एक थे, उनका निधन यानी 13 जून 1999 को हुआ था।
1: और इसी वर्ष मेजर विवेक गुप्ता, जो महावीर चक्र से सम्मानित भारत के जाबाज सैनिक थे, जैसे कि आप बताएं,
0: उनका निधन
1: हुआ था। और 1994 में राजकुमार जयचंद्र सिंह, जो मणिपुर के भूतपूर्व 7वें मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हुआ था।
0: और आज ही के दिन 1967 में विनायक पांडुरंग कर्मकर भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, उनका निधन भी हुआ था।
1: 1922 में आज ही के दिन नानक भील, जो अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे, उनका निधन आज ही के दिन हुआ था।
0: रफी उदारत जात 10वां मुगल बादशाह था, जिनका निधन भी आज 1719 में हुआ था। और आज भारत के प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन का भी निधन हुआ था। तो इन्हें हम सब को श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। बात कर लेते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है।
1: हाँ, तो 1994 में दीपिका कुमारी, जो भारतीय महिला तीरंदाज हैं, उनका जन्म हुआ है।
0: और भारतीय राजनेता पीयूष गोयल का भी आज जन्मदिन है। साथ ही आज जन्मदिन है बान की मून का, संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव थे।
1: और आपको बता दें 1923 में आज ही के दिन प्रेम धवन का भी जन्म हुआ था, जो हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार थे।
0: तो इन सबको हम
1: जन्मदिन की
0: बहुत कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं है तो लेकिन जन्मदिन है इनका, तो उनको हम शुभकामनाएं देते हैं। जो आज हमारे बीच है उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, जो आज नहीं है उनको हम नमन करते हैं।
1: नमन।
0: और बातें बहुत हो गई है आभा, फिलहाल श्रोता सोच रहे होंगे कि लगातार ये दोनों बातें कर रही हैं, हमारा तो इनको ख्याल ही नहीं है, तो ऐसा वो ये सोचे। उससे पहले हम उनका ख्याल करते हैं, उनको एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: और अबा बहुत सारी जानकारी हम अपने श्रोताओं को दे दें, लेकिन आज एक बहुत जरूरी जानकारी अपने श्रोताओं को देनी है। बताओ क्या बात है वो?
1: क्योंकि आज और कल जो है मैपिंग कैंप में जो है वोटर मतलब कार्ड में
0: एसआईआर कार्ड चल रहा है ना हमारे राज्य में,
1: उसको सही करने के लिए मतलब कैंप लगाया गया
0: है। 13 और 14 को कैंप लगाया गया है, और इसलिए लगाया गया है ताकि अधिक से अधिक मतदाता कैंप में पहुंचे, अपना नाम जरूर देखे, और 2003 में जिनका वोटर लिस्ट में नाम है ना उनका नाम इसमें तो जरूर ही होगा।
1: हाँ।
0: और एड ऑन करने के लिए भी अप्लाई किया जा रहा है, तो उसको भी
1: जो नए मतलब
0: नए मतदाता बन रहे हैं
1: उनको जोड़ने का भी काम हो रहा है,
0: तो इसलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द अपना जो आप बूथ है जहां आप वोट डालने जाते हैं उस बूथ पे जाएं, वहां पे आज और कल 2 दिन कैंप लगाया गया है। कैंप में अपना मतदाता
1: नाम भी चेक करें।
0: साथ ही अगर आपको नया नाम जुड़वाना है तो उसके लिए भी वहां पे लोग बैठे हुए हैं, उनके पास जाइए, उनसे मिलिए। और कहते हैं ना कि मतदाता होना बहुत जरूरी है
1: क्योंकि आपका वोट आपका अधिकार है, और इसी के थ्रू आप अपना वोटिंग भी करते हैं, है ना।
0: और जीवन जो है ना जरूरी है, इसलिए क्योंकि मतदाता जो है जब तक नहीं होंगे देश भी नहीं चलेगा, हम भी नहीं चलेंगे।
1: बिल्कुल।
0: और देश चलाने के लिए, देश को विकास के लिए आपका वोट जो है ना बहुत कीमती है, तो अपने वोट का ध्यान रखें, और जो कि कैंप लगाया जा रहा है पूरे राज्य में उसमें जरूर जाएं, और बाकी लोगों को भी बताएं।
1: हाँ, जागरूक करें,
0: जागरूक करें। जिनको नहीं पता है अपने घर के आसपास, अगर आपको पता है तो उन्हें बताएं कि आज 2 दिन का कैंप है, आप जरूर जाएं, अपना नाम देखें। बीएलओ वहाँ पे हैं, उन्हें इतना प्रशिक्षण दिया गया है कि वो आपके जो सारी बातें हैं, जो सारी शंका है वो आपके क्लियर कर देंगी, है ना। तो बहुत बातें हो गई और बहुत जरूरी है। अपने श्रोताओं से हम एक बार फिर से आग्रह करेंगे कि आप जाएं अपने वोटर आईडी पे,
1: और इसको लेकर के पैनिक भी ना करें। हाँ, बहुत सारे मतलब लोग जो हैं वो नाम नहीं होने की वजह से पैनिक भी कर रहे हैं।
0: हाँ, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पूरे दस्तावेज हैं और आपने अभी तक वोट दिया है तो आपका नाम जरूर मतदाता सूची में होगा। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री ने भी पहल की है, उन्होंने कहा है कि अपने बूथ पर जरूर जाकर चेक करें। तो आज तो हम लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन कल हम लोग जरूर जाएंगे। ऐसे तुम आज जा सकते हो यहाँ से फ्री होने के बाद।
1: हाँ, हाँ।
0: तो कोशिश करूंगी, अगर मैं भी जल्दी फ्री होंगी तो मैं भी आज जाकर अपना नाम चेक करूंगी। तो अपने सारे श्रोताओं को हम यही बताना चाहते हैं कि आज जो कैंप लगा है ना मैपिंग के लिए, उस कैंप में जरूर जाएं और अपनी पहचान बनाए रखें। और फिलहाल एक खूबसूरत सा गीत अपने श्रोताओं के लिए।

0: और आभा, देखते देखते ना हम अपने कार्यक्रम के बहुत करीब आ गए हैं, यानी समय भी अब बहुत ज्यादा नहीं हमारे पास।
1: मतलब आपके कहने का मतलब है आखिरी पड़ाव पर
0: हाँ,
1: हम आ
0: आखिरी पड़ाव
1: गए,
0: पे
1: है
0: आ गए
1: ना।
0: हम। और इसमें मुझे लगता है ना थोड़ी सी जानकारी अपने श्रोताओं को सेहत के बारे में दे देनी चाहिए, क्योंकि मॉनसून भी आ गया है और बदलते मौसम में लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए। और मुझे इससे पहले तुमसे एक सवाल का जवाब चाहिए। आम खा रही हो?
1: अभी तो फिलहाल बहुत कम खाई हूँ, क्योंकि गर्मी वाला जो फल होता है, मतलब जो आम होता है, वो कार्बाइड से पका होता है, तो
0: अब
1: थोड़ा
0: लेकिन
1: नुकसान भी करता है।
0: आम अच्छे आ गए हैं।
1: हाँ
0: अब तुमने ये नहीं सोचा कि मैंने आम का क्यों ऐसा पूछा तुमसे, क्योंकि देखो अभी आम का सीजन है, आम फलों का राजा।
1: राजा है।
0: आपने
1: हाँ
0: पोएम
1: बिल्कुल।
0: भी सुना
1: हाँ
0: होगा,
1: आम
0: आम
1: फलों
0: फलों
1: का
0: का
1: राजा।
0: राजा, मीठा
1: और
0: मीठा
1: देखा जाए तो
0: राजा,
1: आम सभी को पसंद
0: सभी
1: होता
0: को
1: है, या फिर
0: पसंद
1: वो
0: है,
1: आप किसी भी रूप में खाएं।
0: लेकिन समझदारी से आम को अपने डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। और क्योंकि आम खाने का भी कुछ तरीका है, कुछ नियम है, ऐसा नहीं कि जब मन किया जितना मन किया उतना खा लिए। तो चलो आज हम अपने श्रोताओं को बताएं कि आम खाएं, लेकिन कैसे खाएं और किस तरह से खाएं।
1: हाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आम एक शानदार मौसमी फल है, जिसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी और ए होते हैं, और ये पोषक तत्व शरीर को रोग प्रतिरोधी क्षमता में इजाफा करते हैं। हालांकि इसे प्राकृतिक रूप से शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में खाना

0: है वो काफी कम है, मतलब इतना आप ले सकते हैं।
1: हाँ, इतना खा सकते हैं आप जिसमें, और आम को अकेले खाने के बजाय हो सके तो दही, मेवा, ओट्स के साथ खाएं। और आजकल तो मैंगो केक शेक हाँ। बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और क्योंकि आम खाने के बाद ना पेट बहुत लंबे समय तक भरा रहता है, और इससे शुगर की मात्रा में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होता। कहा जाता है ना कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि आम, अगर आप आपको शुगर है तो आम खाइए, या तो सुबह नाश्ते में या दिन में, रात में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रात में शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है जिससे शुगर की मात्रा अनियंत्रित हो सकती है।
0: हाँ, और अगर आप दोपहर या रात के खाने के साथ अगर आप आम खा रहे हैं तो अपनी थाली में कोशिश करें कार्ब्स जो है जैसे चावल या रोटी की मात्रा थोड़ी कम लें। हाँ, जिसकी वजह से डायबिटीज के मरीजों को जो है डॉक्टरी सलाह दी जाती है कि मतलब ऐसे मतलब बोला जाता है कि आम का भी सेवन करना दिन में आपके लिए सेहतमंद होता है।
1: आम खाने से पहले उसे 2 घंटे पानी में डालकर रख दीजिए। ऐसा करने से आम में मौजूद फाइटिक एसिड निकल जाता है जो शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके साथ ही डंठल से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ भी जो होता है ना वो साफ हो जाता है। अगर वो रहा तो चेहरे पे लग गया तो उससे आपको दाने आ सकते हैं। तो आम मौसम का राजा है फलों में, और आम आ चुका है और अब बारिश भी शुरू हो गई है, तो इसलिए
0: मात्रा में आप खा सकते हैं, चाहे वो किसी भी
1: फॉर्म में खा सकते हैं। हाँ। लेकिन कोशिश करिए एक छोटा आम रोज खाएं। हाँ। तो आप इसे हर दिन खा पाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: और मुझे लगता है कि देखो अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने को
0: तो
1: है,
0: क्यों ना तो आखिरी में एक गीत और सुन
1: लेते हैं और अपने श्रोताओं से विदा भी लेते हैं और कहते हैं
0: जोहार नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम आपकी पसंद का। आपकी पसंद में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त सुनीता। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम में हम बहुत ही खूबसूरत से आपकी पसंद के गीत लेकर आएंगे, लेकिन सबसे पहले भारतीय सेना को समर्पित ये गीत।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

आपकी पसंद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। और आइए सबसे पहला गीत हम सुनते हैं फिल्म कभी कभी से। इस गीत को गाए हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार ने। गीत के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने। धुन बनाई है खयाम ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। और आप हैं ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम। लीजिए अपनी पसंद का सुनिए फिल्म कभी कभी का ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, अभी आप गीत सुन रहे थे फिल्म सिलसिला से। इस गीत को गाया था लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों ने। गीत के बोल लिखे थे हसन कमाल ने, धुन बनाई थी शिवहरी ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप थे इंदिरा बिहार रायगढ़ से, अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम नूरजहां, वली उल्ला नूरजहां। राजनंदगांव से आप थे याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी। आप सबने अपनी पसंद पर सुना फिल्म सिलसिला का ये खूबसूरत सा गीत। अगला गीत हमने लिया है फिल्म खानदान से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। गीत पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं जय बाबा बैजनाथ धाम से मनोज केसरी, पूजा केसरी, महादेव केसरी, श्रद्धानंद केसरी, रोशनी प्रतिज्ञा। साथ ही आप हैं सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा। बिहारी कॉलोनी से आप हैं परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से आप हैं वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्ला आसमा बेलदार। अपनी पसंद पर सुनिए फिल्म खानदान का ये खूबसूरत सा गीत।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम। अगला गीत हमने लिया है फिल्म बम्बई का बाबू से। इस गीत को गाए हैं मोहम्मद रफी, आशा भोसले ने। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने। धुन बनाई है एसटी बर्मन ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जैतक बीरक, मीका बीरक। रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। दंतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। लीजिए अपनी पसंद का सुनिए फिल्म बम्बई का बाबू का ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म वॉरेंट से। इस गीत को गाए किशोर कुमार ने, गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप हैं, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहानकर रहे, श्रीमती सरिता गवहानकर, प्रिंस कांस गवहानकर, बदलापुर मुंबई से आप हैं सिद्धांत गवहानकर, प्रणीता गवहानकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से आप हैं शैलेश गवहानकर, श्रीमती वैशाली गवहानकर, श्वेता सुमित गवहानकर और कुमारी ध्वनि गवहानकर परी। साथ ही आप हैं जतुका किशनपुर से आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, शबाना आलम, नाज प्रवीण और चांदनी नाज। अपनी पसंद पर सुनिए फिल्म वॉरेंट फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का। गृहलक्ष्मी में आज चर्चा होगी सोशल मीडिया और एआई से प्रभावित होता सामान्य जीवन। साथ ही गीतों भरी कहानी आप सुनेंगे। कार्यक्रम की प्रस्तुति है गौरव पांडे की और इस कार्यक्रम में आपके साथ हैं आपकी रेडियो सखी राखी शर्मा।

बहनों नमस्कार। हर लम्हा आपके होठों पर मुस्कान रहे, हर गम से आप अनजान रहें, जिसके साथ महक उठे आपकी जिंदगी, हमेशा आपके साथ वो इंसान रहे। तो बहनों स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। साहित्य और संगीत से सजे आज के कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी राखी। आज का ये सफर बहुत ही सुंदर होने वाला है बहनों, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और बड़ी फुर्सत से हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं। वैसे तो बहनों एआई और सोशल मीडिया के इस दौर में आकाशवाणी के कार्यक्रमों से इस तरह जुड़े रहना बहुत अच्छी और बहुत गहरी बात लगती है हमें, और आप इस तरह से जुड़ी रहती हैं, इससे हमारा उत्साह बहुत ही बढ़ जाता है और हम हर दिन आपके लिए कुछ नया कुछ अच्छा लाने का प्रयास करते हैं। एआई ने जहां एक ओर हमारा जीवन आसान कर दिया है, वहीं दूसरी ओर हमारी जो सृजनशीलता है उसको कम किया है। सब कुछ जब एक क्लिक पर मिल जाए तो इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल क्यों ही करे, है ना बहनों? ऐसा लगता है लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। एआई केवल विज्ञापन या कथाओं और फिल्मों का विषय लगता है हमें, पहले ज़्यादा लगता था, लेकिन अब ये इतना सहज हो गया है हमारे लिए कि हम इसे अपने जीवन का अपने दिनचर्या का अंग बना चुके हैं। हमारे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, बैंकिंग सेवाओं, ऑनलाइन खरीदारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक जो है सोशल मीडिया की पहुंच हो चुकी है। इंटरनेट के माध्यम से सारा कुछ हमारे लिए आसान हो गया है। एआई हमारी सहायता करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऑनलाइन शिक्षा में यह विद्यार्थियों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी प्रदान कर रहा है। वहीं चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो रोगों की पहचान और उपचार को भी अधिक प्रभावी बना रहा है। तेज है, सरल है और सुविधाजनक भी है। इससे समय की तो बचत होती है और साथ ही साथ कई जटिल समस्याओं का समाधान भी हम पा लेते हैं, लेकिन ये कहीं भी इंसानी दिमाग की बराबरी नहीं कर सकता है बहनों। क्योंकि जब एआई नहीं था तब भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों का आविष्कार हुआ, इतनी सहजता से बहुत सारे काम हुए जिसकी कल्पना करना मुश्किल था। कई बार क्या होता है कि हमारी निजता से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जिसके लिए ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसलिए आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन बहुत ही समझदारी और विवेकपूर्ण तरीके से, और साथ ही साथ अपनी जो सृजनात्मकता है उसे कभी भी कमज़ोर न पड़ने दें। आप लिखें, पढ़ें और अपनी बुद्धि विवेक से भी सोचें। तो चलिए बहनों, बातें बहुत सी हैं और फिर हमें कहानी भी सुनवानी है आपको, तो उससे पहले लेते हैं कुछ विराम।

सुरक्षा स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहाँ मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी।

0: डेमो कृषि मशीनों का पावर शो स्टार्टअप आइडियाज किसान सरकार सीधा संवाद सेल्फी पॉइंट्स झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट कल्चरल नाइट्स हर शाम
1: डे वन ग्रैंड ओपनिंग सम्मान और सांस्कृतिक जलवा डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव
0: खेती अब बनेगी स्मार्ट झारखंड टेक्स द स्टार्ट किसान हो या युवा एक्सपर्ट हो या उद्यमी ये मेला है सबके लिए
1: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून
0: और याद रखिए एंट्री बिल्कुल फ्री है
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित
2: विराम के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है बहनों आपके ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में मैं हूं आपके साथ आपकी सखी राखी और जैसा कि हमने वादा किया था कि आज का कार्यक्रम साहित्य और संगीत से सजा है तो उस वादे को निभाते हुए आइए सुनते हैं कहानी और चलते हैं साहित्य की दुनिया में आज की कहानी का शीर्षक है मीठे बोल आलेख और वाचन राखी शर्मा का जी हाँ जो अभी आपसे मुखातिब है ससुराल की दहलीज पर खड़ी पल्लवी के मन में एक साथ कई भाव आ रहे थे प्रियतम से प्रथम मिलन का रोमांच जेठ जेठानियों के प्रति थोड़ा डर थोड़ी घबराहट किस रिश्तेदार से कैसे बात करूंगी इतना बड़ा संयुक्त परिवार सबकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती और पिता के कहे गए शब्द देख बेटा अब तो सिर्फ हमारी नन्ही परी ही नहीं है बल्कि एक जिम्मेदार पत्नी और बहू की भूमिका भी निभानी है तुझे परिवार को समेट कर रखना कोई ऐसा काम न करना जिससे किसी का दिल दुखे सबसे मीठे बोल बोलना अपनी सासू माँ के प्रति तो पल्लवी आश्वस्त थी जब वो शादी के पहले उसे देखने आई थी तब से ही उनके निश्चल हृदय को समझ गई थी पल्लवी सहज प्यार ऐसा लगा जैसे बिन माँ की बेटी को माँ मिल गई हो जब सासू माँ ने उसे गले लगाया और प्यार से उसका माथा चूमा था रस्म और रिवाजों के बीच सबने नई बहू का स्वागत बड़ी गर्माहट के साथ किया जिठानियां ढाल की तरह खड़ी रहीं ताकि पल्लवी की किसी बात पर कोई भी रिश्तेदार उंगली ना उठा सके हर गलती से उसे बचाया गया हंसी ठिटोली के बीच दिन बीता और अपेक्षा से कहीं अधिक बढ़कर रात भी बड़ी सुहानी रही राकेश ने बड़े प्रेम और सम्मान के साथ उसे अपने जीवन में स्थान दिया था

दो ही दिन में पल्लवी ने महसूस किया कि तमाम प्यार दुलार के बीच भी घर का माहौल थोड़ा बोझिल सा है। आंगन में एक दीवार है और जिठानियों का चौका अलग है। पति राकेश यूं तो बड़े अच्छे हैं, अच्छी सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, सबके लिए मन में प्यार भी है शायद, लेकिन बोलते थोड़ा कड़वा है। भाई भाभियों से हंसकर बात करते हुए कभी नहीं देखा। आठवां दिन है आज ये ससुराल में। रसोई घर में लगी है पल्लवी। अचानक कुछ तेज आवाजें सुनकर वो चौंकी। रसोई घर की खिड़की के बाहर झांका तो राकेश की तेज आवाज आ रही थी, साथ ही कुछ और अस्पष्ट सी आवाजें भी थीं। शायद जेठ जी भी बोल रहे थे। वो बदहवास सी गैस खुला छोड़कर ही दरवाजे की तरफ भागी। तभी काम वाली बाई अनीता दीदी ने रोका। बहू, बहू जी, बाहर कहाँ जा रही हैं? पुलिस, दारोगा सब आए हुए हैं बाहर। अनीता दीदी, ये राकेश जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? दीदी, पता कीजिए ना, किस बात पर झगड़ा हो रहा है और किस से? पल्लवी ने बेचैन होकर कहा। क्या पता करूं बहू जी, बड़े भैया और राकेश भैया के बीच कुछ जमीन जायदाद का झगड़ा है। पुलिस भी आ गई है और वकील साहब भी। अब तो घर की बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएगी। बहू जी, मैं बहुत दिनों से इस घर में काम कर रही हूं, मुझे पता है भाइयों के बीच में प्यार है, लेकिन बाहर का कोई आदमी राकेश बाबू को भड़काता रहता है, अनीता दीदी कह रही थी। पल्लवी भागकर सासू माँ के पास गई। वो रो रही थी। माँ जी, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो सुना था कि बाबूजी के स्वर्गवास के बाद बड़े भैया ने ही राकेश को पढ़ाया लिखाया है, फिर राकेश ये झगड़ा क्यों कर रहे हैं उनसे? क्या बताऊं बहू, राकेश दिल का अच्छा है पर कान का कच्चा, दूसरे दुष्टों के बहकावे में आ जाता है और ऐसे ही करता है। जबान वैसे भी मीठी नहीं है इसकी, लेकिन झगड़ा भी करता रहता है। मेरा बड़ा बेटा सीधा है, छोटे भाई को मानता है, एक बार वो प्यार से बोल दे तो जान न्योछावर कर देगा, लेकिन उसका दिल दुख जाए तो बहुत नाराज हो जाता है। माँ जी, आप रोइए मत, मैं हूं आपके साथ। अब पल्लवी सारी परिस्थिति समझ चुकी थी। पूरी रात राकेश भी बेचैनी से करवट बदल रहे थे। कोई सोया नहीं घर में। राकेश का रुख नरम था, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी

0: और कोई आश्वासन भी नहीं। पल्लवी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसे पता है इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। राकेश ने शादी के पहले सगाई के बाद कहा था उससे, पल्लवी, मेरा तुमसे एक वादा है कि मैं तुम्हें एक ऐसा परिवार दूंगा, एक ऐसी दुनिया दूंगा जहां सिर्फ प्यार ही प्यार पलता हो। शायद अब वो समय आ गया है जब पल्लवी राकेश को उसका वो वादा याद दिलाए।
1: दूर गगन की छाव में

0: सुबह हाथ में कुछ लिए पल्लवी जेठ जी के दरवाजे पर खड़ी थी। भैया,
1: भाई,
0: अचकचा से गए। अरे आओ बहू, बाहर क्यों खड़ी हो? भाभी ने बुलाया, लेकिन भैया उठकर वहां से चले गए अपने कमरे में। पल्लवी बिना कुछ बोले चुपचाप उनके पीछे चल दी। बड़े भैया अपने सर पर हाथ रखे सोफे पर बैठे थे। पल्लवी चुपचाप उनके पैरों के पास बैठ गई। बड़े भैया, मैं आपसे उम्र ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में बहुत छोटी हूं। आपके घर में नई आई हूं। घर के मामले में मेरा कुछ बोलना छोटा मुंह बड़ी बात होगी, फिर भी बोलने की धृष्टता कर रही हूं, क्षमा करेंगे मुझे। भैया, राकेश ने बताया था कि बाबूजी के जाने के बाद पिता की तरह आपने सारी जिम्मेदारियां निभाई, अपने सुखों का त्याग करके उन्हें पढ़ाया लिखाया, अपने शौक आराम में कटौती करके उनकी हर जरूरत पूरी की। फिर आज ये विवाद क्यों भैया? हमारे लिए जमीन के किसी टुकड़े से ज्यादा आपका प्रेम, आशीर्वाद और संरक्षण महत्वपूर्ण है। भैया, मैंने माजिद से मांगकर प्रॉपर्टी के कुछ कागजात लाए, आप उन्हें स्वीकार कीजिए। इसमें राकेश के सिग्नेचर भी हैं। भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए सिवा अपने परिवार की सुख शांति के। कृपया ये विवाद रोक लीजिए। पल्लवी हाथ जोड़े घुटनों पर बैठी थी, आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। भैया की आंखें भी भीग गई। नहीं बहू, राकेश तो मेरे बेटे जैसा है, मैं इन कागजात का क्या करूंगा? इस जमीन पर तुम दोनों अपनी नई गृहस्थी शुरू करो, नया घर बनाओ। मेरे लिए तो बाबूजी का यह पुराना घर ही ठीक है। अब घर की बात बाहर नहीं जाएगी बेटा, तुम निश्चिंत रहो, भैया ने पल्लवी के सिर पर हाथ फेर कर कहा। जैसे ही पल्लवी पलटी तो देखा माँ जी के साथ राकेश भी आ गए हैं और सर झुकाए खड़े हैं। अरे रिंकू, बाहर क्यों खड़ा है? तुझे कोर्ट से परमिशन दिलवाना पड़ेगा क्या मेरे पास आकर बैठने के लिए? अचानक राकेश भाग कर आए और बड़े भैया के पैरों के पास बैठ गए। भैया, मुझे माफ कर दो, मेरी जहर जैसी कड़वी बोली ने ही सब बर्बाद कर दिया। कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है, तुझे एहसास हो गया ना अपनी गलती का, अब सब संभल जाएगा, माँ जी ने आंखें पोंछते हुए कहा। परिवार में मीठी बोली का महत्व जानना जरूरी होता है। आज पल्लवी की मीठी बोली और सुंदर व्यवहार ने एक अनर्थ होने से बचा लिया। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। पल्लवी को महसूस हो रहा था कि राकेश की कड़वी बोली के घाव ने पूरे परिवार के हृदय को जो छलनी किया था उस पर अब मरहम लग चुका है। मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करते हुए उसने अपने हाथ जोड़े। आज रात का खाना सबने एक साथ खाया, बोली और व्यवहार की मिठास ने भोजन को सुस्वाद कर दिया था। राकेश ने बड़े प्यार से पल्लवी को देखा, उन नजरों में सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि धन्यवाद भी था।

तो बहनों, ये थी कहानी मीठे बोल, आलेख और वाचन राखी शर्मा का, कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव पांडे की। और इसी के साथ अपनी सखी राखी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ. श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी अपनी दोस्त राखी शर्मा के साथ. इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है. आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है. वक्त है कार्यक्रम शैक्षिक प्रसारण का, जिसमें आज आप सुनेंगे वार्ता संस्कृत भाषा में सुविचार और सुक्तियां. वार्ताकार है मनोज कुमार मिश्रा, प्रस्तुति सहयोग है उदेश कुमार का और प्रस्तुति है गौरव पांडे की.

0: निजी प्रस्तुत है शैक्षिक प्रसारण। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता संस्कृत भाषा में सुविचार तथा सुक्तियाँ। वार्ताकार हैं मनोज कुमार मिश्र।
1: प्यारे श्रोताओं, आज मैं आप सबों को संस्कृत भाषा में सुविचार तथा सुक्तियाँ के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। संस्कृत शब्द दो शब्दों से बना है, सम कृत अर्थात समान रूप से जो भाषा संस्कार सिखाए उसे हम संस्कृत भाषा कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं, पहला वैदिक संस्कृत तथा दूसरा लौकिक संस्कृत। दुनिया की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। प्राचीन काल से अर्वाचीन काल तक इस भाषा की विशेषता रही है कि सभी भाषाओं को सम्यक भाषा का रूप प्रदान करना। इसकी व्याकरण भी सरल और सहज है, इसे पढ़ना और समझना बहुत आसान है। प्राचीन काल में विद्वान वर्ग सभी विषयों में इसका अनुवाद भावार्थ श्लोकार्थ और दुनिया की अन्य भाषाओं में करते हैं। प्रायः विद्वान वर्ग वेद ज्योतिष गणित आयुर्वेद सभी भाषाओं का अनुभव भारत की विभिन्न भाषाओं में करते थे। आज भी विश्व की सभी भाषाओं में संस्कृत सर्वाधिक उपयोगी भाषा है। संस्कृत साहित्य में कथा वार्ता समाचार श्लोक प्रहसन और पंचतंत्र की रचना संस्कृत भाषा में किया गया है। प्रमुख रूप से चार वेद 18 पुराण महाभारत रामायण की रचना सर्वप्रथम संस्कृत भाषा की देन है, जो पूरे संसार में इसे देवों की भाषा कहा गया है। प्यारे श्रोताओं, सर्वप्रथम मैं आपको संस्कृत भाषा में सुविचार के रूप में कुछ इस प्रकार कहना चाहूँगा कि संस्कृत भाषा गौरवान्वित करने वाला भाषा है। आइए मैं इसे संस्कृत भाषा को अपने शब्दों में गौरवान्वित करूँ। गौरवम संस्कृतम, रोचकम संस्कृतम, शोभनम संस्कृतम, पावनम संस्कृतम, पावकम संस्कृतम, गौरवम संस्कृतम, सुंदरम संस्कृतम, भासते भारते संस्कृतम, संस्कृतम वाच नाम संस्कृतम, पाठनम संस्कृतम, ज्ञापनम संस्कृतम, श्रावणम संस्कृतम, चिंतनम संस्कृतम, वर्तनम संस्कृतम, भारते भारतम संस्कृतम संस्कृतम, संस्कृति संस्कृतम, प्रकृति संस्कृतम, तारकम संस्कृतम, पालकम संस्कृतम, जीवनम संस्कृतम, तारकम संस्कृतम, लालनम संस्कृतम, पालनम संस्कृतम, क्रीडनम संस्कृतम, कूर्दनम संस्कृतम, बालकेभ्य सदा रोचते संस्कृतभ्य संस्कृतस्य प्रतापेन मे भारतम। आज भी हमारे समाज में पर्व त्योहार पूजा पाठ विवाह मुंडन सभी कामों में संस्कृत साहित्य का विशेष रूप से संस्कृत भाषा में सुविचार जीवित है, अर्थात संस्कृत भाषा जीवित भाषा है। प्राचीन काल में गुरुकुल की परंपरा रही है तथा कुछ विशेष जगह आज भी गुरुकुल की परंपरा कायम है। आज छात्र समूह भीड़ भाड़ वाली दुनिया में अपने शिक्षण के प्रति सजग तो है, परंतु भारतीय संस्कृति जनादेश को छोड़कर पश्चिमी जनादेश अपना रहे हैं। हमें अपनी सभ्यता तथा संस्कृति की रक्षा करने के लिए हम सबों को देव भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इस भाषा की मधुरता सर्वव्यापक है। प्राचीन काल में गुरुकुल परंपरा में शिष्यगण समूहों को शिक्षित तथा सभ्य नागरिक बनाने का माध्यम संस्कृत भाषा ही रहा है। गुरु अपने शिष्य को शिक्षा तथा दीक्षा दोनों दिया करते थे। जो आज शिक्षा बच गई परंतु दीक्षा शब्द लुप्त हो गया। जिन बच्चों को पहले पढ़ने में मन नहीं लगता था उसे गुरुजी समूह पंडित विष्णु शर्मा स्वस्ति हितोपदेश की पंचतंत्र नामक पुस्तक से शिक्षाप्रद कहानी सुनाकर बच्चों को विद्वान बनाते थे। उस समय शिक्षा की विशेष महानता थी, लोग विशेष रूप से अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते थे। आज भी हमारा समाज संस्कृत भाषा को देवरूप भाषा मानकर बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रयासरत होते हैं। प्यारे श्रोताओं, अब मैं आप सबों को संस्कृत भाषा में सुविचार तथा सुक्तियां बतलाना चाहूँगा, जो इस प्रकार है, आलस्य कुतो विद्या, विद्या अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। भावार्थ इस प्रकार है, जो आलस्य करते हैं उन्हें विद्या नहीं मिलती, जिनके पास विद्या नहीं होती वो

0: वो धन नहीं कमा सकता। जो निर्धन है उनके मित्र नहीं होते और मित्र के बिना सुख की प्राप्ति असंभव होती है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महानृपो नास्तु दमसमो बंधो कृतवायंग नावशीदति। इस प्रकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसमें बसने वाला आलस्य ही है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका परिश्रम है जो हमेशा उसके साथ रहता है। इसलिए वह दुखी नहीं रहता, उसे पछताता कभी नहीं रहता। चंदनम शीतले लोके चंदनामपि चंद्रमा अचंद्रनामा अर्थ्यर्था शीतला साधुर संगति। चंदन को संसार में सबसे शीतल लेप माना गया है, लेकिन कहते हैं चंद्रमा उससे भी ज्यादा शीतलता देता है। लेकिन इन सब के अलावा अच्छे मित्रों का साथ सबसे अधिक शीतलता एवं शांति प्रदान करता है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मानो उन्नति दिशाति पापात्मा करोति चेतः प्रसादयति दीक्षो तनोति कीर्ति सत्संगति कथ किम्ना करोति पूषाम। इस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार की गई है कि अच्छी संगति जीवन का आधार है। अगर अच्छे मित्र साथ हैं तो मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। अच्छी संगति से मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, पापी दोष मुक्त हो जाता है और यह सभी दिशाओं में फैलता है। विद्या मित्रम प्रवासेशु भार्या मित्रम गृहेषु च अव्याधितम अस्योषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। परदेश में विद्या मित्र के समान होता है, घर का मित्र पत्नी कहा गया है तथा रोगी का मित्र उसका दवा औषधि है तथा मृतक पुरुष का मित्र उसका धर्म है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मेहनत करने से कार्य पूर्ण होते हैं, सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं। जैसे हिरण कभी भी सोते शेर के मुख में नहीं समा पाता, उसे शिकार करना ही पड़ता है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्ने पुहन पुहन पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धस्य मुक्तमना जना न परित्यजन्ति। इस श्लोक का भावार्थ है, महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि विघ्न के भय से निम्न कोटि के लोग कोई कार्य प्रारंभ नहीं करते। मध्यम श्रेणी के लोग कार्य आरंभ तो कर देते हैं, लेकिन जरा सा विघ्न आने पर बीच में ही छोड़ देते हैं। और उत्तम श्रेणी के लोग विघ्नों के बार बार आने पर भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ते, अर्थात उसे पूर्ण कर ही छोड़ते हैं और सफलता प्राप्त कर चैन की सांस लेते हैं। इसलिए हम मनुष्य को विपदा की घड़ी में समय का डटकर मुकाबला करना चाहिए। जीवने यस्य जीवन्ति मित्राणि मिष्टा स्वमन्धा सफलम जीवितम तस्य च आत्मार्थे को न जीवति। प्रस्तुत श्लोक का अर्थ है कि अपने लिए तो सब जीते हैं, जन्म उसी का सफल होता है जिसकी वजह से भाई बंधु इष्ट मित्र दोस्त और सभी लोग जीते हैं। कार्यम पुरुषाकारेण लक्ष्यम संपद्यतः दृढ़ संकल्प या निश्चय करने से कार्य पूर्ण हो ही जाता है और सफलता या लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। भवतः लक्ष्यम भवतः जीवनम अस्ति तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हारा जीवन है। आत्मयतो बुद्धि विना सो बुद्धि और विनाश दोनों अपने ही हाथों में है। कालाकीतम कार्यम साधियेत समय की कीमत समझने वाला निश्चय ही अपना कार्य पूर्ण कर लेता है। सजायतेन जातेन याति वंश समुन्नितम परिवर्तने संसारे मृतः को वाणा जायते। भाग्येन गंतव्य लक्ष्यम भवतम पुरस्सतः स्वे कुटुम्बे सदाजेतम वैरम भवतु यादृशम। प्रस्तुत श्लोकांश नीति सत्कम पाठ से ली गई है। भावार्थ यह है कि सही रास्ते में जाना चाहिए। लक्ष्य कितनी भी दूर क्यों ना हो, कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन हमारे परिवार में ही हमें रहना चाहिए। छिन्दता भयात च मा गच्छतु यतः ये निंदति लक्ष्यम प्राप्त मात्रेण मतम परिहर्तते। लक्ष्य प्राप्ति के बाद निंदा करने वालों की राय बदलने लगती है, इसलिए निंदा के डर से लक्ष्य से कभी नहीं भटकना चाहिए। वक्रितोतम सुंदरम यस्सा कृतियस्य सुभ वत्सले लक्ष्मणा सर्वकार्येषु सभी वकीलम प्रीस्ते। प्रस्तुत श्लोकांश का भावार्थ है कि जिसमें ये तीन गुण होते हैं लक्ष्य कीर्ति और वक्तृत्व वह सचमुच में अधिवक्ता कहलाता है। मादकता न विनश्यन्ति मक्तयः वीतलक्षणः मदाक्तानां तु मानुषे सफलम जनवः पांडवः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ समस्त आसक्ति का त्याग करते हुए सफलता और विफलताओं समान भाव लेकर सारे कर्मों को करो ऐसी समता ही योग कहलाती है। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना तृणम न खादन्नपि तदमस्त भागदेयम् परमं पशुनाम। अर्थ जो व्यक्ति साहित्य संगीत तथा कला से निहित है वह साक्षात पशु के समान है। पर घास ना खाकर सिंग ना पाकर इस संसार में मनुष्य होकर भी पशु के समान बिना खुर वाला जानवर होकर विचरण करते हैं। अर्थात जीवन उसी का सफल है जो साहित्य संगीत तथा कला से परिपूर्ण होकर संसार में सम्मान पाता है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम् वचनेम किम दरिद्रता। प्रिय वचन बोलने से सभी मानव खुश हो जाते हैं इसलिए मनुष्य को मीठी वचन बोलना चाहिए। पीबन्ति नद्य स्वयमेव नाभ स्वयमेव न खादन्ति फलानि वृक्ष नादन्ति स्वयं खलु वारिवाहा परोपकाराय सताम विभूतयः। नदियां अपना पानी खुद नहीं पीता वृक्ष अपना फल स्वयं न खाता। इस संसार में ये लोग दूसरों के काम आते हैं अर्थात ये सब दूसरों के लिए जीवन जीते हैं। सुभाषित रत्ना परह श्लोका अनेक कवियों द्वारा रचित तथा अज्ञात पूर्वक श्लोका का संग्रह है। इसमें प्राय 10,000 छोटे बड़े श्लोक हैं। मृक्ष कटिकम शूद्रक द्वारा रचित 10 अंकों का सामाजिक नाटक है जिसमें दरिद्र किंतु कभी संपन्न स्थिति में रहे और वानिकाजीवी ब्राह्मण चारुदत्त तथा मणिका वसंत सेना की प्रेम कथा है। इसमें प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था तथा निरंकुश राजतंत्र का चित्रण है। नीति शतकम भर्तृहरि रचित 100 से अधिक सरल तथा नीति विषयक पद्यों का संग्रह है। इसमें मूर्खों की असाध्यता विद्वानों के महत्व धन की शक्ति और मनस्विता विषयों पर प्रकाश डाला गया है। भामिनी विलास संस्कृत भाषा के उत्कृष्ट कवि तथा काव्य शास्त्री आचार्य पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित अस्फुट मुक्तक पद्यों का संग्रह है। इसमें 4 भाग विलास हैं अन्योक्ति श्रृंगार करुण तथा शांत। परम विलास में कवि ने सिंह हंस कमल मधुकर चंदन मेघ समुद्र आदि को लक्षित कर सुंदर तथा भावपूर्ण अन्योक्ति दी गई है। हितोपदेश नारायण पंडित द्वारा रचित नीति कथाओं की श्लोक लोकप्रिय पुस्तक है। इसकी 43 कथाओं में 25 पंचतंत्र से ली गई है। इसके 4 भाग हैं मित्रलाभ सुंदर योग विग्रह तथा संधि। रामायण आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत भाषा का आदि काव्य है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन का काव्यात्मक वर्णन है। वेदाल पंचविंशति अत्यंत प्राचीन लोक कथाओं का संग्रह है। संस्कृत साहित्य में इन कथाओं का प्राचीनतम रूप क्षेमेंद्र की बृहत काव्यात्मक और सोमदेव की कथा साहित्य में मिलता है।
1: शैक्षिक प्रसारण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता। वार्ता का विषय था संस्कृत भाषा में सुविचार तथा सुक्तियां। वार्ताकार थे मनोज कुमार मिश्र।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम शैक्षिक प्रसारण प्रस्तुति, सहयोग था उदेश कुमार का, प्रस्तुति गौरव पांडे के। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सबसे पहला गीत हमने लिया है फिल्म अकेले हम अकेले तुम से। इस फिल्म के गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है अनु मलिक ने और इस गीत को गाया है उदित नारायण और आदित्य नारायण ने।

बचना ऐ हसीनो, इस फिल्म के गीत को लिखा है अन्विता दत्त गुप्तान ने, धुन बनाई है विशाल शेखर ने और इस गीत को गाया है के और शिल्पा राव ने।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म बैंग बैंग से इस गीत को गाया है। एश किंग, शिल्पा राव और शेखर रविजयानी ने, और संगीतकार हैं विशाल और शेखर।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। समारोह में Sukhoi-30, MKI, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। उधर भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वह अमरीका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत के पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi leaves for France and Slovakia on a six-day visit. Mr. Modi will participate in the G7 summit on the 16th and 17th of this month. In his departure statement, Mr. Modi emphasized that India's presence at the G7 reflects the trust India's partners place in the country's growing global profile. He said this is the eighth consecutive G7 summit to which India has been invited. Mr. Modi also highlighted that France has a special place in India's strategic vision. Mr. Modi said the focus of the visit will be on boosting economic as well as cultural linkages between India and France. Mr. Modi will also go to Slovakia for a

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की देश के युवाओं और खिलाड़ियों की सराहना, कहा विज्ञान, स्टार्टअप और खेल के क्षेत्रों में छोटे शहरों व गांवों के युवा रच रहे हैं नया कीर्तिमान। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने धनबाद में मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया, कहा देश की जनता के विश्वास और सुशासन का जीवंत प्रमाण। सिमडेगा जिले ने मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य शत प्रतिशत किया पूरा। जनगणना के पहले चरण का लक्ष्य हासिल करने वाला राज्य का पहला जिला बना।

0: मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। संताल और कोल्हान क्षेत्र में मॉनसून सक्रिय। और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज जसपाल राणा के आकस्मिक निधन से खेल जगत स्तब्ध। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने दी श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विज्ञान, अंतरिक्ष, विनिर्माण और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में देश के युवा उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में उभरने में छोटे शहरों और गांवों के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसी सरकारी पहलों ने नवाचार और युवा नेतृत्व वाले विकास को नई गति दी है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने धनबाद दौरे के दौरान केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि 12 साल बेमिसाल केवल एक नारा नहीं बल्कि देश की जनता के विश्वास और सुशासन का जीवंत प्रमाण है।
1: तो इन 12 वर्षों में मुख्य रूप से उन्होंने महिला, युवा, किसान और गरीब के लिए जो योजनाएं बनाई, उस योजना का लाभ आम जन तक मिले, तो ये उनके द्वारा लगातार इसको फोकस करके उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। देश की जनता का विश्वास, भरोसा माननीय प्रधानमंत्री जी पर है और लगातार जो चुनाव हो रहे हैं उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है। उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है।
0: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के नागरिकों और व्यवसायियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने मोदी सरकार के कार्यकाल को 12 साल बेमिसाल बताते हुए आयुष्मान भारत, उज्ज्वला और जल जीवन मिशन जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की।
2: मोदी जी के 12 वर्ष में बहुत सारे योजनाएं ऐसे चल रहे हैं जिसमें लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जैसे कि गरीबों के लिए पीएम आवास योजना और ये योजना चला है, आयुष्मान भारत योजना जिसमें गरीबों को इलाज के लिए योजना हो रही है, उसमें काफी लोग आयुष्मान भारत से लाभ ले रहे हैं। उसके बाद पीएम किसान योजना जिसमें हर साल किसानों को 6000 रुपए का अनुदान राशि दिया जा रहा है, इससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इस तरह बहुत सारा योजना भी चल रही है।
0: असम में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सिमडेगा जिले ने जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य शत प्रतिशत पूरा कर इतिहास रच दिया है। झारखंड में यह मुकाम हासिल करने वाला सिमडेगा पहला और अग्रणी जिला बन गया है। जनगणना निदेशालय ने उपायुक्त कंचन सिंह के नेतृत्व में मिली इस उत्कृष्ट सफलता की सराहना की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 29 जून को प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित भव्य कार्यक्रम में JSSC से चयनित 1018 नए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये नियुक्तियां राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिए की गई है। सरकार का लक्ष्य सहायक आचार्य के कुल 26,000 पदों को तेजी से भरकर स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से लापता 3 बच्चों का सुराग लगाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज शाम शहर में मसाल जुलूस निकालेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आक्रोश जताया है।
3: कैबिलम तीनों बच्चों की बरामदगी हो, मतलब बात होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सड़क पर उतरना पड़ेगा। और मैं ध्रुवा मंडल के अध्यक्ष और महानगर कार्यकर्ताओं से कहता हूँ कि कल शाम में 6 बजे उसके बाद यदि बच्चे बरामद नहीं होते तो आगे के आंदोलन की कार्रवाई विचार करके तय। शादियों का इन पुलिस प्रशासन के लोगों से भय बिल्कुल खत्म हो चुका है।
0: रांची नगर निगम ने 30 जून तक 50 करोड़ रुपए होल्डिंग टैक्स संग्रह का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक 32 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। उपनगर आयुक्त गौतम प्रसाद साहू ने बताया कि 30 जून तक एकमुश्त टैक्स भुगतान करने पर नागरिकों को 10% तक की छूट दी जा रही है। गिरिडीह पुलिस ने जिले में गंभीर और जटिल आपराधिक मामलों की त्वरित व सटीक जांच के लिए विशेष जांच सेल का गठन किया गया है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि यह विशेष टीम हत्या, लूट और महिला उत्पीड़न जैसे संवेदनशील मामलों की वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर तफ्तीश करेगी।
4: इन्वेस्टिगेशन सेल हमने यहाँ पे बनाया है अलग से, एक सेल जिले में काम करेगी, दूसरा कोई महुआ अनुमंडल में काम करेगी। जिले की सेल सभी से कोऑर्डिनेट कर वैसे केसेस की सूची इनके पास रहेगी और वो पूरी टीम रहेगी जहाँ पे केस डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे उसका डिटेक्शन किया जाएगा, उसको हर तरह की संभव सहायता दी जाएगी जिला से ताकि उसका अतिशीघ्र उस केस का मतलब डिटेक्शन कर पाए।
0: जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी आशु कर्मकार सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि अपराधियों के पास से घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल, जिंदा गोलियां और खोखे बरामद किए गए हैं।
5: पुलिस अधीक्षक को महोदय के निर्देशन पर एक छापेमारी दल का गठन किया गया और कदमा थाने की टीम द्वारा उसमें काम शुरू किया गया। तो ये घटना छापेमारी करने के लिए टीम गठित थी, उसके द्वारा कार्य शुरू किया गया और सती घाट खरकई नदी के किनारे से 2 लोगों को पकड़ा गया। इस मामले में जो पिस्टल इस्तेमाल हुई थी देसी पिस्टल वो बरामद कर ली गई है और भी कुछ चीज पर टैच मारती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।
0: उत्तर प्रदेश के देवगांव कोतवाली क्षेत्र में एक कार और ट्रक के बीच में हुई आमने सामने की भीषण टक्कर में पलामू जिले के मेदिनीनगर के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिनका इलाज जारी है। सभी डेहरी में बारात में शामिल होने के बाद किछौचा शरीफ से वापस लौट रहे थे। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,48,000 रुपये प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। राज्य में मॉनसून ने संताल परगना के रास्ते दस्तक दे दी है, जिसके चलते मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुल्हान और संताल क्षेत्रों में इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 72 घंटों के भीतर मॉनसून पूरे राज्य को कवर कर लेगा। इधर रांची में आज दोपहर गरज और चमक के साथ तेज बारिश हुई। प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जसपाल राणा के आकस्मिक निधन पर झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने गहरा शोक व्यक्त किया है। एसोसिएशन ने उनके निधन को भारतीय खेल जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने मनु भाकर जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी देश को दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की देश के युवाओं और खिलाड़ियों की सराहना, कहा विज्ञान, स्टार्टअप और खेल के क्षेत्रों में छोटे शहरों व गांवों के युवा रच रहे हैं नए कीर्तिमान। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने धनबाद में मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया, कहा देश की जनता के विश्वास और सुशासन का जीवंत प्रमाण। सिमडेगा जिले ने मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 100% किया पूरा। जनगणना के पहले चरण का लक्ष्य हासिल करने वाला राज्य का पहला जिला बना। मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। संताल और कुल्हान क्षेत्र में मॉनसून सक्रिय। और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज जसपाल राणा के आकस्मिक निधन से खेल जगत स्तब्ध, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने दी श्रद्धांजलि। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और सिर्फ एफएम 100.5 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। हमारी आज की कलाकारा हैं श्रीमती शोभा गुट्टू, जिनसे हम सुनेंगे सबसे पहले मिश्र खमाज में ठुमरी और दादरा। संगत कलाकार हैं सारंगी पे ध्रुवजीत घोष, हारमोनियम पे पीर वाला वालकर और तबले पर साथ दे रहे हैं अनीश पठान।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। हमारे आज के कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह, जिनसे हम सुनेंगे चंद गजलें। आइए सबसे पहले सुनते हैं मिताली सिंह की आवाज में ये गजल। बोल लिखे हैं मलिक कोमनाम ने, धुन बनाई है भूपेंद्र सिंह ने। कार्यक्रम हम सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित

भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाय इस गजल के साथ ही आज का सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: continuously update themselves with emerging war systems and strategies.
1: Radar, satellites, drones.
2: Many systems such as radars, satellites, drones, sensors and robotics are deployed in today's warfare, in which neither the fighter is known nor their machinery and equipment. And today the definition of warfare has changed to a great extent. I believe that in your training programs and exercises, you have been well prepared to face uncertainty and unexpected challenges.
0: The Defence Minister also commissioned the first batch of women cadets trained at the National Defence Academy who had joined the Air Force Academy for branch-specific training after passing out from the NDA last year. The ceremony also featured aerial displays by the Sukhoi 30 MKI, the Sarang Helicopter Display Team and the Surya Kiran Aerobatic Team. Senior officials from various wings of the Defence Forces attended the event. India has lodged a strong protest to the United States over U.S. Navy strikes on oil ship in the Gulf that killed three Indian sailors. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio and said that such lethal actions against commercial shipping are not justified. The conversation comes days after three Indian crew members were killed in a U.S. strike on the Palau-flagged tanker MT Setebello off the coast of Oman, triggering a sharp response from New Delhi. External Affairs Ministry today said reports of death of Indian sailors in vessel Liaki Freedom are incorrect. The ministry said it has spoken to the master of the vessel Liaki Freedom, which has confirmed that all crew members are safe. The fact-check unit of MEA has urged people to stay alert against such false and baseless claims and posts on social media. The Enforcement Directorate, or ED, today conducted searches at seven premises in Kolkata and nearby areas in connection with alleged municipality recruitment scam in West Bengal. The searches are being carried out at locations linked to TMC MLA and former Minister Madan Mitra. According to ED, investigations conducted so far have revealed that Madan Mitra allegedly received bribes in the form of cash and gold through middlemen in connection with the appointment of ineligible candidates to various posts in different municipalities, including the Kamarhati municipality. The agency has alleged that Madan Mitra is linked to more than 125 such illegal appointments. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force has met with an accident at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning. Indian Air Force said that a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. Niti Aayog held a meeting with the German delegation aimed at advancing the Indian-Germany Development Partnership in New Delhi. The India-Germany Development Partnership highlighted the complementarity between Germany's technical expertise and development finance capabilities and India's policy ambition and institutional scale. According to the Niti Aayog, the discussions covered key areas of cooperation, including India's net zero transition, renewable energy, circular economy, agricultural transformation, water resource management and others. The government's flagship initiative, Beti Bachao, Beti Padhao, has emerged as a nationwide movement promoting behavioral change and empowering the girl child across the country. Data from the Health Management Information System show that the national sex ratio at birth has improved from 918 in 2014-15 to 929 in 2024-25, reflecting sustained efforts to prevent gender-biased sex selection and promote institutional deliveries. And in sports, in men's cricket, the toss for the first ODI of the three-match series between India and Afghanistan has been delayed due to rain in Dharamshala, Himachal Pradesh. The match was earlier scheduled to begin at 1:30 p.m. Star India batter and former skipper Rohit Sharma is expected to be in action in today's match. The remaining two matches of the series will be played in Lucknow and Chennai. The India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. The weather agency also predicted heavy rainfall conditions over parts of Bihar, Kerala, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi leaves on a six-day visit to France and Slovakia, says his visit will focus on boosting economic and cultural linkages with France and building strong bilateral relationship with Slovakia. Prime Minister Modi will also attend G7 summit at Evian in France. President Draupadi Murmu hails cadets at IMA passing out parade in Dehradun, says inclusion of 9 women cadets for the first time reflects India's march towards women-led development. India lodges strong protest to the US over US Navy strikes on oil ship in the Gulf, killing 3 Indian sailors. Indian Air Force AN-32 aircraft meets with an accident at Jorhat Air Force Station in Assam. And in men's cricket, toss for first ODI of 3-match series between India and Afghanistan delayed due to rain in Dharamshala. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना, कहा यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की, कहा पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया, हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त, और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
5: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होना चाहिए।
4: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
6: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
8: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इन्वायरमेंट, द इंडियन आर्मी मस्ट रिमेन अडप्टिव एंड फ्यूचर रेडी। आई आर्ज यू टू बी लाइफ लॉन्ग लीडर, लर्नर्स, कोरेजस, डिसीजन मेकर्स एंड एथिकल लीडर्स।
7: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे। प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
1: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
3: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृहमंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
9: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे, इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
3: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में यह 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमरीका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
5: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष

0: को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है फौजी भाइयों के कार्यक्रम जय भारती का। जय भारती कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। जय भारती कार्यक्रम हम सुनेंगे भारतीय सेना को समर्पित इस गीत के बाद।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

जय भारती में पहला गीत हमने लिया है फिल्म एलओसी कारगिल से। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, धुन बनाई है अनु मलिक ने और इस गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है सोनू निगम ने।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे, सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं जय भारती कार्यक्रम। अगला गीत हमने लिया है फिल्म भूल भुलैया से। इस गीत को गाया है के ने।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। रांची के आर्यभट्ट सभागार में आज विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 यंग प्रोफेशनल्स राउंड टेबल का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विषय पर केंद्रित था। इस मौके पर माय भारत झारखंड की डिप्टी डायरेक्टर श्वेता सिंह ने बताया कि माय भारत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से देशभर के युवाओं को विकसित भारत के संबंध में अपने विचारों को साझा करने का मौका मिलता है।
1: ये वन ऑफ द प्रोग्राम्स है जिसमें यूथ का जो व्यू पॉइंट है कि हम आत्मनिर्भर भारत को कैसे और आगे पहुंचा सकते हैं और विकसित भारत 2047 की श्रेणी में कैसे भारत को आगे खड़ा कर सकते हैं, उसमें उनके क्या ओपिनियंस है, और ये ग्रास रूट से टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में यूथ के क्या ओपिनियंस है उसको माय भारत नेशनल पोर्टल तक पहुँचाने का काम कर रही है।
0: केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर में बालिकाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा अभियान बन गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं माध्यमिक स्तर पर छात्राओं का नामांकन भी लगभग 75% से बढ़कर 80% के करीब हो गया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपनी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन के साथ रांची जिले के तमाड़ स्थित प्रसिद्ध मां देवड़ी मंदिर पहुंचे। उन्होंने 16 बजे मां देवड़ी की विधिवत पूजा अर्चना कर राज्यवासियों के सुख शांति समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत हमारी पहचान है तथा मां देवड़ी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। एम्स देवघर में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए

0: अलग पंजीकरण काउंटर और प्रतीक्षा कक्ष शुरू किया गया है। अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक के पास शुरू की गई इस नई सुविधा से मरीजों को पंजीकरण और इलाज में आसानी होगी। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि यह काउंटर 24 घंटे काम करेगा। इससे आपात स्थिति में भी आयुष्मान कार्ड धारकों को तुरंत मदद मिल सकेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड के उकामांड पंचायत स्थित मुरू गांव में आज कृषि विभाग की ओर से खेत बचाओ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसानों को संतुलित उर्वरक के उपयोग, जल संरक्षण तथा संभावित सूखा और कम वर्षा की स्थिति से निपटने के उपायों की जानकारी दी गई। प्रखंड कृषि पदाधिकारी बीटीएम और एटीएम ने किसानों को वैकल्पिक फसलों की खेती तथा वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रेरित किया। धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने सभी अंचल अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में लैंड बैंक तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि राज्य और केंद्र सरकार की किसी भी नई योजना के लिए जमीन उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। उपायुक्त ने कहा कि जिले में पेयजल समस्या के समाधान को प्राथमिकता दी जा रही है।
1: 3000 से ज्यादा हम लोग लास्ट 3 महीना में रिपेयर किए हैं। अभी भी 400-500 लंबी तो जो बड़ी इन्वेस्टमेंट वाली योजना है और उसमें सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि तक उसमें काफी सहयोग रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पानी की समस्या कहीं नहीं हो, और आज सबसे ज्यादा पानी से प्रभावित क्षेत्र है वही हम लोग आज पूरे डिस्ट्रिक्ट का ड्रिंकिंग वाटर का रिव्यू थी।
0: मॉनसून के आगमन को देखते हुए रांची नगर निगम ने जल जमाव, नालों की सफाई और पेड़ गिरने जैसी संभावित समस्याओं से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में मॉनसून प्रबंधन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निगम ने त्वरित कार्रवाई के लिए 11 क्विक रिस्पॉन्स टीमों के गठन का फैसला किया है। चतरा पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना क्षेत्र के बाबा घाट मैदान स्थित एक अर्ध निर्मित भवन में छापेमारी कर पुलिस ने ब्राउन शुगर और 2 मोबाइल फोन बरामद किए। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र के खुटगड़ी गांव में आज एक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद कार सवार फरार हो गया। थाना प्रभारी प्रमोद सिन्हा ने बताया कि मृतकों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म गुमराह का ये गीत, जिसे लिखा है साहिल लुधियानवी ने, धुन बनाई है रवि ने और इसे गाया है महेंद्र कपूर ने।

मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है।

0: स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे। और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।
1: पतिता, इस फिल्म का गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर हेमंत कुमार की युगल स्वरों में। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पॉडकास्ट सीरीज पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म जंगली से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रांची मेलोडीज। अगला गीत हमने लिया है फिल्म आरजू से। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, लता मंगेशकर की खूबसूरत सी आवाज।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं रांची मेलोडीज कार्यक्रम अपनी दोस्त सुनीता के साथ। अगला गीत हमने लिया है फिल्म अभिलाषा से। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है आर डी बर्मन ने और इसे गाया है लता मंगेशकर ने।

मेरे हमदम मेरे दोस्त, इस फिल्म का गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही नाची मेलोडीज कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से सुनीता आपसे लेती है विदा। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। रांची के आर्यभट्ट सभागार में आज विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 यंग प्रोफेशनल्स राउंड टेबल का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विषय पर केंद्रित था। इस मौके पर माय भारत झारखंड की डिप्टी डायरेक्टर श्वेता सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से देशभर के युवाओं को विकसित भारत के संबंध में अपने विचारों को साझा करने का मौका मिलता है। देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में 14वें और 15वें वित्त आयोग की योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा बंद पड़ी जल मीनारों को शीघ्र चालू कर रिपोर्ट देने को कहा। सरायकेला खरसावां की पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने आदित्यपुर स्थित जियाडा शिविर कार्यालय में जन सुनवाई शुरू की है। उन्होंने कहा कि पुलिस को जनता के करीब लाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। फिलहाल सप्ताह में एक दिन शिकायतें सुनी जाएंगी। चतरा जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपायुक्त रवि आनंद ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों और गांवों में जाकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगा। सरायकेला खरसावां पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए योगेश्वर प्रधान को गिरफ्तार किया है। उसके पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थ, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। और मॉनसून के आगमन को देखते हुए रांची नगर निगम ने जल जमाव, नालों की सफाई और पेड़ गिरने जैसी संभावित समस्याओं से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में मॉनसून प्रबंधन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: श्रोता मित्रों, आप सभी को नमस्कार जोहार। आप सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी है स्वस्थ, खुशहाल और उत्साह से भरपूर होंगे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल्याणी और मैं हूँ आपका दोस्त युवराज कुमार। दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मनोरंजन, जानकारी, गीत और प्रेरणा से भरपूर एक शानदार कार्यक्रम लेकर। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए कुछ नए विचारों, रोचक चर्चाओं और मन को छू लेने वाला मधुर गीतों के सफ़र पर। आने वाले कुछ पलों में हम आपके साथ सीखेंगे, मुस्कुराएंगे और गीत संगीत का आनंद भी उठाएंगे। तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक विशेष चर्चा के साथ। दोस्तों, यह स्पष्ट है कि जहाँ एकता और सहयोग होता है वहाँ हमेशा विकास और प्रगति होती है। परिवार हमारा पूरा सहारा है और हमारे परिवार के सदस्य हमारे रक्त संबंधियों के समान है। प्रेम, करुणा और सहयोग का वास्तविक अर्थ परिवार शब्द में निहित है। वास्तव में परिवार विश्वास, आराम, खुशी और लगाव का पर्याय है। तो साथियों, आइए एक खास विषय पर हम आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि परिवार में बिगड़ती एकता आखिर क्यों। दोस्तों, परिवार समाज की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यह परिवार तभी सुखी, समृद्ध और मजबूत बनता है जब उसके सदस्यों के बीच प्रेम, विश्वास, सहयोग और एकता बनी रहती है। परिवार की एकता केवल घर की खुशहाली ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास का भी आधार होता है। लेकिन आज के समय में अनेक परिवारों में एकता कमज़ोर पड़ती जा रही है। छोटी छोटी बातों पर विवाद, आपसी मनमुटाव, स्वार्थ और संवाद की कमी के कारण परिवार में दूरियां बढ़ती जा रही है। ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि आखिर परिवार में एकता क्यों बिगड़ रही है और इसे कैसे मजबूत बनाया जा सकता है। मित्रों, परिवार में एकता बिगड़ने के कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे संवाद की कमी। परिवार में एकता बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण आपसी संवाद की कमी है। आज के व्यस्त जीवन शैली में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर बातचीत करने के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। जब लोग अपनी भावनाओं, समस्याओं और विचारों का एक दूसरे के साथ साझा नहीं करते तब गलतफहमियां पैदा होने लगती है और रिश्तों में दूरी बढ़ जाती है। दूसरा कारण है स्वार्थ की भावना। जहाँ पहले परिवार में सामूहिक हित को महत्व दिया जाता था, वहीं आज कई लोग केवल अपने व्यक्तिगत लाभ और सुविधाओं के बारे में सोचते हैं। स्वार्थ की भावना परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सहयोग को कमजोर कर देती है तथा एकता को नुकसान पहुंचाती है। आर्थिक विवाद भी परिवार में विवाद का बड़ा कारण बनता है। संपत्ति का बंटवारा, आय व्यय को लेकर मतभेद, उत्तराधिकारी संबंधी विवाद और आर्थिक समानता परिवार की एकता को प्रभावित करते हैं। कई बार छोटे छोटे आर्थिक मुद्दे भी बड़े झगड़ों का रूप ले लेते हैं। आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव, तकनीक और आधुनिकता ने जीवन को आसान तो बना दिया है लेकिन परिवार के सदस्यों के बीच दूरी भी बढ़ाई है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग के कारण लोग एक दूसरे के साथ समय बिताने के बजाय आभासी दुनिया में अधिक व्यस्त रहने लगे हैं। इससे भावनात्मक जुड़ाव कम होता जा रहा है। मित्रों, भारतीय संस्कृति में बड़ों का सम्मान परिवार की नींव माना जाता है। जब परिवार के सदस्य बुजुर्गों के अनुभव और सलाह को महत्व नहीं देते तब पारिवारिक संबंधों में तनाव उत्पन्न होता है। बड़ों का सम्मान और मार्गदर्शन परिवार को एक सूत्र में बांधकर रखता है। अहंकार और जिद रिश्तों का सबसे बड़ा शत्रु है। जब परिवार के सदस्य अपनी गलती स्वीकार नहीं करते और हमेशा स्वयं को सही साबित करने में प्रयास करते हैं तब विवाद बढ़ता जाता है। जिद और अहंकार के कारण छोटी समस्याएं भी बड़ी बन जाती है। आपसी विश्वास की कमी किसी भी रिश्ते की मजबूत नींव होता है। जब परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास कम हो जाता है तब संदेह और गलतफहमियां जन्म लेने लगती है। इससे रिश्तों में कड़वाहट आती है और एकता कमजोर पड़ जाती है। साथियों, आइए हम जानते हैं कि परिवार की एकता बनाए रखने का क्या उपाय है और क्या हो सकता है। परिवार के सभी सदस्य नियमित रूप से एक दूसरे से खुलकर बातचीत करें, आपसी प्रेम, सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करें, बड़ों का आदर करें और उनकी सलाह का सम्मान करें। छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद ना बढ़ाएं, अहंकार और जिद छोड़कर समझौते की भावनाएं अपनाएं, परिवार के साथ समय बिताएं और सामूहिक गतिविधियों में भाग लें, एक दूसरे की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करें। मित्रों, परिवार की एकता किसी भी परिवार की सबसे बड़ी शक्ति होती है। जहाँ एकता होता है वहाँ सुख, शांति और समृद्धि स्वतः आती है। परिवार में एकता बिगड़ने के पीछे संवाद की कमी, स्वार्थ, आर्थिक विवाद, अहंकार और आधुनिक जीवन शैली जैसे कारण जिम्मेदार हैं। यदि परिवार के सभी सदस्य प्रेम, विश्वास, सम्मान और सहयोग की भावनाओं को अपनाएं तो हर प्रकार की समस्या का समाधान संभव है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि परिवार की मजबूती ही समाज और राष्ट्र की मजबूती का आधार है। इसलिए परिवार में एकता बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है। दोस्तों, नशा नाश का जड़ है। दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति नशा करता है तो वह अपना नाश करता ही है, साथ ही साथ परिवार, समाज और देश का भी नाश करता है। सरकार की ओर से भी लगातार नशा की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कुछ एनजीओ संस्थानों द्वारा भी इस योजना को सफल बनाने में सहयोग किया जा रहा है। तो मित्रों, आइए इस खास विषय पर नशा मुक्त भारत अभियान और नालसा की डॉन स्कीम पर विशेष चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है खास मेहमान श्री दीपक कुमार साहू जी, जो झालसा में अवर सचिव के पद पर है, और इनसे बातें करेंगे श्री संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों नमस्कार। मित्रों, हमारा देश भारत में युवाओं का एक बहुत बड़ा समूह है और यही युवा मेहनत करते हैं और देश और राष्ट्र को आगे बढ़ाते हैं और राष्ट्र की नई तस्वीर को गढ़ते हैं। लेकिन किसी कारणवश हमारे ये युवा साथी नशे के गर्त में चले जाते हैं, नशे के चुंगल में फंस जाते हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश को होता है। क्योंकि यही युवा जब अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं, पल्लवित और पुष्पित होते हैं इस राष्ट्र में, तो राष्ट्र को एक नए अंजाम तक पहुँचाते हैं। और युवाओं के साथ साथ एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे बुजुर्ग साथियों का और भी अन्य लोगों का नशे के आदत से वो फंसे हुए हैं, नशे के चुंगल में फंसे हुए हैं। नशे के कारण परिवार तबाह हो जा रहे हैं, इससे समाज को नुकसान पहुंच रहा है, आर्थिक क्षति तो होती ही है, और साथ साथ लोग नशे के कारण घर में हिंसा करते हैं। तो ये नशा किस क्यों किया जा रहा है, ये नशे के गर्त में हमारे युवा साथी क्यों फंस रहे हैं और इस नशे से कैसे वो बाहर है, क्योंकि नशे की प्रवृत्ति जो है वो राष्ट्र को कैंसर की तरह खाई जाती है। यदि हम नशा को रोक दें तो फिर देश हमारा उन्नति के राह पर स्वतः ही आगे बढ़ जाएगा। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने मिले नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है कि नशा को जड़ से मुक्त कर दिया जाए। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं झालसा के अवर सचिव श्री दीपक कुमार साहू जी। ये इनसे आज बात करेंगे कि नशा मुक्त भारत अभियान क्या है और नालसा की एक बहुत अच्छी स्कीम है डाउन स्कीम, इसके सहारे कैसे नशा मुक्त भारत अभियान का हम शुरुआत करें। दीपक जी स्वागत है आपका। दीपक जी, नशा नाश की जड़ है, ये कितना नुकसान पहुंचा रहा है हमारे समाज को और खासकर हमारे युवा वर्ग को।
2: बिल्कुल आपने सही कहा, नशा नाश की जड़ है और आज के डेट में जो युवा पीढ़ी इस नशे के गर्त में जा रहे हैं, युवा पीढ़ी ही नहीं बल्कि आप देखेंगे बहुत बच्चे, जो बच्चे हैं बच्चे भी नशे का बहुत ही सेवन कर रहे हैं। नशे की वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से और अपने जो समाज के अंदर में जहां रह रहे हैं वहां पर अपने आप को बहुत ही मतलब डाउन तक वो ले जा रहे हैं। दूसरा चीज़ है इसमें कि जो घर हैं, घरों में नशा की वजह से घरेलू हिंसा के जो केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके अलावा आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं उस घर पे रहने वाले जितने परिवार के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से परेशान हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नशा मतलब एक ऐसा आपने कहा जैसे कि हमारे भारत देश को ये मतलब एक तरह से समझिए तो कैंसर की तरफ, गर्त की तरफ ले जा रहा है, तो नशा से पूरी तरह से लोगों का मतलब जो भी नशा के इस में जुड़े हुए हैं, घुसे हुए हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सर्वांगीण उनका विकास तक उनका रुक गया है। तो आज नशा वाकई हमारे लिए बहुत ही बड़ी मतलब मुद्दा है, उसको जड़ से हटाने के लिए भारत सरकार और नालसा जैसे नालसा के जो डाउन स्कीम से प्रतिबद्ध है और अपना काम कर रही हैं। अभी जो भारत सरकार का जो नशा मुक्त अभियान है उसमें भारत सरकार ये प्रतिबद्ध भी हैं कि 2029 तक हम लोगों को पूरा नशा मुक्त भारत बनाना है। साथ ही साथ इस परिदृश्य में जो भी है हमारा जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार का एक स्कीम है, बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है डाउन, जिसको हम लोग जानते हैं ड्रग्स अवेयरनेस एंड वेलनेस नेविगेशन स्कीम 2025 का है, जिसमें स्कीम को लॉन्च करने का पीछे उद्देश्य यही था कि जितने भी समाज में ये कुरीतियाँ हैं, नशा से संबंधित कुरीतियाँ हैं, जो नशा हो रही हैं, तो कैसे इसको हम प्रोटेक्ट करें, कैसे इसको हम प्रिजर्व करें, कैसे इसको हम रिहेबिलिएट करें, तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ में ये डाउन स्कीम लाया गया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धरातल स्थल पर आइडेंटिफाई कर पाएँ, उनको प्रॉपर उनको काउंसलिंग कर पाएँ और उनका प्रॉपर रिहेबिलिएशन पुनर्वास किया जा सके।
1: जी, क्योंकि आपने सही कहा है कि जब कोई नशा करता है तो ये नशे का आदि बन जाता है, फिर उसका कोई भी होश हवास नहीं रहता है और नशे के कारण लोग गलत प्रवृत्ति की ओर भी अग्रसरित हो जाते हैं, चाहे वो चोरी हो, बलात्कार हो, हत्या हो, घरेलू हिंसा हो, एक बहुत बड़ा गलत दिशा की ओर वो बढ़ जाते हैं और फिर राष्ट्र को तो क्षति इससे पहुंचती है और समाज में भी एक गलत संदेश चला जाता है। तो प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा महती अभियान है नशा मुक्त भारत अभियान, तो इसमें जो नालसा की स्कीम है डाउन स्कीम, एक बहुत बड़ी योजना है स्कीम है नालसा की, तो कैसे इन लोगों को आइडेंटिफाई करती है, पहचान करती है और कैसे इस चीज़ों को वो रोकती है?
2: बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या है इसमें कि हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी इसमें एक बहुत ही ऑब्जर्वेशन है कि जहाँ पर भी ऐसे पीपल सेंट्रिक प्रोन जोन है, जहाँ पर नशा ड्रग्स एब्यूज़ हो रहे हैं, वैसे एरिया को आइडेंटिफाई किया जाए और इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए जितने भी लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस को भी ये डायरेक्शन है कि जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में कोलैबोरेशन करते हुए इस तरह के कार्यक्रम किया जाए, लीगल अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जाए नशा मुक्ति संबंधी, कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इससे क्या हमारे आने वाले जनरेशन को क्या नुकसान होगा, घर के अंदर जो लोगों की जो मानसिक और सामाजिक जो स्थिरता जो टूटती चली जा रही है उन सब चीज़ों को कैसे रोका जाए, तो इसके लिए डायरेक्शंस दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी। और इसी के आगे बढ़ते हुए नालसा जो है हमारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार ने एक नशा संबंधी स्कीम जो है वो लॉन्च किया है, जिसका नाम हम जो बताएं आपको डाउन 2025 का स्कीम है। इस स्कीम के तहत क्या है, इसमें ये कहा गया कि जितने भी जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार हैं, डालसा है, डालसा लेवल पे एक जिला स्तर पे एक डाउन यूनिट बनाने की बात है। तो डाउन यूनिट क्या होगा, तो डाउन यूनिट होगा उसमें कुछ उनके जो मेंबर्स हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हमारे डाउन यूनिट में जो जिला के जो प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश जो होते हैं उनके चेयरमैन होते हैं, उनके अलावा अन्य उसमें जुडिशल ऑफिसर भी होते हैं जो पॉक्सो संबंधित या फिर एनडीपीएस के केसेस वगैरह जो जज साहब देखते हैं वो भी उनके मेंबर होते हैं। उसके अलावा पीएलवीज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आपके डीसी हैं, एसपी हैं या उनके समकक्ष अगर वो हैं तो, या उनके समकक्ष में एसडीपीओ हो गए, आपके एसडीओ हो गए, तो वैसे लोग इसमें भी, उसके अलावा जो सिविल सर्जन हैं मतलब उसके अलावा आपके अदर जो लीगल इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, एनजीओज हैं, मतलब हर वो व्यक्ति जो नशा संबंधित जो हमारा एक जो लोगों के बीच में एडिक्शन है या ड्रग्स का जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहा है, तो कैसे हम उसको इरेडिकेट करें, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, उसको कैसे हम प्रॉपर रिहेबिलिएट करें, करके एक डाउन यूनिट बनाएगा। और इनका काम है कि ये प्रॉपर डायरेक्शन दे लोगों पीएलवीज के माध्यम से, अदर कम्युनिटी जो मतलब सोशल वर्कर से, एनजीओज के माध्यम से, कि हर उस जगह पे पहुँचे जो ज़्यादातर ड्रग एब्यूज एरिया हो और उस एरिया में जाकर वहाँ पर लोगों को आइडेंटिफाई करें कि उसमें बच्चे हों, यंगस्टर्स हों, वृद्ध हों, घरों पे भी जाकर देखना है कि कहाँ पर नशे का मतलब ज़्यादा यूज करने से वहाँ के घर की जो आर्थिक

0: स्थिति या फिर वहाँ का वातावरण है खराब है, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद, पहला हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करने के बाद उनका जो है प्रॉपर काउंसलिंग किया जाए कि क्यों नशा हो रहा है। अगर ज़रूरत पड़े तो उनको नशा मुक्ति केंद्र पे भेजने की बात की गई है, नशा मुक्ति केंद्र भेजना प्लस उनको जो मेडिकल असिस्टेंस उनको मिलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो है जिनको लग रहा है कि ड्रग्स एब्यूज़ है और किसी तरह का लीगल असिस्टेंस चाहिए, कोर्ट में जाकर अगर किसी पर्टिकुलर केस मतलब ड्रग्स से संबंधित केस है उसके माध्यम से अगर कोई कोर्ट में जाकर बातों को रखना है तो अगर उसमें लीगल असिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए भी हम लोग फ्री लीगल एड सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्या है कि जब हम सारा उनको वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से, मेडिकल असिस्टेंट से, साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से, साइकेट्रिस्ट के माध्यम से जब हम उनको मदद पहुंचाते हैं, उसके बाद हम उनको प्रॉपर रिहैबिलिएशन का सोचते हैं। रिहैबिलिएशन की अगर हम बात करें तो उसमें डाउन स्कीम में कि रिहैबिलिएशन कैसे किया जाए, तो रिहैबिलिट करने के लिए उनको हम कुछ भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम वगैरह से उनको जोड़ा जाए, उसको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स वगैरह उनको दिया जाए, उनके नशा संबंधी क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं और भी क्या चीज़ें, लीगल अवेयरनेस के क्षेत्र में उसको जोड़ा जाए ताकि उन सब चीज़ों से वो बाहर आए। इसके अलावा डाउन स्कीम में है कि हम प्रॉपर अवेयरनेस कैसे करें ज़्यादा से ज़्यादा। जब तक हम लोगों के बीच में जाकर इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जागृति अभियान हम नहीं चलाएंगे, तब तक लोग इनके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए भी जो हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, अवेयरनेस गांवों में, पंचायतों में या शहरों तक नहीं है, बल्कि दायरा है कि ये अवेयरनेस इवन जहां पर, चूंकि आज के डेट में जो ड्रग्स लेने का वो इंजेक्टेबल भी होता है, इंजेक्ट के माध्यम से भी होता है, तो जहां पर मतलब रेड लाइट एरियाज वगैरह है, मतलब सेक्स वर्कर्स लोग भी जहां पर है, तो वहां पर भी जाकर हम लोग का जो कैंप लगना है वहां समझाना है कि इस तरह के इंजेक्टिव जो है आप ड्रग्स का नहीं लेना, इससे चांसेस ऑफ मतलब जो भी एड्स एचआईवी टाइप के बीमारियां होने के भी चांसेस होते हैं, उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। तो इस तरह के कंप्लीट अगर आप देखें तो डाउन स्कीम बृहद स्कीम है और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक यूनिट इस्टेब्लिश करने के बाद हर एक जगह पे पहुंच रहे हैं और वहां से आइडेंटिफिकेशन करके उनका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन तक हम लोग उसमें काम कर रहे हैं
1: जी। तो एक बहुत बड़ा स्कीम है नालसा की डाउन स्कीम, और एक बहुत बड़ा चुनौती भी है पूरे देश के लिए सर कि एक बहुत बड़ा वर्ग, चाहे वो युवाओं का हो, वृद्ध का हो या कोई अन्य वर्ग के भी व्यक्ति हो, नशे के गर्त में यदि वो आ जाते हैं तो अपना तो नुकसान करते ही और परिवार भी बिगड़ जाता है और आर्थिक नुकसान वो अलग होता है। बच्चे की पढ़ाई बीच में रुक जाती है और बच्चा इधर उधर भटकता रहता है और जहाँ उसे नशा सुलभ हो जाता है उस दिशा की ओर वो उन्मुख हो जाता है और फिर गलत राह अपनाने लग जाता है। इस नशे के चुंगल से बाहर निकालने के लिए बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं। कोई किसी जगह देख लेता है कि ये व्यक्ति नशा कर रहा है या नशे से परिवार बर्बाद हो रहा है, तो कैसे वो संपर्क करे?
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। क्योंकि आज के डेट में आप जब भी कभी रेलवे स्टेशन, चौक चौराहे कहीं पर भी जाएं तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे नशे में हैं या फिर अन्य जो भी यूथ यंगस्टर के बीच में ड्रग्स का बड़ा सुनते हैं, ड्रग्स और ब्राउन शुगर, बड़े बड़े नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं। वैसी स्थिति में अगर आप कहीं जा रहे हैं, एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, उनका अपना एक नंबर है 1399, ये टोल फ्री नंबर है। आप कहीं देखते हैं कि अगर ड्रग्स संबंधी कहीं क्राइम हो रहा हो, अपने क्षेत्र में कहीं देख रहे हैं कि ड्रग्स से रिलेटेड कुछ किसी तरह की हिंसाएं हो रही हों, आसपास के क्षेत्र में कोई ड्रग्स ऐसा कुछ ड्रग्स हो जिसका कल्टीवेशन किया जा रहा हो, तो इस तरह के कोई भी संबंधित ऑफेंस आपके नज़र में आता है तो आप 1399 में टोल फ्री नंबर है, इसमें कॉल करें, भारत सरकार के नंबर है, उसमें त्वरित उसमें जो है उसमें कार्रवाई होती है, उस पर एक्शन लिया जाता है डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के तरफ से। उसके अलावे अगर लग रहा है कि कोई नशे के में पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से नशे की में ही धूर्त रहता है, वैसी स्थिति में अगर उसका पुनर्वास करना हो, उसको फिर से रिहैबिलिएट करने की ज़रूरत है, तो वैसे स्थिति में हम कहाँ जाएँ, किन को कॉल करें, तो उनके लिए भी एक टोल फ्री नंबर है 1-4446। तो ये नंबर पर भी आप कॉल करके जो है, आप कॉल करके अपना जो भी सूचना जो है दे सकते हैं, और इससे जो भी नशा मुक्ति केंद्र संबंधित या भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं उसमें जाती हैं, त्वरित कार्रवाई करते हैं, उनका रिहैबिलिटेशन का, उनको मेडिकल असिस्टेंस का, उनको साइकेट्रिस्ट के माध्यम से काउंसलिंग का सारा व्यवस्था प्रदान करते हैं। उसके अलावा भी लगता है कि ये ड्रग्स एब्यूज़ के इस तरह के लोग हैं जिनको कानूनी मदद चाहिए।

0: या फिर इन दोनों में से किसी भी तरह का रिहैबिलिटेशन हो या फिर उनको कंप्लेन संबंधित कुछ पैसा, तो भी आप नालसा का जो टोल फ्री नंबर है 15100, मैं रिपीट करता हूँ 15100 पे कॉल करके भी आप अपनी सूचना दे सकते हैं।
1: तो इन तीन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 15100, 1399 और 1444 पर आप अपनी बात रख सकते हैं और सूचना दे सकते हैं। और जहां भी इस तरह की गतिविधियां आपको दिखती है तो आप इस पर फोन कीजिए और इस पर त्वरित गति से कार्रवाई की जाती है।
0: बिल्कुल
1: दीपक जी, क्या आह्वान करेंगे खासकर हमारे युवा साथियों से कि नशे से दूरियां बनाएं और एक स्वस्थ जीवन जीवें और राष्ट्र को एक नई दिशा की ओर ले जाएं?
0: मैं सबसे पहले एक स्लोगन से स्टार्ट करूंगा, से यस टू लाइफ एंड से नो टू ड्रग्स। मैं सभी युवा साथियों से यही अपील करूंगा कि चूंकि आप देखिए देश का आप सबसे ऊर्जावान व्यक्ति हैं, जो भी आज के डेट में यूथ हैं सबसे ऊर्जावान व्यक्ति हैं, और अगर आप नशे का सेवन करते हैं, नशे के गर्त में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने देश का भविष्य तो बिगाड़ ही रहे हैं, अपने परिवार अपना भी भविष्य बिगाड़ रहे हैं। तो मैं आपसे यही अपील करूँगा कि ये नशा छोड़े, क्योंकि नशा से कुछ भी फायदा नहीं। नशा जैसे जैसे आप नशा में बढ़ेंगे तो आप अपने आप को भी बर्बाद कर रहे होंगे, परिवार भी आपके बर्बाद हो रहेगी, समाज भी आपके बर्बाद, देश को भी आप बर्बाद कर रहे होंगे। इसीलिए इस आह्वान के साथ मैं ही अपील करूंगा कि आप अपने अंदर से नशा को छोड़े, पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपना आगे का जो भी है आप बढ़ते, निरंतर बढ़ते रहिए, इससे आपका सर्वांगीण विकास होगा, ना कि नशा करने से।
1: क्योंकि आज के युवा देश के भावी कर्णधार है और यही युवा देश को आगे ले जाएंगे, राष्ट्र को बुलंदियों तक पहुंचाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत का एक अलग नाम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्री दीपक कुमार साहू जी, अवर सचिव झालसा। बड़ी अच्छी आपने बातचीत की नशा मुक्त भारत अभियान और नालसा की डाउन स्कीम पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: और मित्रों, ये कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं, नमस्कार।
2: दोस्तों, नशा मुक्त भारत अभियान मादक द्रव्यों की बुराई को खत्म करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का एक शानदार प्रमाण है। जागरूकता, रोकथाम और पुनर्वास को शामिल करने वाला एक समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से यह पहल नशे की बेड़ियों से मुक्त होकर एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है। तो मित्रों, अभी हमने सुना श्री दीपक जी को, जो नशा मुक्त भारत और नालसा की डॉन स्कीम पर लाभप्रद जानकारियां दे रहे थे और इनसे बातें कर रहे थे श्री संजीव कुमार लाल। मित्रों, अब बढ़ते हैं आज के अंतिम चर्चा की ओर। आज हम चर्चा करेंगे नशा से बिगड़ता परिवार, रोको नशा दूर करो निराशा विषय पर, और इस विषय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं नशा से बिगड़ता परिवार। मित्रों, परिवार समाज की आधारशिला है। एक सुखी और स्वस्थ परिवार ही एक मजबूत समाज और राष्ट्र का निर्माण करता है। परिवार में प्रेम, विश्वास, सहयोग और आपसी सम्मान का होना आवश्यक है। लेकिन जब परिवार का कोई भी सदस्य नशे की लत का शिकार हो जाता है, तब परिवार की खुशियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। शराब, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, अफीम तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पूरे परिवार को संकट में डाल देता है। आज नशाखोरी एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुकी है, जो अनेक परिवारों को टूटने का कारण बन रही है। नशे की बढ़ती समस्या, आज की आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव, गलत संगति, बेरोजगारी, दिखावे की प्रवृत्ति के कारण नशे का चलन बढ़ता जा रहा है। कई लोग मनोरंजन या शौक के रूप में नशा शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह उनकी आदत बन जाती है। कई बार नशे की लत लग जाने पर उनसे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। इसका दुष्प्रभाव व्यक्ति के साथ साथ परिवार पर भी पड़ता है। परिवार पर नशे का सबसे अधिक प्रभाव आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। नशा करने वाला व्यक्ति अपनी आय का बड़ा हिस्सा नशे की वस्तुओं पर खर्च कर देता है। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। बच्चों की पढ़ाई, भोजन, स्वास्थ्य और अनावश्यक जरूरतों पर खर्च कम होने लगता है। कई बार परिवार कर्ज के बोझ तले दब जाता है। नशे की लत के कारण व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा और आक्रामक हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। परिवार में शांति और सौहार्द समाप्त हो जाता है। पति पत्नी के संबंध में तनाव बढ़ता है और घर का वातावरण अशांत हो जाता है। नशे की लत बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चे अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखते हैं। यदि

खोरी के कारण व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा घट जाती है, लोग ऐसे परिवार से दूरी बनाने लगते हैं। इससे परिवार के अन्य सदस्यों को भी शर्मिंदगी और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। नशे के कारण परिवार के टूटने का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लगातार नशे और उससे जुड़े विवादों के कारण कई परिवार बिखर जाते हैं। पति पत्नी के बीच अलगाव, बच्चों की उपेक्षा और रिश्तों में दरार जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। कई बार स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि परिवार टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। साथियों, आइए हम नशे के बचाव के कुछ उपाय पर प्रकाश डालते हैं। नशे के दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, युवाओं को अच्छी संगीत और सकारात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित किया जाए, परिवार में प्रेम, संवाद, सहयोग का वातावरण बनाया जाए, विद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जाए, नशे की लत से पीड़ित लोगों को उचित परामर्श और उपचार उपलब्ध कराया जाए, खेल, योग और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए ताकि लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। मित्रों, नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है। यह आर्थिक, सामाजिक और मानसिक समस्याओं को भी जन्म देता है तथा परिवार की सुख शांति को नष्ट कर देता है। एक खुशहाल परिवार और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए नशे से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। हमें स्वयं भी नशे से बचना चाहिए और दूसरों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना चाहिए। जब परिवार नशा मुक्त होगा तभी समाज और राष्ट्र मजबूत, स्वस्थ और समृद्ध बनेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज की प्रस्तुतियां, बातें और गीत संगीत का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो मित्रों, अब दीजिए अनुमति अपने मित्र युवराज को और फिर से होगी मुलाकात अगले सप्ताह नए विषयों, नई जानकारियों और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण के माध्यम से आज की विभिन्न सभाओं में प्रसारित शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में यानी कि 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। 5 बजे का समय होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का। 5:02 पर आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी। 5:30 पर आप सुनेंगे श्रमिक लोक। प्रस्तुति होंगी प्रशांत गौरव की। 6:02 पर आप सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम। प्रस्तुति होंगी संजीव कुमार लाल की। 6:32 का समय होगा कार्यक्रम हमारी दुनिया का। प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:11 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल। 7:15 का समय होगा हो लोकगीत का।

7:20 पर आप सुनेंगे क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार। 7:45 का समय होगा समाचार ध्वनि चित्र का। 8:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 8:10 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण।

8:45 का समय होगा समाचार संध्या का। 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज एट 9। 9:15 का समय होगा उर्दू में समाचार का। 9:30 का समय होगा राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती का। दस बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। दिल्ली के ए श्रेणी के कलाकार U.S. प्रसाद का कर्नाटक सैक्सोफोन। 11 बजे का समय होगा हिंदी में समाचार का। 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

ये थी आज की सभा में शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

अभी आप सुन रहे थे यादें फिल्म से ये खूबसूरत संगीत जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया था अनु मलिक ने, आवाजें थी कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक और उदित नारायण की।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। सांझ सरगम का अगला गीत हमने लिया है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने, संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। फिल्म है हम है राही प्यार के।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज देवघर पहुंचे। देवघर हवाई अड्डे पर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। देवघर पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री सीधे बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर गए, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और देश तथा झारखंड की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपनी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन के साथ रांची जिले के तमाड़ स्थित प्रसिद्ध मां देवड़ी मंदिर पहुंचे। उन्होंने 16 बजे मां देवड़ी की विधिवत पूजा अर्चना कर राज्यवासियों के सुख शांति समृद्धि और खुशहाली की कामना की। लोहरदगा के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी संदीप कुमार मीणा ने आज सदर प्रखंड और शहरी क्षेत्र के विभिन्न बूथों का निरीक्षण कर अनमैप्ड मतदाताओं की स्थिति का जायजा लिया। उपायुक्त ने मतदाताओं को निर्वाचन विभाग द्वारा चलाए जा रहे मैपिंग अभियान की जानकारी दी तथा बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों को आवश्यक निर्देश दिए। गुमला जिले के सिसई अंचल कार्यालय में आज अंचल दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उपायुक्त दिलेश्वर महतो सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान भूमि मापी, दाखिल खारिज, लगान रसीद, सीमांकन और राजस्व अभिलेखों में सुधार से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई। गोड्डा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला स्तरीय बूथ कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कार्यकर्ताओं को संगठन सुदृढ़ीकरण, जनगणना और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया। और दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में ट्रैक मरम्मत कार्य के कारण 14 जून तक कई मेमू ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हेलो, गुड इवनिंग जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। और आज के सफर में मैं हूं आपका दोस्त रजत
1: और मैं प्रज्ञा।
0: आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम हर रोज की तरह आज भी हाजिर हैं आपके लिए ढेर सारी जानकारियां, और साथ ही साथ दोस्तों हम सुनेंगे प्यारे प्यारे गाने भी, क्योंकि दोस्तों एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है और एंटरटेनमेंट के बिना हमारी लाइफ

0: जरूरी है दोस्तों, एंटरटेनमेंट के साथ साथ हम सभी का जागरूक होना भी ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले एक ऐसे ही खास दिन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे हर साल 13 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों को जागरूक करना, उनके साथ होने वाले भेदभावों को रोकना और एल्बिनिज्म के बारे में समाज में समझ बढ़ाना है।
1: बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2014 को प्रस्ताव पारित कर 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के रूप में स्थापित किया था।
0: हाँ प्रज्ञा, एल्बिनिज्म एक दुर्लभ अनुवांशिक स्थिति है जिसमें शरीर में मेलेनिन यानी कि रंग पैदा करने वाले पिगमेंट का उत्पादन बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है, जिससे त्वचा और बाल सफ़ेद हो जाते हैं और आंखों की रोशनी पर भी इसका असर पड़ता है।
1: मेलेनिन की कमी के कारण त्वचा यूवी रेस से प्राकृतिक रूप से नहीं बच पाती, इसलिए स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है और ऐसे लोगों को सनस्क्रीन एंड सनग्लासेस के उपयोग के प्रति जागरूक रहना चाहिए।
0: हाँ दोस्तों, एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों को उनके स्किन कलर की वजह से गलत धारणाओं का भी सामना करना पड़ता है। एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे लोगों को जागरूक करता है कि वे एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों की बात सुने, उन्हें चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएं और समाज में उनके अधिकारों और गरिमा की रक्षा करें।
1: बिल्कुल रजत, और दोस्तों, रंग से नहीं कर्म से पहचान बनती है। एल्बिनिज्म वाले लोग वकील, डॉक्टर, कलाकार, खिलाड़ी सब कुछ बन रहे हैं और देश के तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं। बस इन्हें ज़रूरत है बराबर मौके की, इन्हें समझने की और इनका सपोर्ट करने की। दोस्तों, आज का युवा अपने स्किन कलर और हेल्थ को लेकर काफ़ी अवेयर है। आज का युवा स्किन टोन और स्किन केयर पर ध्यान दे रहा है। स्किन कलर को लेकर हमें सजग रहने की ज़रूरत भी है।
0: हाँ दोस्तों, हम सभी को अपने स्किन पे ध्यान देना चाहिए और आज के समय में सभी युवा अपने स्किन कलर को लेकर कॉशियस भी हैं। स्किन केयर के पीछे मेलेनिन, धूप से बचाव और प्राकृतिक निखार की सही समझ होना है। त्वचा का रंग मेलेनिन पर निर्भर करता है। प्रदूषण, बहुत ज़्यादा गर्मी, धूप और पिंपल्स के कारण हमें स्किन को लेकर कॉशियस रहना भी चाहिए।
1: हमें अपने स्किन को धूप से बचाने के लिए सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए। अपना चेहरा दिन में 2 बार वॉश करना चाहिए। हेल्दी डाइट और पर्याप्त पानी पीना चाहिए। पिंपल, एक्जिमा, एल्बिनिज्म जैसे दिक्कत हो तो डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन के डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
0: हाँ दोस्तों, स्किन केयर के साथ साथ हम युवाओं को यह भी समझना चाहिए कि हमारे स्किन का कलर मेलेनिन से बनता है। सुंदरता रंग में नहीं बल्कि हमारे काम में। हम युवाओं को यह समझना चाहिए कि असली ग्लो हमारे अंदर से आता है। अच्छी नींद, कम तनाव, एक्सरसाइज, अच्छी डाइट, इससे जो निखार आता है वो किसी भी क्रीम से नहीं आता।
1: बिल्कुल, हेल्दी स्किन के लिए सही लाइफस्टाइल ज़रूरी है। हमारा रंग हमारी पहचान है। स्किन कलर के लिए हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है, न कि शर्म करने की। दोस्तों, बातें तो आपसे और भी करनी थी, पर लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी

0: महाकुंभ झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
1: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे, सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम युवानी में। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे एक बेहद ही रोचक सेगमेंट के बारे में, जिसका नाम है अमेजिंग फैक्ट्स।
3: वैसे रजत, आज इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे है, तो क्यों ना हम पहले इसी से जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स पर चर्चा करें।
2: बिल्कुल प्रज्ञा।
3: रजत, हम रोज सुबह आईने में खुद को देखते हैं, पर क्या कभी तुमने सोचा है कि हम इंसानों को हमारा यह स्किन कलर मिलता कहाँ से है?
2: हाँ दोस्तों, इसका सीधा कनेक्शन हमारे शरीर में बनने वाले एक नेचुरल पिगमेंट से है, जिसे मेलानिन कहते हैं। हमारी त्वचा में मेलानिन जितना ज़्यादा होगा, स्किन का कलर उतना ही गहरा या सांवला होगा, और मेलानिन जितना कम होगा, रंग उतना ही साफ होगा।
3: लेकिन ट्विस्ट ये है कि यह मेलानिन सिर्फ रंग देने के लिए नहीं, बल्कि सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेस से रेज को सोख कर स्किन कैंसर और डीएनए डैमेज के खतरे को कम करने के लिए नेचुरल सनस्क्रीन की तरह भी काम करता है।
2: यानी कुदरत ने हमारी सुरक्षा के लिए ही यह रंग बनाया है। और दोस्तों, जैसा हम पहले ही बता चुके हैं कि जब किसी के शरीर में यह मेलानिन पिगमेंट बनना पूरी तरह से बंद हो जाता है, तो इसी स्थिति को मेडिकल साइंस में एल्बिनिज्म कहा जाता है। वैसे प्रज्ञा, लोग अक्सर सोचते हैं कि एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों की आंखें लाल या गुलाबी होती है, क्या इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक फैक्ट छिपा है?
3: बिल्कुल, असल में उनकी आंखों के आयरिस में पिगमेंट न होने के कारण रोशनी सीधे आर पार आ जाती है, जिससे आंखों के पीछे मौजूद खून की बारीक नसें यानी ब्लड वेसल्स रिफ्लेक्ट होती हैं, और इसी वजह से आंखें हल्की लाल या बैंगनी दिखाई देती हैं। तुम्हें पता है, एल्बिनिज्म में तेज धूप में देखने में काफ़ी परेशानी होती है, इसे फोटोफोबिया कहते हैं।
2: अच्छा, अब तुम ये बताओ कि वे कौन सा एंजाइम है जिसकी कमी के कारण शरीर में मेलानिन नहीं बन पाता?
3: टायरोसिनेज एंजाइम। दरअसल शरीर में मेलानिन बनने के प्रोसेस को स्टार्ट एंड कंट्रोल करने का काम टायरोसिनेज ही करता है, और जब इसकी कमी या अनुपस्थिति हो जाती है तो मेलानिन नहीं बन पाता।
2: दोस्तों, इंसानों में तो मेलानिन होता ही है, पर क्या आपको पता है कि एल्बिनिज्म की बीमारी सिर्फ इंसानों में नहीं, बल्कि जानवरों और पक्षियों में, यहाँ तक कि सांपों और मछलियों में भी हो सकती है।
3: जी हाँ, प्रकृति में पूरी तरह से सफ़ेद शेर, सफ़ेद मोर और यहाँ तक कि सफ़ेद मगरमच्छ भी पाए जाते हैं, लेकिन जंगलों में इन एल्बिनो एनिमल्स की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बिना रंग के ये जंगल में कैमोफ्लाज यानी आसपास के माहौल में खुद को छिपा नहीं पाते और शिकारियों का आसान निशाना बन जाते हैं।
2: हाँ दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा जीव भी है जो अपनी मर्जी से पलक झपकते ही अपना पूरा रंग बदल सकता है।
3: तुम

0: क्रिकेट की बात कर रहे हो, है ना?
1: हाँ, क्या तुम्हें पता है कि वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में पाया कि गिरगिट केवल कैमोफ्लाज यानी कि छिपने के लिए ही रंग बदलते हैं।
0: हाँ, ये तो मैंने भी पढ़ा है। गिरगिट अपने मूड, गुस्सा, डर या फिर अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए भी रंग बदलते हैं।
1: यहाँ दोस्तों, आपने अमेजिंग फैक्ट्स को सुनकर अपने दांतों तली उंगली जरूर दबा ली होगी और आप आश्चर्यचकित भी होंगे। चलिए, इसलिए आपको लिए चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में और सुनते हैं एक प्यारा सा गाना।

0: दोस्तों चलिए अब आपको ले चलते हैं टाइम मशीन में और जानते हैं कि इतिहास में आज का दिन क्यों है खास।
1: हाँ दोस्तों, आज ही के दिन 1290 में खिलजी प्रमुख जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। इसी के साथ ही गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी का अंत हो गया था।
0: वहीं 1325 में आज ही के दिन विश्व अन्वेषक और लेखक इब्न बतूता ने महज 21 साल की उम्र में सऊदी अरब के मक्का के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू की थी। यह यात्रा लगभग 29 वर्षों तक चली, जिसके दौरान उन्होंने 1,20,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। साथ ही क्रांतिकारी गणेश दामोदर सावरकर का जन्म आज ही के दिन 1879 में हुआ था। इन्हें बाबा राव सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। वह एक स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और अभिनव भारत के सह संस्थापक थे। यह क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर कहा जाता है, के बड़े भाई थे।
1: दोस्तों आज ही के दिन 1909 में प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता, लेखक, इतिहासकार और सामाजिक टीकाकार EMS नबुरी का जन्म केरल के पालघाट में हुआ था।
0: वहीं हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार प्रेम धवन का जन्म आज ही के दिन 1923 में हुआ था।
1: दोस्तों अब हम थोड़ी चर्चा करंट अफेयर्स पे भी कर लेते हैं और जानते हैं कुछ रिसेंट करंट अफेयर्स के बारे में।
0: जून 2026 में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI और नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस यानी NPI के बीच क्रॉस बॉर्डर लिंकेज की शुरुआत की गई है।
1: हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य के तहत देश भर में लगभग 100 विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित करने के लक्ष्य से भव्य पोर्टल लॉन्च किया है।
0: वहीं जून 2026 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI ने 2026 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अब अनुमानित 190 परमाणु वॉरहेड्स हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियारों को मोर्चे पर तैनात किया है।
1: जून 2026 में दक्षिण कोरिया और जापान ने 9 वर्षों में पहली बार एक संयुक्त समुद्री खोज और बचाव अभ्यास आयोजित किया है। जेजू द्वीप के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुए इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री आपात स्थितियों में आपसी समन्वय और मानवीय सहयोग को बढ़ाना है।
0: कार्टूनिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित बार्टन अवार्ड 2026 से सुभानी शेख को सम्मानित किया गया है।
1: श्रीलंका के रुमेश थरंगा जेवलिन थ्रो में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं।
0: साथ ही इटली के मर्सिडीज ड्राइवर एंड्रिया किमी एंटोनेली ने हाल ही में फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है। इस शानदार जीत के साथ ही एंटोनेली केवल 19 साल 9 महीने की उम्र में मोनाको रेस जीतने वाले इतिहास के सबसे युवा ड्राइवर बने हैं।
1: दोस्तों हम आपसे बातें और भी करेंगे, पर यहां पर लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं एक प्यारा सा गाना।

0: पैमाना नहीं होता। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके ज्ञान, कौशल और मेहनत से होती है।
1: योग्यता बाहरी रंग रूप से नहीं बल्कि सीखने की लगन और प्रैक्टिस से बनती है। लोगों को काबिलियत के आधार पर ही आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, न कि स्किन कलर के बेसिस पे। स्किन कलर का IQ, टैलेंट, लीडरशिप, ऑनेस्टी से कोई लेना देना नहीं है।
0: हमारी योग्यता हमारी मेहनत से तय होती है, स्किन कलर से नहीं।
1: दोस्तों, बातें तो आपसे और भी करनी थी, पर वक्त का तकाजा है। फिर मिलेंगे ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। आपके दोस्त प्रज्ञा
0: और रजत का नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम श्रमिक लोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रीति और मेरे साथ हैं आशीष।
1: नमस्कार प्रीति, और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आशीष का भी नमस्कार। साथियों, कहते हैं सभी धर्मों से ऊपर इंसानियत का धर्म होता है। जहां हम इंसान को हर चीज से ऊपर मानते हैं, आगे बढ़कर हर व्यक्ति जिससे सहायता की जरूरत हो साथ देते हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, भेदभाव रहित समाज एक ऐसा परिवेश है जहां हर व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति से परे समान सम्मान, अधिकार और सुरक्षा मिलती है।
1: सच कहें तो ऐसी ही वातावरण में ही मानसिक शांति और आत्मविश्वास का विकास हो जाता है।
0: तभी तो देश भी आगे बढ़ता है, क्योंकि लोग अपनी पूरी क्षमता से अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। आशीष, तुमने देखा होगा कि अगर तुम किसी के साथ काम करते हो और उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं है तुम्हारा, तो वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं होगा कि हाँ बेहतर तरीके से काम कर सके। लेकिन आपका बिहेव उसके साथ अच्छा है तो देखिएगा कि वो बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा।
1: बिल्कुल, स्वभाव आपका जो है कैसा है, क्या मिलनसार है, आप झगड़ालू है, क्या है, इस पर आपकी आगे की जो है
0: नहीं, ये स्वभाव तो एक मैटर करता है, लेकिन एक मैटर करता है रंग भेद, लिंग भेद, जाति, धर्म। अगर इसके आधार पर आप उसके साथ भेदभाव करें तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है और काम तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो वहाँ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
1: इसलिए आप भी सभी के साथ एक जैसा आचरण करें, और किसी के साथ अन्याय होता देखें तो साथियों आवाज उठाएं।
0: बिल्कुल, और वैसे आज हम कार्यक्रम की शुरुआत में इस विषय पर इतनी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस है, जिसका उद्देश्य एल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के साथ भेदभाव समाप्त करना और इसके प्रति जागरूकता फैलाना है।
1: एल्बिनिज्म यानी रंगभेद एक अनुवांशिक विकार है जिसमें शरीर मेलेनिन नामक पिगमेंट का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाता, जिससे व्यक्ति की त्वचा, बालों और आंखों का रंग बहुत हल्का या सफेद हो जाता है।
0: रंग के कारण इन लोगों को अक्सर सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, जो गलत है। तो आप ऐसा न करें बल्कि इनका साथ दें।
1: वाह, क्या बात कहा आपने प्रीति। और इस वर्ष इस दिवस का थीम भी है Proudly in my skin, celebrating all skin tone, यानी अपनी त्वचा के रंगों का उत्सव मनाना।
0: यह थीम रंग आधारित भेदभाव को दूर करने, आत्मसम्मान बढ़ाने और मानसिक कल्याण पर जोर देने पर केंद्रित है। और बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें। जब आप किसी का सम्मान करते हैं ना, तो सच में उसका भी सम्मान बढ़ता है, आत्मसम्मान बढ़ता है।
1: और ऐसे में व्यक्ति का दिल टूट जाता है। तो चलिए प्यार से गीत सुनते हैं।
0: चलिए।

0: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
1: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे, सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: तो दोस्तों, कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रीति और साथ में है आशीष। और अब आइए बातें करते हैं हिंदी सिनेमा के दिग्गज गीतकार और संगीतकार प्रेम धवन की, जिनकी आज जयंती है।
5: प्रेम धवन को मुख्य रूप से उनकी देशभक्ति से परिपूर्ण रचनाओं के लिए याद किया जाता है। 1965 में आई फिल्म शहीद के उनके गीत मेरा रंग दे बसंती चोला और ऐ वतन हमको तेरी कसम आज भी लोगों के लिए दिल में देशभक्ति की भावना जगा देते हैं।
4: बिल्कुल, तुम कह रहे हो उसमें ही ऐसा लग रहा है कि भाई ये गीत सुनना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा 1970 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1971 में उन्हें नानक दुखिया सब संसार के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
5: और दो बीघा जमीन 1953 और नया दौर 1957 में आई फिल्मों में नृत्य निर्देशन भी उन्होंने किया।
4: बताओ, गीतकार, संगीतकार और नृत्य निर्देशन भी। बहुमुखी प्रतिभा वाले प्रेम धवन को उनकी जयंती पर हम शत शत नमन करते हैं। और अब आइए दोस्तों, आपको भेंटवार्ता सुनाते हैं। विषय है स्टार्टअप इंडिया अभियान और आत्मनिर्भर भारत। भेंटवार्ताकार है अनुराग और इनसे बातचीत कर रहे हैं आशीष कश्यप।
6: आज हमारे साथ हैं युवा उद्यमी अनुराग, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपना स्टार्टअप शुरू किया और आज सफलता के मुकाम पर हैं। तो आइए बातचीत करते हैं अनुराग से। अनुराग, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है, अपने बारे में कुछ बताइए।
7: नमस्कार मेरे सारे श्रोतागणों को, मेरा नाम अनुराग है। मैं मूलतः रांची से ही हूँ, मेरी परवरिश रांची में ही हुई है और मैं पिछले 10 साल से बिजनेस के क्षेत्र में हूं। और मेरे परिवार मूलतः रांची में 1954 में हमारे दादाजी यहां रांची आए और फिर यहीं पे हम एक संयुक्त परिवार में रह रहे हैं और अब मैं रांची में ही बिजनेस करता हूं।
6: अच्छा अच्छा, मतलब आप मूलतः रांची के ही हैं। तो अनुराग, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है?
7: देखिए, मैंने अपनी पढ़ाई पहले तो 10th तक DPS रांची में करी, फिर 10 प्लस

0: तो मैंने डीएवी शामली से की थी और फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं गौसनर कॉलेज से मैंने बीए किया है, और उसके बाद मैंने मास्टर्स के लिए मैं पुणे चला गया, जहां मैंने अब एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्लीट किया था। ये मेरे एजुकेशन का पूरा एक सफरनामा रहा है।
1: अच्छा, तो क्या ये आपके मन में शुरू से ही ख्याल था कि अपना बिजनेस करना है, अपना स्टार्टअप करना है, वो पढ़ाई के दौरान ही आपको ये ख्याल आ रहे थे क्या?
0: मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मैंने एमबीए की पढ़ाई शुरू की पुणे जाके, तब मुझे इस बारे में और क्लैरिटी आई कि मुझे जीवन में करना क्या है। एमबीए की पढ़ाई करते हुए मुझे बिजनेस के बारे में बहुत चीजें पता चली और तब मुझे लगा कि आप अगर स्वरोजगार, अगर आप खुद के काम करते हैं तो आप अपने साथ साथ 5-6 लोगों को और भी रोजगार देते हैं, और ये बहुत बड़ा ही मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। मैंने सोचा कि मैं कुछ खुद का ही करता हूं जिससे मैं और लोगों को अभी जीवन को एक सही दिशा दे पाऊं, और कुछ जीवन में मैं भी सफल होने के साथ साथ लोग भी अपने आप को एक सफल आदमी घोषित कर पाए।
1: अच्छा, तो मतलब ये है कि आप एक दृढ़ निश्चय कर चले थे कि हाँ, मैं तो खुद का रोजगार करूंगा ही, साथ में समाज के लोगों को भी अपने रोजगार के साथ जोड़ूंगा।
0: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये सोच था कि मैं अपने साथ साथ लोगों को भी रोजगार का स्रोत या साधन देता रहूं, और जिस तरह से मेरी ग्रोथ जर्नी रही है, मैं कह सकता हूं कि हाँ, मैंने काफी परिवारों को वो घर का एक सुखिया साधन मैंने उनको मुहैया कराया है।
1: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। तो अनुराग, आप ये बताइए कि आपके मन में जब स्टार्टअप शुरू करने का ख्याल आया, तो स्टार्टअप तो आज बहुत सारे क्षेत्र में हो रहे हैं, तो आपने कौन सा क्षेत्र चुना और क्यों चुना?
0: देखिये, जब मैंने ना निश्चय किया कि मुझे अपना खुद का कुछ काम करना है, तो एक बार तो घर से भी थोड़ा सा विरोध था कि भाई, आप इतना पढ़ के आप नौकरी क्यों नहीं करते हैं, अपना जॉब अच्छा जो महीने की जो सैलरी और ये सब करना क्यों नहीं चाहते हैं। और बिजनेस जनरली लोगों आज भी मिडिल क्लास फैमिलियों में है कि बिजनेस अच्छा नहीं माना जाता। जब मैंने आज से 7-8-9 साल पहले जब ये काम स्टार्ट किया था, तब तो परिवार से काफी विरोध हुआ था, बट खैर, मैंने अपने मन की सुनी और मैंने इलेक्ट्रिकल गुड्स के बिजनेस में अपना कदम रखा था। आज उस कंपैरिजन में मैं कहूं तो समाज बहुत बदला है। आज जिस तरह से सरकार स्टार्टअप योजना को बढ़ावा दे रही है, बहुत लोगों को इस तरफ रुझान बढ़ा है। मैं ये कह सकता हूं कि जब मैंने शुरुआत की थी तो दिक्कतें काफी थी, अड़चनें काफी आई थी, पर धीरे धीरे मैंने उन सारी दिक्कतों को पे जीत हासिल करते हुए मैंने आज मैं कह सकता हूं कि अब सिचुएशन काफी अच्छी है।
1: तो ये आपने कहा कि आप अपना स्टार्टअप जब प्रारंभ कर रहे थे तो आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कुछ बाधाएं आई।
0: हाँ,
1: तो प्रमुखतः आपको कौन से क्षेत्र में और क्या बाधाओं को फेस करना पड़ रहा?
0: देखिए, सबसे पहला तो पारिवारिक बाधा है, क्योंकि आप पढ़ लिख के और फिर अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, वो चीज जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो परिवार की तरफ से ही दो स्वर थे कि नहीं, आपको अभी आप जॉब कीजिए। और दूसरी बाधा थी कि अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको धन राशि जो है अच्छा खासा आपको लगानी पड़ती है, क्योंकि आप जब तक पैसे लगाइएगा नहीं तो पैसे आपको रिटर्न आएंगे नहीं। तो ये दो चीजें थी, और चूंकि मैं जस्ट पढ़ाई करके निकला था तो पैसे की थोड़ी तंगी तो जरूर थी, पर बैंक के सहयोग से और परिवार के कुछ लोगों के सहयोग से मैंने ये काम शुरू किया था।
1: चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम आपको बताना चाहेंगे अनुराग कि हमारे बहुत सारे श्रोताओं आपको सुन रहे हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी लोकल पर वोकल और स्टार्टअप के लिए काफी लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। तो आप अगर हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आप कैसे अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए कि वो अपना एक स्टार्टअप शुरू कर सके?
0: मैं सबसे पहली बात तो अपने श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहले तो दृढ़ निश्चय आपको रखना होगा, क्योंकि बिजनेस में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और कभी आपको लगेगा कि दिन बहुत अच्छा जा रहा है, कभी आपको लगेगा कि दिन बहुत ही मतलब आपके अनुरूप नहीं जा रहा है, और पैसे का जो आपको लेन देन और ये सब आपको बहुत देखना पड़ेगा। वो उस चीज के लिए आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि इस ये स्ट्रगल तो आपको जरूर रहेगा। दूसरा चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के दिन में सरकार की तरफ से बहुत सारी पॉलिसीज आए हैं जिससे जो भावी बिजनेसमैन है स्टार्टअप योजना के थ्रू, उनको बहुत सहयोग मिल रहा है, और सरकार का भी रुख जो है बिजनेस के प्रति काफी अनुकूल है,
1: काफी बदला
0: जी। अब आपको अगर कोई बिजनेस आइडिया आपके मेरे दिमाग में है, और आपने अगर दृढ़ निश्चय कर लिया है कि आपको इस क्षेत्र में कूदना है तो फिर आपको पूरे जोर शोर से इसमें कूदना चाहिए। और अपॉर्चुनिटी बहुत है, भारत कुछ सालों में $5 trillion की इकोनॉमी बन जाने वाली है और ये ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है। हाँ, बट आपको संयम नियम आपको अपने आप में रखना होगा और मेहनत से आपको भागना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो फिर यहाँ पे आपको कोई नहीं रोक सकता है। स्काई इज द लिमिट जो कहते हैं वो आपके लिए यहाँ पे है। सरकार और बैंक से आपको बहुत भरपूर सहयोग मिलेगा और आपको इस तरह से आप इस क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकते।
1: तो कहीं ना कहीं फिनांस आज बैंक के द्वारा भी मिल रहा है
0: जी,
1: तो लोगों को काफी सहयोग मिलेगा।
0: हाँ,
1: तो चलिए अनुराग, अपना कीमती समय आकाशवाणी रांची परिवार को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आशीष।
2: तो दोस्तों, ये थे अनुराग, जिनसे हमने जाना कि किस तरह से इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। बहुत सारी मुश्किलें भी आई लेकिन आज ये सक्सेसफुल है, और जरूरी भी है आशीष। आप जब भी कोई काम करते हैं ना, तो बहुत बार ऐसी घबराहट होती है, लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप डटे रहिएगा कड़ी मेहनत के साथ तो आगे जरूर बढ़िएगा। और जब बात आत्मनिर्भरता की चली है तो भला महिलाएं पीछे क्यों रहें, इसलिए भारत सरकार ने उनके लिए लखपति दीदी योजना चलाई है, जो एक प्रमुख महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है।
1: इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे प्रतिवर्ष 1,00,000 से अधिक की अस्थायी आय कमा सकें।
2: इसमें महिलाओं को कृषि, डेयरी, हस्तशिल्प और खाद्य पदार्थों के साथ साथ आधुनिक क्षेत्रों जैसे कि ड्रोन संचालन, सौर पैनल स्थापना और प्लम्बिंग में मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही स्वरोजगार शुरू करने के लिए आसान शर्तों पर 5,00,000 तक का ऋण भी दिया जाता है, और मुझे लगता है कि आपको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ऋण भी दिया जा रहा है, तो फिर देर किस बात की।
1: बिल्कुल सही, और सबसे जरूरी बात है कि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना और उन्हें बेचने के लिए उचित मंच भी प्रदान इसमें किया जाता है,
2: और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हमारे श्रमिक साथी ऐसा होता है कि अपना फैक्ट्री लगा रहे हैं, वो स्वरोजगार कर रहे हैं, किसी भी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, अब उन्हें बाजार नहीं मिलता है, तो ऐसे में भी जो उनका उद्योग है वो नष्ट हो जाता है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत जरूरी चीज है कि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने और उन्हें बेचने के लिए एक मंच प्रदान किया जाए, ताकि जितनी भी बहनें हैं, जितने भी हमारे श्रमिक साथी हैं, वो अपने सामान को जो है उचित मूल्य पर बेच सकें।
1: तो महिलाओं, देर किस बात की, बनिए आप लखपति दीदी। और इसी के साथ सुनवाते हैं एक गीत।

0: वाह प्रीति, आपने तो मौसम के अनुरूप ही ये गीत सुनवा दिया। अब हम बात करेंगे एक ऐसे सरल उपाय की जो श्रमिक भाइयों बहनों को स्वस्थ, ऊर्जावान और तनाव मुक्त रखने में मदद करता है। यानी योग करेगा हर श्रमिक भाई, दूर भागेगी शारीरिक कठिनाई।
1: बिल्कुल सही कहा आशीष। श्रमिक हमारे देश की मजबूत नींव है। श्रमिकों के कठिन परिश्रम से देश आगे बढ़ता है, लेकिन लगातार मेहनत और शारीरिक श्रम के कारण शरीर में दर्द, थकान और तनाव जैसी समस्याएं भी सामने आने लगती हैं।
0: सही कहा आपने। और ऐसे
1: और
0: में
1: हाँ बिल्कुल
0: योग एक प्रभावी और आसान उपाय है। योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मन को भी शांत और संतुलित बनाता है।
1: साथियों, योग किसी महंगे उपकरण या विशेष स्थान की मांग नहीं करता। केवल कुछ मिनट का नियमित अभ्यास ही स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव ला सकता है। इससे तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है और कार्य क्षमता में भी सुधार आता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और योग जो है, ऐसे भी कहा जाता है कि योग भगाए रोग, ठीक है,
1: रखे निरोग, सही
0: रखे
1: बात
0: निरोग।
1: है।
0: तो साथियों, आइए हम सभी संकल्प लें कि नियमित योग करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। और
1: बिल्कुल
0: आने वाला समय जो है, विश्व योग दिवस भारत की ही देन है, 21 जून, तो योग का अभ्यास तो करते ही रहना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि वक्त हमें इतने की इजाजत देता है।
1: तो श्रमिक साथियों, अपनी दोस्त प्रीति,
0: और आशीष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। भारतीय वायुसेना के एक AN-32 विमान के आज असम के जोरहाट में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से वायुसेना के 5 जवानों की मृत्यु हो गई। वायुसेना ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मृतकों में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जीतेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम शामिल हैं। रामगढ़ जिले के अरगड्डा क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के दौरान हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 4 युवक अवैध रूप से कोयला निकालने के लिए खदान में गए थे, जहां ऑक्सीजन की कमी या गैस रिसाव के कारण वे अंदर ही फंस गए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज देवघर पहुंचे। देवघर हवाई अड्डे पर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। देवघर पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री सीधे बाबा बैद्यनाथ मंदिर गए, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और देश तथा झारखंड की सुख समृद्धि की कामना की। धनबाद में पठन पाठन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जिले में 10 मॉडर्न स्मार्ट लाइब्रेरी और 1 डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। यह घोषणा उपायुक्त आदित्य रंजन ने सिम्फर ऑडिटोरियम में आयोजित पुस्तकालय से समाज तक एक पहल कार्यक्रम में की। मॉनसून के आगमन को देखते हुए रांची नगर निगम ने जल जमाव, नालों की सफाई और पेड़ गिरने जैसी संभावित समस्याओं से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। निगम ने त्वरित कार्रवाई के लिए 11 क्विक रेस्पॉन्स टीमों के गठन का फैसला किया है। और झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन इसका प्रभाव अभी सीमित रूप से देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 19 जून तक राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: जतई गोबर ततई धान।
1: किसान वाणी कार्यक्रम में किसान भाई बहन मनकर स्वागत है। संध्या बहन
0: और करण भाई कर
1: जोहार।
0: बताई दे खोजिला, ये कार्यक्रम का प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। और संध्या बहन बताओ किसान हाल समाचार है?
1: एकदम नगद है भाई।
0: तनी की रौद कम हुई है नहीं?
1: हाँ हाँ पानी अलग है कटिक तो तनी बढ़िया लागत है।
0: 11 तारीख के तो बाप रे सन पानी आई रहे, लागत रहे कि एकदम गोटा बोट एकदम टाइट दी है अंधार एकदम, और 1.5-2 घंटा तेरे पानी।

0: आलक और मुरुख लौकत हे और घिड़कत हे। बदरी कर घिड़केक और बिजली कर लौकेक। बाप रे, मोके तो पुरखा मन कर याद आवत रहे संध्या बहन, कि पहले कर पुरखा मन जे एखन घर नहीं रहे और ईसन स्थिति रहे से एखन कैसन रहत रहे सोचू तो।
1: हाँ भाई, और कहूँ कैसनो रहत रहे लेकिन स्वस्थ रहत रहे है नी।
0: हाँ, और उकरे देखो गछ मन के भगवान के रूप में देख लें, कारण गछ जियन जान बचालक तो भगवान के जैसन मान लें। जे माड़ा मना है, चट्टान पखल मना है, से मन तो कोनो कोनो हम बचात रहे नहीं।
1: हाँ
0: तो हमारे मन के हम देखो अपन खेत मन के तनिक बचाए कर दरकार है तेरे नहीं तो।
1: हाँ भाई, खेत बचा के लगिन जैविक खेत खाद मन कर प्रयोग करे है।
0: काले की गोबर माइन मन के लगाब, चूना मन के लगाब। तो देखो हमारे कर राज्य में तो अम्लीय माटी कर बहुत बगरा भेटाल नहीं, तो चूना मन के लगाए कर वैज्ञानिक मन सलाह देवे ना, ऊकर से खेत बनेला। और हमारे मन आज के चलानी माइंड लगा ही लगा कि जे खेत के बिगड़ा थी तो वो आगे आवेला पीढ़ी ले ठीक न खे।
1: खेत तो बगड़बे करत है भाई, हमरे कर अपन अपन स्वास्थ्य हो बगड़त है नी। रासायनिक खाद कर उपजल खाए खाए के।
0: हाँ, बरने बरन कर बीमार से मार आवत है नहीं तब, कि डॉक्टर मन हो उके जाने के नहीं पा रहे, कल किसी नवा नवा बीमारी आवत है। हमारे मन देखो कोनो फर फूल है ऊकर में हो रासायनिक दवाई मन के लगाई ला, चाहे उसन चीज के लगाई ला, तो नहीं निमिट पा रहे ला, कोनो नहीं कोनो मात्रा में हमारे कर शरीर में चलिए जाए ला।
1: हाँ, और अब कहब कि खेतो हेवा जाए है कि अगर नी लगा कटको नहीं तो उपजबे नहीं करी है नी।
0: हाँ सही कहते, तो धीरे धीरे हमारे मन के छोड़ेगा है नहीं तो,
1: हाँ
0: एक
1: हाँ
0: दाँव
1: मैंने
0: छोड़ ले तो उपज होनी होगी। और हेवाई
1: हाँ
0: जाई है तो हेवाल बाड़ो के कहो कि मुर्गी के नहीं खा बोले वो छोड़ी, वो तो खाबे करी।
1: और खेतो ऐसा नहीं कि मैंने एके लखे कर खेती नखे करे, बदली कर कर के करब नहीं तो बढ़िया होवेला।
0: हाँ, काले की विशेषकर डाँड़ का खेत में नहीं, डाँड़ वाला खेत में
1: हाँ
0: काले के हमरे खाली ऊपर मोड़वे लगाते, हर साल मोड़वे लगाते तो उपज में कमी आवी। तो फसल चक्र जेके कहल जाए ना, जेके रवरे कहल कि बदल
1: हाँ
0: बदल
1: बदली
0: के
1: कर कर के।
0: लगाए चाहिए। देखो दाइल कर खेती हमरे करे नहीं तो बदल बदल के करब डाण मन में, तो ऊपर से देखो नाइट्रोजन जे है वो पोषक तत्व तो जाए ला वो दाइल कर अथी जड़ से, और यह तो बहुत एकन पोषक तत्व तो भेटाला, तो से चलते बदल बदल के करे के चाहिए। और समेकित खेती मन हो करे के चाहिए, मिश्रित खेती मन हो करे के
1: हाँ
0: चाहिए।
1: मैसा करे।
0: हाँ मान लो देखो और कर पोखरा है तो पोखरा में और गेड़े पोई सकेला है नहीं,
1: मछरी
0: आयर
1: पोस
0: मछली
1: सकेला।
0: पोई सकेला, आयर मन में कोनो पपीता चाहे लेम्बू मन की तनिक चाकर है तो वहाँ रोप के अथी कर सकेला, ऐसा हमारे मन कर सकेला बहुत अकन। और संध्या बहन देखो सरकार बोर्ड से बहुत अकन योजना चलाल जाएला, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना मन हुए जेकर से कि साल में 6,000 रुपया देवल जाए नहीं।
1: किसान मन के
0: तो 3 किस्त में देवल जाए, ओकर 12 साल पूरा हो जाए और किसान मन एकर से फायदा उठाते हैं। तो यह दोसर दोसर योजना मन हो है किसान मन ले, तो किसान मन के जागरूक हो के जरूर ओकर फायदा लेवे के चाहिए।
1: कटिक जानकारी ले के जानकारी रखब तब है तो लाभ लेवे पारब है नहीं।
0: और लाभ कह तो देखो आजकल आंबा कर मौसम है, आंबा से बहुत अकन कचिया कम है ना, तो अगर हमारे मन ऊकर में देखो कोनो कोनो बीमारी से मारी कीड़ा उड़ा मन लग जाए, कोनो काना कोसी मन हो जाए नहीं, तो हमारे ऊपर अगर प्रबंधन बढ़िया करब तो कचिया बढ़िया कमाई
1: तो
0: सकेला।
1: हाँ, तो आज इकरे जानकारी करब हमरे मन आंबा कर प्रमुख विकार मन कर का लक्षण कारण और उकर प्रबंधन हमरे मन का लखे करब इकर बारे बतात हैं डॉक्टर वर्षा रानी और बतियाए हैं कृष्ण जीवन पौराणिक।
0: चलो तो सुन लेवे। किसान साथियों नमस्कार, आज हम बात करेंगे फलों के राजा आम के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं आम न केवल स्वाद में बेहतरीन है बल्कि किसानों की आय का एक बड़ा जरिया भी है, लेकिन अक्सर किसान भाई आम के पेड़ों में होने वाले बीमारियों के बारे में नहीं जानते, जैसे आम में रोग लग जाना, आम के फलों का फटना जैसी समस्याओं से हमारे किसान भाई परेशान रहते हैं, जिसे उपज और गुणवत्ता दोनों पर बुरा असर पड़ता है। आज हम इन्हीं समस्याओं की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर ये विकार क्यों होते हैं और इनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर बरसा रानी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची।

0: डॉक्टर वर्षा, आपको हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: धन्यवाद। नमस्कार
0: डॉक्टर वर्षा, आप हमारे किसान भाइयों को यह बताएं, आम में होने वाले विकार कौन कौन से हैं?
1: जी, आम में होने वाले प्रमुख विकार हैं कोयलिया रोग, जिसे काला सीरा भी कहा जाता है, गुच्छा विकार या ये गुम्मा विकार के नाम से भी जाना जाता है, एकांतर फलन, इसको द्विवार्षिक फलन भी कहते हैं, फलों का गिरना, स्पॉन्जी रोग, जेली बीज, फलों का फटना। आज हम डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे।
0: जी, अभी आपने कहा रोग और विकार, तो रोग और विकार में क्या अंतर है?
1: ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे हम लोग कभी कभी रोग और विकार में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि रोग मुख्य रूप से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि के संक्रमण से होता है, जबकि विकार पोषक तत्वों की कमी, तनाव, जलवायु तथा तापमान में परिवर्तन, हार्मोन्स के असंतुलन की वजह से होता है। इस पे किसी जीव या विषाणु का संक्रमण नहीं होता है।
0: जी, अब आगे हमारे किसान भाइयों को बताएं कि कोयलिया रोग क्या है और इसके लक्षण को हमारे किसान भाई कैसे पहचानें, कृपया इसके विषय में बताएं।
1: कोयलिया रोग, जिसे काला सिरा भी कहा जाता है, यह आम का गंभीर शारीरिक विकार है। यह मुख्य रूप से बाग के आसपास स्थित ईंटों के भट्ठों से होता है। यह समस्या उन आम के बागों में अधिक होती है जो ईंट भट्ठों से 1 या 2 किलोमीटर के दायरे में स्थित होते हैं। इन भट्ठों से निकलने वाली हानिकारक गैस बौर और छोटे फल के संपर्क में आती है तो फल की कोशिकाओं को क्षति पहुंचाती है। इसके कारण फल का निचला हिस्सा पहले पीला पड़ता है, फिर भूरा होकर अंत में काला और कठोर हो जाता है। इससे आम समय से पहले पककर सड़ने लगते हैं। इसके अलावे बोरोन की कमी भी इसका एक मुख्य कारण है।
0: जी, तो कोयलिया रोग का नियंत्रण कैसे करना चाहिए?
1: देखिए, इस समस्या से निपटने के लिए एक बहुत सरल उपाय है। किसान क्या करें कि वो 6 ग्राम बोरोन और 6 ग्राम कपड़ा धोने वाला सोडा प्रति लीटर पानी में डालकर घोल तैयार कर ले। इस घोल को आम के पेड़ पर छिड़काव करने से कोयलिया रोग को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है।
0: जी।
1: यह घोल फलों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है और उन्हें काला होने से बचाता है। छिड़काव के लिए टैंकर या प्रेशर स्प्रेयर का उपयोग करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि छिड़काव पूरे पेड़ पर समान रूप से हो, विशेषकर फलों वाले हिस्सों पर। पहला छिड़काव फल लगने की शुरुआत में और दूसरा 15 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए। रोग का लक्षण दिखने से पहले ही सावधानी के तौर पर पहले ही छिड़काव कर देना बेहतर होगा।
0: जी, अब गुम्मा रोग के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं कि गुम्मा रोग क्या है।
1: देखिए, आम का गुम्मा रोग, जिसे गुच्छा रोग के नाम से भी जाना जाता है
0: जी।
1: और इसे अंग्रेजी में मैंगो मालफॉर्मेशन भी कहा जाता है, यह आम की फसल को प्रभावित करने वाला एक गंभीर और जटिल रोग है जो फल उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस रोग के कारण पत्तियों, शाखाओं और विशेष रूप से फलों में असामान्य विकृति होती है, जिससे फलों का विकास रुक जाता है और वे विकसित नहीं हो पाते हैं। यह रोग मुख्य रूप से 2 रूप में प्रकट होता है। पहला है वानस्पतिक गुच्छा और दूसरा है पुष्पीय गुच्छा। पुष्पीय गुच्छा रोग अधिक गंभीर होता है क्योंकि यह सीधे फूल आने और फल लगने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, जिससे उपज में भारी कमी आती है।
0: जी, तो आम में पुष्पीय गुच्छा रोग के लक्षण क्या हैं और वानस्पतिक गुच्छा विकार को कैसे पहचाना जा सकता है?
1: जी, वानस्पतिक गुच्छा विकार में पत्तियां छोटी हो जाती हैं और विकृत हो जाती हैं। टहनियों के सिरों पर पत्तियां सघन व असामान्य गुच्छे के रूप में उग जाती हैं। पुष्पीय गुच्छा रोग के प्रमुख लक्षण हैं पुष्प क्रम का मोटा होना, सामान्य फूल आने के बजाय फूल छोटे मोटे और हरे भरे गुच्छों में बदल जाते हैं। इसका दूसरा लक्षण यह है कि संक्रमित फूल सामान्य फूलों की तरह झड़ते नहीं हैं, बल्कि पौधे पर बने रहते हैं और धीरे धीरे काले पड़ जाते हैं। इसका तीसरा लक्षण यह है कि इन विकृत पुष्प क्रमों पर फल नहीं लगते, या यदि लगते हैं तो वे छोटे आकार में रह जाते हैं और अविकसित होते हैं। एक और जो लक्षण इसका दिखने को मिलता है वो यह है कि पुष्प क्रम के पास की पत्तियां भी छोटी और विकृत हो जाती हैं।
0: जी, ये गुच्छा विकार के कारण क्या है?
1: देखिए, आम का जो ये गुच्छा विकार है इसके कई कारक जीवों से जोड़ा गया है, लेकिन मुख्य कारक एक कवक यानी फंगस है जिसका नाम फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी कहा जाता है। यह कवक रोग का प्रमुख कारण माना जाता है। यह पौधे में कुछ रसायन जैसे फाइटोटॉक्सिन, हॉर्मोन्स और मुख्य रूप से इथिलीन गैस उत्पन्न करता है जो पौधों में असामान्य वृद्धि का कारण बनता है।
0: जी।
1: इस रोग में मकड़ी और वायरस की भूमिका का भी सुझाव दिया गया है, लेकिन कवक को प्राथमिक कारक के रूप में सबसे अधिक स्वीकार किया जाता है।
0: इस रोग के नियंत्रण किस प्रकार किया जाए?
1: जी, देखिए, आम का जो गुच्छा रोग है, गुच्छा विकार है, इसके नियंत्रण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। सबसे पहले संक्रमित भागों को हटाना होता है, जिसमें जनवरी के अंत तक या फूल आने से पहले संक्रमित पुष्प क्रमों और वानस्पतिक गुच्छों को काट कर नष्ट कर देना चाहिए। यह रोग के प्रसार को रोकने में मदद करता है। दूसरा उपाय यह है कि कार्बेंडाजीम नामक एक फफूंद नाशक होता है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। फफूंद नाशकों का छिड़काव रोग को नियंत्रित करने में प्रभावी पाया गया है। पहला छिड़काव अक्टूबर नवंबर में और दूसरा छिड़काव दिसंबर जनवरी में किया जाना चाहिए। इसके अलावा नैप्थलीन एसिटिक एसिड, जिसको NAA कहा जाता है, इसका छिड़काव भी पुष्पीय गुच्छा रोग को कम करने में सहायक होता है। फूल आने से पहले अक्टूबर के अंत में NAA की 100 से 200 ppm मात्रा में इसका छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावे पौध स्वास्थ्य प्रबंधन करना भी जरूरी होता है। रोग मुक्त नर्सरी से स्वस्थ पौधे लगाना महत्वपूर्ण है। पौधों को संतुलित उर्वरक प्रदान करना चाहिए, विशेष रूप से पोटेशियम और फास्फोरस पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही रोग प्रतिरोधी आम की किस्मों का चुनाव करना दीर्घकालीन नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। बाग की नियमित सफाई और रोगग्रस्त पत्तियों व शाखाओं को हटाकर नष्ट करना भी रोग के फैलाव को कम करता है।
0: जी, तो आगे हमारे किसान भाइयों को बताएं कि द्विवार्षिक फलन या एकांतरण फलन यह क्या है और इसके क्या मुख्य कारण है?
1: देखिए, ये हम अब दूसरे विकार की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें कि एक बहुत प्रमुख विकार है एकांतर फलन। इसमें क्या होता है कि पेड़ एक साल भरपूर फसल देता है, जिसको हम अंग्रेजी में ऑन ईयर कहते हैं, लेकिन अगले साल उत्पादन बेहद कम या शून्य हो जाता है। इसको हम अंग्रेजी में ऑफ ईयर कहते हैं। इसके कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे पोषक तत्वों की भारी कमी। जब क्या होता है, ऑन ईयर होता है जब पेड़ में फल लगे होते हैं, तब पेड़ अपनी सारी ऊर्जा फल बनाने में लगा देता है, जिससे अगले साल के लिए फूल यानी बौर बनाने हेतु पर्याप्त खनिज नहीं बचते। इसके अलावे अनियंत्रित वानस्पतिक वृद्धि भी इसका कारण होती है। यदि मौसम के अनुसार शाखाओं की वृद्धि अत्यधिक हो जाती है तो भी फूल आने की प्रक्रिया बाधित होती है।
0: जी।
1: जलवायु व तापमान परिवर्तन तथा सही समय पर ठंडक न मिलने के कारण भी यह समस्या उत्पन्न होती है। कीट व फंगस के प्रकोप जैसी समस्या भी इसका कारण बनती है।
0: जी, तो एकांतरण फलन के लक्षण क्या हैं ये बताएं।
1: एकांतरण फलन में सबसे

0: इसमें क्या होता है, बौर असंतुलित आती हैं, मतलब एक हिस्से में, पेड़ के एक हिस्से में बौर आती हैं और दूसरे हिस्से में बिल्कुल नहीं आती।
1: जी, तो इसका समाधान क्या है?
0: इसके लिए पैक्लोब्यूट्राजोल का प्रयोग सबसे प्रभावी होता है। यह वानस्पतिक वृद्धि को रोककर फूल लाने में मदद करता है। इसे सितंबर अक्टूबर में पेड़ के तने के पास मिट्टी में दिया जाता है। साथ ही हल्की छटाई करनी चाहिए। ऑफ ईयर से पहले पेड़ की सूखी, रोगग्रस्त और घनी शाखाओं की कटाई छटाई करनी चाहिए। हर साल पेड़ की गुड़ाई करनी चाहिए और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरोन देना चाहिए।
1: अक्सर देखा जाता है कि पकने से पहले ही फल गिर जाते हैं, तो फल गिरने का मुख्य कारण क्या है और इनके लक्षण क्या हैं?
0: देखिए, इसमें क्या होता है, जो फल गिरने की समस्या होती है, इसमें जब फल मटर के साइज का होता है या मार्बल के आकार का होता है, तभी ये पेड़ से झड़ जाते हैं। फल जो है पेड़ से झड़ जाते हैं। इसके मुख्य कारण है प्राकृतिक हार्मोन ऑक्सिन की कमी,
1: जी
0: मिट्टी में नमी की कमी या बहुत अधिक जल भराव के कारण भी फल गिरने लगते हैं। इसके अलावा खराब परागण भी इसका मुख्य कारण है। परागण करने वाले जो कीट होते हैं, जैसे आम में मधुमक्खियां जो होती हैं परागण करती हैं, अगर उनकी कमी हो जाए तो भी फल गिरने लगते हैं। इसके अलावा कीट या फंगस का हमला होने पर भी फल गिरने लगते हैं।
1: तो फलों का गिरना रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए हमारे किसान भाइयों को?
0: जब फल मटर के दाने के आकार के हों तो प्लानोफिक्स या NAA, उसको हम NAA के नाम से जानते हैं, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा 3 लीटर पानी में डालकर घोल बनाकर पेड़ पर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा परागण बढ़ाने के लिए बागों में मधुमक्खी के बक्से रखने चाहिए ताकि परागण सही हो। फंगस तथा रोग प्रबंधन के लिए ब्लाइटॉक्स 60 ग्राम 20 लीटर पानी में डालकर घोल बनाना चाहिए और पेड़ पर छिड़काव करना चाहिए। साथ ही बगान की सफाई का ध्यान रखना चाहिए और खरपतवार नियंत्रण भी करना चाहिए।
1: तो किसान भाइयों, आज के बातचीत से यह स्पष्ट हो गया कि यदि हम सही समय पर लक्षणों की पहचान करें और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए प्रबंधन के तरीकों को अपनाएं, तो हम आम के बगीचों को इन विकारों से काफ़ी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो डॉक्टर वर्षा, आप हमारे स्टूडियो में आए और आम के प्रमुख विकार, कारण, लक्षण और इसके प्रबंधन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: एखन डॉक्टर वर्षा रानी से जानत रही कि आम कर जे बगीचा है उकर फॉर्मन में का का कमी होवेला, का उकर में रोग मनावेला, तो उके कैसे जान सकेला और कैसे बचाई सकेला, उकर बारे में बतात रहें और इनकर से बतियाई रहें कृष्ण जीवन पौराणिक। और तनिक बेरा तो भाई छे तो का करब, गीत सुन लो।
3: हाँ, एगो कृषि गीत सुनीला भाई है नी, ये है नागपुरी में सुलोचना देवी और संगी मनकर गावल।
4: लहा के कत की सुंदर जीना बगाना

0: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
1: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से

0: और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
1: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: किसान वाणी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक गाय पालक हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि गाय पालन में वो कब से हैं और कैसे उनका रुझान हुआ कि गाय पालन किया जाए और ये व्यवसायिक स्तर पर गाय पालन करते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दे दें।
3: हम आरा गेट के रहने वाले हैं।
2: आपका नाम?
3: भरत प्रसाद।
2: भरत प्रसाद भाई, आप आरा गेट के रहने वाले हैं। शुरू से ही गाय पालन कर रहे हैं या कुछ और भी करते थे?
3: ऐसे हमको सर्विस है प्राइवेट सेक्टर में,
2: उसके साथ साथ आप गाय पालन करते हैं।
3: हाँ।
2: तो बताइए, गाय पालन की दिशा में आपका रुझान कैसे हुआ, क्यों आप गाय पालने का सोचे?
3: गाय देखिए, हम लोग पुराने किसान के बाल बच्चे हैं। हम लोग घर पर भी पहले जानवर का व्यवसाय था, तो यहाँ पर भी आए तो हम लोग सोचे कि जगह है, यहाँ पर ही कुछ गाय रखा जाए तो उससे कुछ इनकम भी होगा, अपना खाने पीने के लिए भी साधन हो जाएगा।
2: अभी आपके पास कितनी गाय हैं?
3: दो गाय दूध देने वाली है, ऐसे बच्चा बच्ची और है।
2: अच्छा, तो ये कौन सी गाय है, जर्सी गाय है कि कौन सी नस्ल की गाय है?
3: ऑस्ट्रेलियन से है, जर्सी।
2: तो इसी नस्ल का क्यों आपने चुनाव किया?
3: ये गाय का दूध ज्यादा होता है, देहाती गाय का दूध कम होता है।
2: हाँ, तो कोई बताए थे कि ऑस्ट्रेलियन नस्ल को लेना?
3: नहीं, यहाँ पर तो यही गाय अधिकांश आदमी लोग पालते हैं, तो इसे व्यवसाय के दृष्टि से दूध ज्यादा देती है। देहाती गाय में तो उतना दूध है नहीं।
2: ये गाय सफल है और बढ़िया दूध देती है?
3: हाँ, ठीक है। ये सब है कि मतलब बाहर का गाय नहीं है, सब यहाँ का है, हवा पानी खाई लाए, ये लोग में रोग बलाई कम आता है।
2: अच्छा अच्छा। हाँ, मैं
3: बाहर के जो गाय आता है पंजाब से लाता है या बिहार से लाता है, राजस्थान कहीं से भी आता है, तो उसमें थोड़ा सा पानी सेट करने में टाइम लगता है, बहुत नुकसान भी हो जाता है,
2: बीमारी को बहुत नहीं झेल पाती है गाय, और मौसम के साथ बहुत जल्दी एडजस्ट नहीं करती।
3: हाँ, और यहाँ पर क्या है कि सब हवा पानी अपना बर्दाश्त किया हुआ है, ये लोग अपना सही सलामत रह जाता है।
2: जी, ये बहुत बढ़िया। थोड़ा बताइए हमारे श्रोताओं को कि गाय पालन कैसे किया जाता है, क्योंकि बहुत लोग गाय पालन में सक्सेस नहीं करते हैं और बहुत लोग कहते हैं कि पूंजी ज्यादा लग जा रहा है, दूध उतना नहीं आ रहा है।
3: पूंजी के हिसाब से दूध तो ठीक है, आपको खाना मिलेगा तो दूध तो करेगा ही, लेकिन मेन चीज है कि दूध का बिक्री हो, रेट मिले।
2: अच्छा,
3: अब जैसे मान लीजिए इधर के रेट कुछ और है, टाउन में जाएगा तो रेट कुछ और हो जाएगा।
2: तो क्या ध्यान देना चाहिए गाय पालन में?
3: गाय को ध्यान क्या है, मतलब खाना पीना पर उसको अच्छी तरह से देना है, दूध तो देवे करिए, जब खाएगी तो दूध क्यों नहीं देगी। थोड़ा सा उसको बीच बीच में डॉक्टर से सलाह लेते रहना है, रोग बलाई के लिए क्या कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर से दिखाइए, वो अपना उपचार अपना करेंगे।
2: कहा जाता है कि मवेशी पशुओं को कम से कम साल में दो बार टीका जरूर दिलाना चाहिए।
3: हाँ, तो एक पहले खुड़ा करके आता था, तो वो लोग को हम लोग टीका दिलवाते रहते हैं छः छः महीना पर।
2: गाय की एक समस्या है, बीमारी कहें तो खुरहा चपका का, ये बड़ी समस्या होती है।
3: तो उसका अभी तो नहीं है, दो साल पहले आया था तो हम ही को दो को गाय नुकसान हो गया था, लेकिन उस समय से हम लोग रेगुलर है, जो छः महीना पर टीका लगाते हैं।
2: अच्छा,
3: तो दो साल से अभी तो सही सलामत है।
2: अच्छा, इनके आहार व्यवस्था पे बारे थोड़ा बताइए, आहार कैसे इसका होना चाहिए, क्या क्या खिलाते हैं आप लोग?
3: हरा घास है, उसके बाद हम लोग जो पुआल का बिचाली होता है वो देते हैं, चोकर देते हैं, और शरबत पिलाते हैं, जैसे बादाम खल्ली हो गया एक फीट करके आता है वो है, राहड़ भूसी है, ये सब को मतलब फूलने के लिए दे देते हैं, खाना खिला के बाद उसको पिला देते हैं।
2: और इसका घर कैसा होना चाहिए? बहुत ही पशु का घर कहते हैं कि चलो वो तो पशु है, जैसे तैसे उसका घर।
3: जी नहीं, घर के तो बहुत अच्छी सी साफ सफाई रखना चाहिए। ऐसे तो हम लोग जैसा अपना किए हुए हैं, पक्का कर दिए हैं, नीचे में ढलाई कर दिए हैं, लेकिन वो जानवर को दिक्कत है, फिसलता है, बलस उन लोगों को बैठने में घुटना में फूट जाता है, क्योंकि पूरा जब उठता है या बैठता है तो ठेहुना पर ही लोड पड़ता है, ये लेकर के उन लोगों को दिया, लेकिन वो लोग को कच्चा ही रहे, थोड़ा सा साफ सफाई रहना चाहिए।
2: हमारे श्रोताओं को बताइए कि अगर वो गाय पालन करना चाहते हैं तो कहाँ से संपर्क करके गाय लें और थोड़ा क्या ध्यान दें?
3: यदि कोई नया हिस्सा कोई लेने वाले हैं जनता में, मतलब घूम करके देहाती साइड में ही अपना गाय लें तो अच्छा रहेगा, बाहर से गाय नहीं लावे, बाजार के गाय नहीं लें, क्यों बाजार की गाय में बहुत तरह की हो जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है, पानी सेट नहीं करता है तो उसको बेचारा को पूंजी डूब जाता है। तो यदि कोई ऐसा नया

0: साई अपनाना चाहते हैं तो लोकल गाय ले लें, और खान पीना पर यही सब है, कुट्टी चोकर दें अपना जैसा बने, तो बादाम खल्ली राहड़ भूसी एक बेसन आता है ये सब मिला जुला के अपना हजे दें, दूध करेगी। 6 महीना पर टीका है जो चपका खुड़ा का है जो दिलवा देंगे तो वंचित रहेंगे।
1: जी आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी, आशा करते हैं कि हमारे श्रोता इस बातचीत का लाभ उठाएंगे। आपने इतना समय दिया, इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
0: धन्यवाद।
2: तो भाई गाय पालन कर बारे बताते रहे हैं किसान भाई भरत प्रसाद, और इनकर से तो रौरे बात कर रहे, और देखो इकरे संगे किसानवाड़ी कार्यक्रम कर बेरा सिरायला बताई देवीला कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार,
3: और प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लालकर।

0: पहिल सुख निरोगी काया, दूसर सुख घरक माया।
1: एकदम फिर से सुनवाइया भाई बहन मन कर कार्यक्रम में स्वागत है। संध्या बहन
0: और करण भाई भट्ट से
1: जोहार।
0: जोहार। और आशा करेले कि सब सुनवाई मन बढ़िया हो गए संध्या बहिन, काले कि आई जो बहुत पानी अलग कोनो कोनो बट हमारे को
1: हाँ
0: तनिक कम अलग, लेकिन पानी तो आई रही लागत रहे। बाप रे मानसून आई गेल कि का। हालांकि मानसून तो कहते हैं कि लगभग लगभग पहुंची जाइए अब।
1: हाँ शुरुआत तो होइए जाए कहो।
0: तो ये बढ़िया मौसम है और खेती बाड़ी कर काम में हमरे कर भाई बहन मन लाग जाए हो, डांड कर खेत के तैयार करत हो है नी। आजकल तो देखो पहले ही हमरे मन लगाईला ये कांदा मन के, जाओ जो लाल कांदा है गाछी मन हो जाएला, और एखन तो बहुत लंबा लंबा हो जाए, बरसात हो गए कि काट काट के फिर रोपे के नहीं।
1: हाँ
0: और मड़ुआ बीड़ा करे के लिए पत्ते मन के हुआ और गोबर सूखा मन
1: खेत
0: के,
1: कर तैयारी
0: हाँ
1: करे
0: ते
1: के है
0: सूख
1: ने।
0: पोड़ाल जाएला। हाँ खेत कर तैयारी तो ही मन लगभग लगभग डाँड कर खेती ले तो तैयार हो जाइए खेत। और गढ़ा कांदा मन के तो रोई दे हैं।
1: हाँ सही कहा थी। और वह लखे भविष्य कर जोगाड़ लगिन बचत करक बहुत जरूरी है ने।
0: अरे बाप रे, रोने तो एकदम सही बात कह ली। बचत नहीं रही तो बहुत दिक्कत है, काले कि बचत सब तरह का बचत नहीं तब हमारे मन कचिया कर बचत कर
1: हाँ
0: सकीला, पानी कर बचत कर सकीला, बिजली कर बचत कर सकीला। आजकल देखब नहीं घर में अगर 5 गो आदमी है ना, 5 गो मोटरसाइकिल है
1: हाँ
0: तो तेल बाची करे।
1: खर्चा बग रहा है ने।
0: खर्चा बग रहा है। तो अगर 5 गो गाड़ी है तो 5 गो गाड़ी रहे तो तेल चाहिए, तो तेल ले कचिया चाहिए नहीं तब।
1: एकदम सही कहा थी। और हाँ माने
0: और यही तेरे पढ़ाई लिखाई लो अगर बचत करो तो छुआ मन कितने बढ़िया स्कूल कॉलेज में पढ़वाई सकेला। आ उमन ले अगर केहू छुआ बिजनेस करे खोजत है तो पूंजी हमरे मन बचाई रह तो पूंजी कर काम में आई सकेला।
1: और सबसे बड़ बात भाई कि आज के कोनो जरूरत पड़लक नहीं होल ओहे बचत काम आवेला।
0: सही कहले। और अचके तो आवेले को बीमार से मार हो जाए नहीं, से बड़ा के कर घर में जाए के हाथ के पसराब नहीं तब। अगर
1: हाँ
0: उमन को हमें कि हाँ बड़का फुटानी मारत रहे कोनो कहले तो कोई के बहुत किसन हो गए ना कि कचहरे से एखन तो धाई चलत रहे, एखन महंगाई है
1: हाँ
0: नहीं।
1: मजाक उड़ा है ना।
0: हाँ तो से चलते उसन नहीं करे का है। कचिया के जे जे काम आए वह जग लगाए चाहिए, अंदाजी खर्चा नहीं करे चाहिए। देखब नहीं बिहा मन में देखीला चाहे आज।
1: दिखावा मुरुख
0: हाँ बिन
1: ने।
0: मतलब कर खर्चा, अगर वो जे का बाजा केहन गूंगा बजा नहीं, ऊकर मन में इतना बगरा खर्चा करत है आजकल कान फाटक तिर बजवाए ना। अगर तनी कमे बजा बहन नहीं चली।
1: हाँ एक तो नुकसान हो है ला कहब कि अगर

0: उतना जोर बजावे हैं तो केखो ना केखो तो तकलीफ होबे करी है नी।
1: और ऊपर में कचिया बेसी लगे कहा कि साउंड बॉक्स
0: हाँ
1: बेसी राखे ना, तो हमारे मन कटौती कर सकीला। और तनी तनी अगर बचा 5 हज़ार 10 हज़ार तो कामे देवी, कोनो कोनो ना देखब नहीं 1 हज़ार रुपया हम बड़ा मुश्किल है जाए जुगाड़ करे। तो से चलते हमारे मन के अपन भविष्य के देखते
0: बचत करे
1: बचत
0: खे।
1: करे चाहिए, और सब चीज़ें बचत करे का है। अगर लुगा फटा रहा और एक कमे से चलत है तो कमे किनो। अब हमारे मन सैंडल किन ही जूता किन ही 10 15 जोड़ा और पिंधा थी एक साल में
0: एक हो हाँ तो अब तो
1: आई
0: इसने
1: की
0: हाँ इसने रख ले आए फालतू कर है ने।
1: बहुत के देखा नहीं। और राखे के लिए किने ना, बाप रे बाप, इसने दिसे साड़ी मन के और काका मन के ट्रंक के ट्रंक भर दे हैं और पिंधा ता है ही नहीं
0: दुई गो के
1: खाली
0: है
1: महिला मन नहीं, यह तेरे मर्द मन पुरुष मन इसने करे ना बिन मतलब कर खर्चा। कहीं कहना था हमारे ये कहा थी कि खर्चा बिन मतलब कर नहीं
0: हाँ
1: करे के।
0: नखे करे
1: तो चलो तब गीत।
0: कार्यक्रम के आगे बढ़ाप है ने। नागपुरी लोकगीत सुनब जानकी देवी और संगी मनकर गावल।
2: आलै पांचा हतिरा जहगलक सबक भाई आलक पांचा हतिरा

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
4: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा हित में जारी।
5: तो चलो अब हमरे मन कुरमाली में सुनीला डॉक्टर राजाराम महतो से कि अगर हमरे मन जागरूक रहब तो जागरूक रहले देश कर विकास तनिक बढ़िया से हो सके ला
6: हाँ। बारे में चलो सुनो।
7: इटा ऐसन व्यवस्था है कि जेटा कोनो जाति, देश, समाज कर लोग अपन परिस्थिति कर आरो कोनो कारण कर जानत आर आपन उन्नति आर रक्षा करते हैं जागरूक है जाहत। आज कर जुगे महान मानुष एक विज्ञान, उद्योग आर धन संपत्ति कर क्षेत्र महान बेजाई सफलता हासिल कर ले आहत। मंतुक बेसी लोगे मन भीतरे नाना रकम एक रोग दुख समय गेला है। इ दशाटा महान आपन निजे परिवारक और सामाजिक जीवन महान बेजाई मुश्किल चुनौती आ गेला है। इटा महसूस करल जाइला जे कि जदि इटा कर चाड़े समाधान नहीं हेले ताहले वैज्ञानिक और प्रगति कर जितना सफलता मानुष अर्जित कर ले हत उगला विनाश कर कारण है पारे। सामाजिक समस्या कर समाधान और समाज के संगठित करते हैं लोक जागृति कर बेजाई दरकार आहे। इगला एकटा बड़े समस्या है कि जाकर निराकरण लोक जागृति आर समाज कर सब वर्ग, समुदाय, संस्थान आर सरकार के सहयोग माने दूर करल जाय पारे। बेसी जनसंख्या होना भारत देश करते हैं एकटा बड़े समस्या है कि जाकर कारण शिक्षा, रोजगार

0: स्वास्थ्य और रहे घर देना सरकार करते हैं मुश्किल है कि जमीन तो सीमित है, खेती बाड़ी करते हैं खेत गोट उतना ही है, लेकिन दिन व दिन लगातार जनसंख्या बढ़ले लागेला। घर करना रहन सहन भरण पोषण पूरा नहीं है पारिगला, यह टाके तेहें पूरा देश महान लोक जागृति आने दरकार आहे। प्रेस मीडिया पंचायत कर लोग एनजीओ कर दाराएं हमरे दुई कर नारा टाके सफल बनाए जरूरत है। छोटू समय बिहा नहीं देना चाहिए, सरकार के इटाएं तेहें नियम कानून बनाला है। 18 साल कर पहल बिहा नी हे पारे, जे करता गके तेहें दंड दे पारे। यह नियम कर पालन करते हैं लोक जागृति के हे एक दरकार आहे। ओखरे के बताए हेते कि छोटे समय बिहा देले बहुत हानि आहे, घरे रोग दुख छोड़ी के नहीं और मरण दशा हेते। आरो एकटा समस्या आहे अशिक्षा माने बिना पढ़ा लिखा मानुष एकदम बोका रहतला, ओखर जागृति नहीं देखाइला। बिना पढ़ा लिखा मानुष ना निजे परिवार न समाज न जाति आर न देश कर कल्याण कर बातें सोचे पारत। बिना पढ़ा लिखा मानुष अपन इतिहास भूगोल कर जानकारी नहीं ले पार, अपन पूर्वज कर त्याग बलिदान टाके नहीं जाने पारत, निजे घर करना सुधराए के नहीं पारत, अपन छुआ पुता के पढ़ाए लिखाए के ओखरे कर भविष्य कर बात करे बारे बेसी नहीं सोचे पारत। यह रकम बिना पढ़ा लिखा हेले लोग अपन देश करते हैं कोनो योगदान नहीं दे पार्थिक। पढ़ा लिखा प्रति जागरूक है समस्या कर हौला है पारे बेसी भावे बेटी छुआ के पढ़ाना, एकटा पूरा परिवार के पढ़ा लिखा करना कर समान है कि यह रकम लोक जागृति आने कर दरकार आहे। आज विज्ञान कर युग आर हमर समाज नाना रकम कर सामाजिक कुरुति अंधविश्वास महान भरल है। एक बाटे तो लोग आधुनिक देखाए कर चेष्टा करत मंतुक, दूसरा बाटे अंधविश्वास रूढ़िवादी कुप्रथा जैसन डाइन भूत मड़ी मसान दहेज प्रथा कर बोलबाला है। हमरे के ई कुप्रथा लेके निजात हेक दरकार है, तबे हमर देश कर विकास हे पारे। नाटक रैली और हेने तेने करी के लोगे मध्य इगला कर बारे देखाए दरकार आहे, तबे हमर देश आगे बढ़ते। आज कर युग महान पर्यावरण प्रदूषण आरो एकटा समस्या है कि पर्यावरण प्रदूषण कर मतलब हेले अपन आसपास और पानी महान गंदगी नवा जिनिस बनते आहे। उद्योग और रसायन कर चलते हवा पानी महान गंदगी फैली जाए, ताकर तेहें पर्यावरण महान संतुलन नी बने। बड़े बड़े शहर नगर बनते जाइला, लोग एक दूसरा लेग आगू बढ़े कर चलन करते हैं, कंपटीशन है। भले उत्पादन और रोजगार बढ़ल आहे मंतुक हाँबर आसपास महान गंदगी बढ़ते जाइला, जेटा एकटा विकराल समस्या बनी लागल आहे। इटा के दूर करते हैं लोक जागृति आने के दरकार है। बड़े शहर कर बीचो बीच सड़क कर दियो बाटे और खाली जमीन महान गाछ लगाए इस समस्या ला दूर है पारे। पंचायत नगर निगम आर एनजीओ आज निजे चेष्टा महान सड़क महान कूड़ा कचरा और गंदा चीज नहीं फेंके चाहिए। गंदा बीज के गाढ़ा महान राखी के गंदा पानी और निकासी कर व्यवस्था होना चाहिए। गंदगी कम है पर्यावरण को समस्या करहल आहे पारे। शिक्षा मान जागरूकता आनले पर्यावरण को समस्या कर हल है पारे। एकर मतलब शुरू कर पढ़ाई लिखा यार विश्वविद्यालय कर शिक्षा मान पर्यावरण प्रदूषण कर हानि कर शिक्षा देवे दरकार आहे। आरो ऐसन नाना प्रकार कर समस्या है जाकर हल जागृति और समाज कर।
1: तो हमरे कुर्माली वार्ता सुन ली, जागरूकता से है देश का विकास संभव है। बतात रहे डॉक्टर राजा राम महतो।
2: और संध्या में निकले संगे हमारी दुनिया कार्यक्रम कर बेरा यह जग सिरा थे तो कहे खोजिला कि रवरे मन अपन स्वास्थ्य कर बढ़िया से ख्याल रखू, खाए पिए के ऊपर बढ़िया ध्यान दो, एखन काम दिन कर आवत है ने।
1: हाँ हाँ, संगे संगे बताए देवीला कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लाल कर।
2: तो रवर मनक रेडियो संगी करण भाई और
1: संध्या बहन के विदा देव।
2: जोहार।
0: महान पढ़ा लिखा एक अनिवार्य है कि जेटा 6 साल ले

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16-18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने देश की प्रगति के लिए बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, नाथवाणी की जीत पर आश्वस्त। पेसा नियमावली को लेकर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाकर जनजातीय समुदाय को अधिकार और स्वशासन से जोड़ा जाएगा। रामगढ़ के अरगड्डा क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के दौरान हुआ बड़ा हादसा, गैस रिसाव के कारण हुई 4 लोगों की मौत। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने दी दस्तक, 19 जून तक बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी। और झारखंड प्रीमियर लीग में कोयलांचल सुपर किंग्स ने रांची टाइटंस को 64 रनों से हराया। छोटा नागपुर रॉयल्स और संथाल स्ट्राइकर्स के बीच मुकाबला जारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने देश की निरंतर प्रगति की कामना की। पूजा के बाद पत्रकारों से बातचीत में संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्रियों में शामिल हैं और उनके नेतृत्व में भारत विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है।
5: दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी, जिनके 12 साल पूरे हुए हैं, जिन्होंने देश की तकदीर और तस्वीर बदली, आज उनके दीर्घायु के लिए, ताकि देश और शक्तिशाली बने, देश आत्मनिर्भर बने, इसी ये आज बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आए हैं, बाबा से आशीर्वाद मांगने आए हैं।
4: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपनी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन के साथ रांची जिले के तमाड़ स्थित प्रसिद्ध मां देवड़ी मंदिर पहुंचे। उन्होंने 16 भुजी मां देवड़ी की विधिवत पूजा अर्चना कर राज्यवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत हमारी पहचान है तथा मां देवड़ी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। सरायकेला खरसावां के ग्राम प्रधान महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने रांची में ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात कर राज्य में पेसा नियमावली लागू करने पर आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने पेसा नियमावली को लेकर लोगों के बीच फैली भ्रांतियों को दूर करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पेसा का मूल उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को संवैधानिक अधिकार प्रदान करना और आदिवासी परंपराओं को सशक्त बनाना है। रामगढ़ जिले के अरड्डा क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के दौरान हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 4 युवक अवैध रूप से कोयला निकालने के लिए खदान में गए थे, जहां ऑक्सीजन की कमी या गैस रिसाव के कारण वे अंदर ही फंस गए। सूचना मिलने पर कुजू पुलिस और नई सराय माइंस रेस्क्यू टीम ने बचाव अभियान चलाया और सभी को बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें रामगढ़ सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। आगामी 15 जून को देश के सभी हवाई अड्डों पर यात्री सुविधा दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एयरपोर्ट निदेशक विनोद कुमार ने बताया कि यात्रियों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा तथा परिसर में रंगोली सजाई जाएगी। इसके अलावा पौध वितरण, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच, वृक्षारोपण और झारखंड की संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे।
6: 15 जून को हम भारत के सभी एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा दिवस मना रहे हैं और इस यात्री सुविधा दिवस को मनाने का जो कारण है, उनकी सुविधाओं को बढ़ाना, उनके यात्रा को सुगम बनाना, सुरक्षित बनाना, और जो भी हमारे यात्री इस एयरपोर्ट से यात्रा कर रहे हैं या करते हैं, उनको उस दिन एक विशेष दिन का अनुभव हो।
4: रक्तदाता दिवस के अवसर पर कल झारखंड के सभी जिलों और प्रखंडों में रक्तदान महाअभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत रक्तदान शिविर, जागरूकता कार्यक्रम, शपथ ग्रहण समारोह और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी उपायुक्तों को व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है, मानवता की एक बूंद रक्तदान करें, जीवन बचाएं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना कार्य में सिमडेगा जिले ने 100% सफलता हासिल की है। CMMS पोर्टल पर 9 जून तक प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार जिलों में यह कार्य पूरी तरह संपन्न हो चुका है। उपायुक्त कंचन सिंह ने कहा कि पदाधिकारियों और कर्मियों के बेहतर टीम वर्क के कारण कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद यह कार्य समय से पहले पूरा किया जा सका।
7: 100% हाउस लिस्टिंग है वो कर लिया है और समय के पहले ही कर लिया है, तो इसी के रिकॉग्निशन में एक प्रशस्ति पत्र हम लोगों को दिया गया है और हमें उम्मीद है कि इसी तरह से हमारे अधिकारी और कर्मी आगे भी काम करते रहेंगे। और भारत की जनगणना का एक महत्वपूर्ण कार्य है, उसमें हम सिमडेगा जिले को त्रुटि रहित ढंग से और बढ़िया तरीके से हम सिमडेगा जिले में ये काम कर पाएंगे।
4: धनबाद में पठन पाठन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जिले में 10 मॉडर्न स्मार्ट लाइब्रेरी और एक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। यह घोषणा उपायुक्त आदित्य रंजन ने सिम्फर ऑडिटोरियम में आयोजित पुस्तकालय से समाज तक एक पहल कार्यक्रम में दी।
8: सभी बच्चों को बताया गया कि लाइब्रेरी का क्या इम्पोर्टेंस है, हमारा स्टेट लाइब्रेरी बहुत अच्छा चल रहा है। साथ ही साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट में 10 लाइब्रेरी हम लोग ट्राई कर रहे हैं बनाने का। कोशिश करेंगे कि सभी लाइब्रेरी 24 घंटे चले और बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले पढ़ाई का, और वैसे भी धनबाद के बच्चों का रिजल्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा रहता है, आने वाले समय में वो संख्या और बढ़े।
4: दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में ट्रैक मरम्मत कार्य के कारण 14 जून तक कई मेमू ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इस कारण चाकुलिया टाटानगर, टाटानगर बड़बिल, बड़बिल टाटानगर और टाटानगर चाकुलिया मेमू ट्रेनों को विभिन्न तिथियों में रद्द किया गया है। मौसम। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन इसका प्रभाव अभी सीमित रूप से देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 19 जून तक राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड प्रीमियर लीग 2026 में आज खेले गए सातवें मुकाबले में कोयलांचल सुपर किंग्स ने रांची टाइटंस को 64 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोयलांचल सुपर किंग्स ने निर्धारित ओवरों में मजबूत स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में रांची टाइटंस लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। वहीं टूर्नामेंट का आठवां मुकाबला रांची में छोटा नागपुर रॉयल्स और संथाल स्ट्राइकर्स के बीच खेला जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने देश की प्रगति के लिए बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, नाथवानी की जीत पर आश्वस्त। पेसा नियमावली को लेकर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाकर जनजातीय समुदाय को अधिकार और स्वशासन से जोड़ा जाएगा। रामगढ़ के अरगड्डा क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के दौरान हुआ बड़ा हादसा, गैस रिसाव के कारण हुई 4 लोगों की मौत। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने दी दस्तक, 19 जून तक बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी। और झारखंड प्रीमियर लीग में कोयलांचल सुपर किंग्स ने रांची टाइटंस को 64 रन से हराया, छोटा नागपुर रॉयल्स और संथाल स्ट्राइकर्स के बीच मुकाबला जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
9: प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गुमला संवाददाता।
1: धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत गुमला जिला में 5 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इस संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि
2: धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना अभियान के तहत हमारे जिले में 5 योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 2 विद्यालयों में, एक हमारा प्राइमरी स्कूल है मिडिल स्कूल चौरापाट, अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका विद्यालय चौरापाट एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय डोकापाट, ये दोनों विद्यालयों में 6 अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण और दोनों विद्यालयों में 50 बेड का छात्रावास निर्माण का योजना स्वीकृत है।
1: इस वर्ष मानसून के कमजोर होने की संभावना है, ऐसे में कम बारिश एवं कम समय में किसानों को धान सहित अन्य फसलों को लगाने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी ने गुमला जिले के किसानों से अपील की है।
3: हमारे यहाँ इस बार इन दिनों का इम्पैक्ट है, इस वजह से हम लोग आकस्मिक योजना भी बनाए हुए हैं विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए। इस संदर्भ में हम लोगों ने जिला स्तरीय एक कार्यशाला भी किया है और विभिन्न प्रखंडों में भी हम लोगों ने कार्यशाला किया है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि इस आकस्मिक समय में हम लोग ऐसे धान के बीजों का चुनाव करें जो एक तो कम अवधि की हो और साथ में जो हमारे जमीन की प्रकृति है, जो टार जमीन है, उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें विविधता लाने की। अदर देन धान हम लोग वैसे फसलों का चुनाव करें, जैसे हमारे उड़द हो गया, मूंग हो गया, हमारे मसूर के दाल हो गए, अरहर के दाल हो गए, इन सब के लिए जिला में हम लोगों को लक्ष्य भी दिया गया है। जैसे उड़द में हम लोगों को 600 क्विंटल का लक्ष्य दिया गया है और उड़द में 490 क्विंटल का और मूंग में 90 क्विंटल का। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इन सभी फसलों का आप चुनाव करिए, साथ में मड़वा का भी खेती को अधिक लगा सकते हैं। मड़वा की खेती में आप लोगों को हम लोग इंसेंटिव के तौर पर 3,000 प्रति एकड़ की दर से आपको प्रोत्साहन राशि भी दे रहे हैं। कोदो की भी आप खेती कर सकते हैं, गुंदली कर सकते हैं, माइनर मिलेट्स भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहिएगा तो मक्का भी हम लोग इस बार मंगा रहे हैं, वो बिसा फसल बीज विनिमय योजना अंतर्गत विभिन्न FPOs लैंप्स में आप लोगों को इनके बीज उपलब्ध होंगे। साथ में आप लोगों को 50% अनुदान पर हम लोगों ने ऐसे बीज की डिमांड किया है जो आप लोगों के लिए सुविधाजनक हो।
1: PM जनमन ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गुमला जिला में अति पिछड़े इलाकों में ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में काफी खुशी है।
4: माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि हम लोग काफी खुश हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये सड़क जल्द से जल्द बने और ये काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बन रहा है, जिससे कि पहले होता क्या था कि आदिम जनजाति समुदाय के लोग यहाँ तक जाने के लिए काफी पैदल जाना पड़ता था, कभी पगडंडी का रास्ता हुआ कर। इसे बनने से क्या है कि आवागमन का सुविधा भी हो जाएगा और समय पर लोग अपने कामों से बाहर भी जा सकते हैं।
1: बहरहाल गुमला जिला में भारत सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतारी जा रही है, जिससे आने वाले समय में जिलेवासियों को इसका लाभ निश्चित रूप से

0: मिलने वाला है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला।
1: अभी आप सुन रहे थे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: अभी आप सुन रहे थे हो भाषा में लोकगीत। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार।
1: ई आकाशवाणी रांची है। अब्रोरम राकेश कुमार मिश्रा से नागपुरी में हफ्तावार समाचार सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का इतिहास में सबकर से बगरा समय तक सेवा करे वाला निर्वाचित प्रधानमंत्री बन जा है। श्री मोदी 1 अगस्त 4399 दिन कर कार्यकाल पूरा कर पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड के पीछे छोड़ दे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एगो सोशल मीडिया पोस्ट में कई हैं कि पिछला 12 बरिस में सरकार महिला बनकर नेतृत्व वाला विकास के प्राथमिकता दे हैं। वो बता लें कि स्वयं सहायता समूह बनकर मदद से महिला मन आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भेवत हैं।
2: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल,
3: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया, हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
2: महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों की तेजी से सुनवाई हो, दोषियों को तेजी से सजा हो,
3: 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर लाखों मुस्लिम बहनों का जीवन तबाह होने से बचाया है।
1: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कर 10 बरिस पूरा भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून 2016 की योजना कर शुरुआत कर रहे हैं, जेकर तहत हर महीना कर 9 तारीख के गर्भवती महिला मन के मुफ्त स्वास्थ्य सेवा मन देवल जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर अध्यक्षता में नई दिल्ली में 11 जून के नीति आयोग कर 11वां गवर्निंग काउंसिल कर बैठक भेलक, जेकर में प्रधानमंत्री कहलें कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत कर लक्ष्य बटले बढ़त है, ऐसन में केंद्र और राज्य सरकार मन कर जिम्मेदारी और बढ़ जाएला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नीति आयोग कर बैठक में झारखंड के मैन्युफैक्चरिंग हब और नॉलेज इकोनॉमिक कर रूप में विकसित करे कर संकल्प दोहरा लें। उस शिक्षा स्वास्थ्य कौशल विकास कृषि खेल और डिजिटल गवर्नेंस कर क्षेत्र में केंद्र से मदद मांग लें। महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा कर पुण्यतिथि में 9 जून के झारखंड संगे देश भर में उनके श्रद्धांजलि देवल गलक। ई मौका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहलें कि उनकर गोटा जीवन जनजातीय समुदाय का आत्मसम्मान संस्कृति और अधिकार मन कर रक्षा ले समर्पित रहे। केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे जमशेदपुर में NH 33 फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण कार्य कर निरीक्षण कर लें। उकर बादे मंत्री कहलें कि ई परियोजना 2027 तक पूरा भेज, जेकर से मानगोवासी मन के जाम से बड़ राहत मिली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार झारखंड राज्य सूचना आयोग में 4 नवा सूचना आयुक्त मानकर नियुक्ति कर प्रस्ताव के मंजूरी दे दे है। इकर तहत अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिवपूजन पाठक के नवा सूचना आयुक्त नियुक्त करल जा है। राज्य में आधार नेटवर्क के मजबूत करे ले 8 नवा आधार सेवा केंद्र जल्दी शुरू भे। ई केंद्र हजारीबाग, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, गढ़वा, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसवा में खुली। एखन राज्य कर 6 गो शहर में ई सेवा चले लाई घे। राज्य में 18 जून के भय वाला राज्यसभा चुनाव के लेके राजनीतिक सरगर्मी तेज भेजा है। 2 सीट मन ले भेवती चुनाव में झामुमो कर बैद्यनाथ राम, कांग्रेस कर प्रणव झा और भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी मैदान में है। बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़ल महिला किसान मन बटले उपजाल 13 क्विंटल से बगरा अम्बा सिमडेगा जिला से सीधा यूनाइटेड किंगडम भेजल गेलक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सोशल मीडिया कर जरिए महिला किसान मन कर ई ऐतिहासिक उपलब्धि कर सराहना कर रहे। JPSC बटले आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा ले रांची जिला प्रशासन सोभे तैयारी मन पूरा कर ले है। ये परीक्षा काल रांची कर 5 केंद्र मन में बिहाने 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित भे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून के भेवे वाला NEET UG पुनर्परीक्षा में परीक्षा कर समय 15 मिनट बढ़ाए दे है। अब परीक्षार्थी मन के प्रश्न पत्र हल करे के लिए 195 मिनट कर समय मिली। पश्चिम बंगाल सिविल सेवा परीक्षा कर परीक्षार्थी मन और यात्री मन कर भीड़ के देख के रेलवे आज से रांची हावड़ा रांची परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाते। ट्रेन आज रात 9:30 बजे रांची से खुल के बिहाने 6:30 बजे हावड़ा पहुंची। हुए घूरेक में ई कैल राती हावड़ा से खुली। राज्य में मानसून संताल परगना का डहरे दस्तक दे दे है, जेकर चलते मौसम विभाग राज्य कर 9 जिला मन में बगरा पानी आवे कर ऑरेंज अलर्ट जारी कर है। कोल्हान और संथाल क्षेत्र मन में इकर असर बगरा देखल जाते। रांची में झारखंड T20 क्रिकेट लीग टूर्नामेंट में राइज कर बेस्ट टीम मन और खिलाड़ी अपन प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। ई मैच के देखे के लिए बड़ संख्या में देखवैया मन स्टेडियम पहुंचाता है। रांची कर उभरत महिला क्रिकेटर पलक कर चयन भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में भेजा है। रांची कर रहे वाला पलक के उनकर आक्रामक बल्लेबाजी ले जानल जाएला। इकर संगे आकाशवाणी रांची से नागपुरी में हफ्तावार समाचार सिरालक जोहार।
4: ईद आकाशवाणी रांची तेले अनिल कुमार कस्ते कुड़ुखनु हफ्ता खबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारतीय इतिहास नु उर्मरती बग्गे समय गोटी सेवा चीउटी निर्वाचित प्रधानमंत्री बनचस। सह मोदी लगातार 4,399 उल्ला लगातार कार्यकाल पूरा नर पंडित जवाहरलाल नेहरू से ही रिकॉर्ड डन होहा अम्बियस। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उनटा सोशल मीडिया पोस्ट नो आनियस की पिछले 12 वर्ष नो सरकार महिला नेतृत्व विकास नन प्राथमिकता चिच्चा और स्वयं सहायता समूही मदद ती महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर मना लगनर।
2: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल,
3: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया, हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
2: महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों की तेजी से सुनवाई हो, दोषियों को तेजी से सजा हो,
3: 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर लाखों मुस्लिम बहनों का जीवन तबाह होने से बचाया है।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ही 10 वर्ष पूरा मंजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून 2016 ई योजना ही शुरुआत नंजकाचस। अंगे नम हर महीना 9 तारीख उल्ला गर्भवती महिला के मूत प्रसव स्वच्छ सेवा चीतरा लगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से अगुवाई नु नई दिल्ली नु 11 जून उला नीति आयोग ही गर्मी गवर्निंग काउंसिलिंग ही बैठकी मंचा। बैठकी नु आनियस का जैसे से भारत विकसित भारत ही लक्ष्य तरा मुंधवारे बना लगी, इन्ने नु केंद्र और राज्य सरकारी समक जिम्मेदारी और बढ़ रही। प्रधानमंत्री श्री मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन नीति आयोग बैठक नु झारखंड नन मैन्युफैक्चरिंग हब और नॉलेज इकोनॉमी रूप नु विकसित नन्ना ही संकल्प नन धुरा चस। आज शिक्षा स्वास्थ्य कौशल विकास कृषि खेल और डिजिटल गवर्नेंस पहटानु केंद्र ती मदद ने चस। महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा से पुण्यतिथि 9 जून उल्ला झारखंड संगम देश भर नो आशी श्रद्धांजलि अर्पित मंजा। ये मौका नो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आनियस की आशी गोटा जीवन जनजाति समुदाय के आत्मसम्मान संस्कृति और अधिकार ही रक्षा के समर्पित रचा। केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे जमशेदपुर नो ENH 33 फ्लाई ओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण नलक ही निरीक्षण नंजस और आनियस का ई परियोजना 2027 गोटी नो पूरा मनोकालो ई तुक मानगो वासिर के जामती रहा थकरो। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार झारखंड राज्य आयोग नो 4 पुना सूचना आयुक्त के नियुक्ति पत्र मंजूरी चिचस। इनो अनुज कुमार सिन्हा तनुज खत्री अमूल्य नीरज खलको और शिवपूजन पाठक सिंह पुनः सूचना आयुक्त नियुक्त नंजस। राजनो आधार नेटवर्क नर बढ़ियर कम आगे 8 पुना आधार सेवा केंद्र चाड़ेम ओरे मनो। इधि ही केंद्र हजारीबाग दुमका गोड्डा साहिबगंज गढ़वा प्लामो पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसवानो खुलरो। वर्तमान नो राज्य नो 6 मुख्य शहर नो सेवा जारी रही। राजनो 18 जून उल्ला मने राज्यसभा चुनाव नन होर राजनीतिक सरगर्मी तेज मंचगिरी। 2 सीट के त्रिकोणीय मुकाबला नो झामुंती बैद्यनाथ राम कांग्रेस ती प्रणव झा और भाजपा समर्पित निर्दलीय प्रत्याशी परमिल नाथवानी मैदान नु रनर। बिरसा हरित ग्राम योजना ती जोड़ का महिला बिका किसान तरती उत्पादित 13 क्विंटल ती बग्गी टठा सिमडेगा जिलन ती सीधे यूनाइटेड किंगडम तैतारा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सोशल मीडिया जरिए महिला किसानर ही ऐतिहासिक उपलब्धि सराहना नंजस नेला झारखंड लोक सेवा आयोग तरती आयोजित झारखंड पत्रता परीक्षा रांची नो 5 केंद्रनो पैरी 10 बजे ती दोपहर 1 बजे गोटी आयोजित मनो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून उल्ला मन्ने नीट यूजी परीक्षण हो और परीक्षा ही अवधि 15 मिनट बढ़ावा करी अक्कू परीक्षार्थी के प्रश्न पत्र हल ननागे कुल 195 मिनट बेड़ा हकरो पश्चिम बंगाल सिविल सेवा सुरक्षा।

0: ᱟᱥᱴᱨᱮᱠᱤᱱ ᱠᱟᱡᱤ ᱠᱮᱫᱟᱪᱤ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱡᱟᱱ ᱜᱮᱞ ᱵᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱱᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮ ᱦᱚᱵᱟ ᱚᱛᱟᱱ ᱩᱵᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱟᱭᱟᱨ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱛᱮᱫᱟ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱠᱤᱱ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱠᱮᱫᱟᱪᱤ ᱥᱚᱭᱮᱱ ᱥᱚᱦᱟᱭᱛᱟ ᱥᱟᱢᱩᱦ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱮᱸᱜᱟᱛᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱴᱟᱠᱟ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱦᱚᱨᱟᱛᱮ ᱟᱯᱟᱱ ᱵᱷᱚᱨᱥᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱛᱤᱸᱜᱩᱱ ᱫᱟᱲᱮ ᱛᱮᱱᱟ
1: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल
2: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया
1: महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों की तेजी से सुनवाई हो दोषियों को तेजी से सजा हो
2: 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर लाखों मुस्लिम बहनों का जीवन तबाह होने से बचाया है
0: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान रे गेल सिरमा पूरा जना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकिन 9 जून 2016 हुलंग न्याय योजना किन एटे पुनला नेयरा होराते जनाव चांडू रे 9 तारीख की हुलंग हंबल होड़मो कान कुड़ीहोन को बेगार खर्चा ते फार्चियो सीधा सांते स्वास्थ्य सुसार को ओमोतना उमिगरंगान मरंगान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा तकिन पुण्यतिथि 9 जून हुलंग झारखंड लोते गोटा दिसुम रे अकिन के माइन साम जोआर किन ओम गोड़ोम जना ने दिपली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकिन किन काजी केदाची अकिन जिदान भाईर आदिवासी गोट को मेनते अपना माइन सासांकर ओड़ो हक हकियत को बंचाव मेनते किन दाने गिडिन जना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तकिन नीति आयोग रे दुनुब रे झारखंड के मैन्युफैक्चरिंग हब और नॉलेज इकोनॉमी लेकाते उनबार मेंते केटे मोने रे जगार किन जगार रुवर्तेदा आकिन शिक्षा स्वास्थ्य कौशल विकास कृषि इनुंग और डिजिटल गवर्नेंस रे क्षेत्र रे केंद्र सागाते देंगा किन आसेतेदा केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे तकिन जमशेदपुर रे NH-33 फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर बाबाई कामी किन लेल बेड़ा किदा लेल तायम तिकिन काजी किदा ची नया परियोजना 2027 संते पूरा हुआ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार तकिन झारखंड राज्य सूचना आयोग रे उपनीय नवा सूचना आयुक्त को नियुक्ति काजी जोगाओ के मंजूरी किन ओम किदा नया रे अनुज कुमार सिन्हा तनुज खत्री अमूल्य नीरज खलको ओड़ो शिवपूजन पाठक तको नवा सूचना आयुक्त को बाईजना राइज रे आधार नेटवर्क के केटे बाईमेन ते इरलिए नवा आधार सुसार ओड़ा को सेकड़ा गे एटेगुआ नया ओड़ा को हजारीबाग दुमका गोड्डा साहेबगंज गढ़वा पलामू पश्चिम सिंहभूम ओड़ो सरायकेला खरसवा रे खोला हुआ ना राइज रे तुरिया शहर को रे नया सेवा एटेगा करना राइज रे 18 जून हुलंग होबा और राज्यसभा चुनाव दलाजोला रे राजनीति लोलो को रकबतना 12 सीट मेंते होबा ओता नया त्रिकोणीय मुकाबला रे झारखंड मुक्ति मोर्चा रेन वैद्यनाथ राम कांग्रेस रेन प्रणव झा ओडो भाजपा गा देंगाते निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी तिंगुआ कना राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून हुलंग होबा नेट यूजी रे होबा रुआड़ो परीक्षा दल जो लमारंग फैसला आगुतान लो परीक्षा रा समय 15 मिनट सांगिते दाय ना दो परीक्षा ओमान को प्रश्न हाल में ते सामजमा 1 साय आपी हिसी 3 मिनट समय नामुआ झारखंड लोक सेवा आयोग सागाते होबा ओतन झारखंड पात्रता परीक्षा में रांची जिला प्रशासन सागाते सोबेन सांपुर को होबा जना नया परीक्षा गापा रांची रे मोड़िया केंद्र कोरेसिता 10 बजे ते तिकिन 1 बजे सांते होबा हुआ राज्य रे मानसून संतल परगना होराते बोलो एटे जना नया राते मौसम विभाग राज्य रे आरिया जिला कोरे होबा गामागारंग रा ऑरेंज अलर्ट रे उदुप तेदा कोल्हान और संथाल क्षेत्र को रे नेयारा असर लेल नमोतना रांची रेन लेल रकबो तन कुड़ीहोन क्रिकेटर पलक आ सनाला भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट गोट रे होबाकना पलक काजी के दाची दिसुम मेंते क्रिकेट इनुंग आयगा अब आसनंग तैकिना रांची रे झारखंड T20 क्रिकेट लीग रे रोमांचक मुकाबला होबा ओतना टूर्नामेंट रे राइज रेन बुगिन टीम को ओड़ो इनुंग एटे तात इनुंग हरिया को अपन इनुंग रा पेड़े को लेल रिके जेदा नियलो तेगे मेदा ठौरी रे खबर को चबा लेना जोआर
3: निया आकाशवाणी रांची तने ना मिया ट्रे खबर हो हयमते लाल सिंह बुए पाई तिकिंग सिविल मुचायते बु आयुमिया मुल्क दोन नरेंद्र मोदी तिकिंग भारत दिसुम रिया हितासारे सबिकोय ते जिलिंग समय जोकारेन दिसुम सेवातन प्रधानमंत्री किंग बैजने हिरले मोदी तिकिंग नोइले जोंग रे उपुन 1000 अपे सो पुन हिसी गेल रिया दिन रिया पनाईटी पुरैया

0: ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱯᱚᱱᱰᱤᱛ ᱡᱚᱣᱟᱦᱚᱨᱞᱟᱞ ᱱᱮᱦᱨᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱥᱟᱢ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱩᱞᱠᱩ ᱫᱚ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱢᱤᱫ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱳᱥᱴ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱪᱤ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱭᱟᱱ ᱜᱮᱞᱵᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱢᱩᱫᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱱᱚᱡᱚᱨᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱸᱰᱚᱜ ᱠᱤᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱪᱤ ᱥᱚᱦᱮ ᱥᱟᱦᱮᱛᱟ ᱥᱟᱢᱩᱞ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱮᱸᱜᱟᱛᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱨᱛᱷᱤᱠ ᱨᱩᱯ ᱛᱮ ᱱᱤᱡᱚᱨ ᱵᱚᱨᱥᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮᱨᱥᱟ ᱦᱚᱵᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟ
1: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल
2: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया
1: महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों की तेजी से सुनवाई हो दोषियों को तेजी से सजा हो
2: 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर लाखों मुस्लिम बहनों का जीवन तबाह होने से बचाया है
0: ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱩᱨᱚᱠᱥᱤᱛ ᱢᱟᱛᱨᱤᱛᱣᱚ ᱚᱵᱷᱤᱭᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮᱞ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱭᱮᱱᱟ ᱢᱩᱞᱠ ᱫᱚ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱛᱤᱠᱤᱱ 9 ᱡᱩᱱ 2016 ᱨᱮ ᱱᱮᱱ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱱᱮᱴᱮ ᱠᱤᱱ ᱨᱤᱠᱟᱹᱞᱮᱫ ᱛᱟᱭᱱᱮ ᱟᱨ ᱚᱱᱮᱱ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱨ ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ 9 ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱷ ᱢᱩᱥᱤᱱ ᱵᱟᱨᱡᱤ ᱠᱤᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱛᱮ ᱯᱨᱟᱥᱟᱣ ᱟᱨ ᱥᱟᱥᱛᱷ ᱥᱮᱵᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱩᱞᱠ ᱫᱚ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱜᱩᱥᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱱᱟᱢᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮ 11 ᱡᱩᱱ ᱢᱩᱥᱤᱱ ᱱᱤᱛᱤ ᱟᱭᱳᱜᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ 11ᱟᱱ ᱜᱚᱵᱷᱚᱨᱱᱤᱝ ᱠᱟᱣᱩᱱᱥᱤᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱱᱩᱵ ᱦᱩᱵᱟᱭᱟᱱ ᱛᱟᱭᱱᱮ ᱫᱩᱱᱩᱵ ᱨᱮ ᱢᱩᱞᱠ ᱫᱩᱣᱟᱹᱱ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱪᱮ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱦᱩᱵᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱠᱪ ᱛᱮᱨᱥᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱟᱨ ᱨᱟᱡᱽ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱤᱭᱚ ᱠᱩᱢᱩᱴᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱤᱢᱮᱫᱟᱨᱤ ᱟᱸᱰᱚᱜᱮ ᱵᱟᱲᱟᱣᱱᱟ ᱢᱩᱬ ᱫᱩᱣᱟᱹᱱ ᱦᱮᱢᱚᱱᱛ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱱᱤᱛᱤ ᱟᱭᱳᱜᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱱᱩᱵ ᱨᱮ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱠᱮ ᱢᱮᱱᱩᱯᱷᱮᱠᱪᱟᱨᱤᱝ ᱦᱟᱵᱽ ᱟᱨ ᱱᱚᱞᱮᱡᱽ ᱤᱠᱳᱱᱚᱢᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱠᱥᱤᱛ ᱦᱩᱵᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱴᱤᱝ ᱵᱚᱪᱚᱱ ᱠᱤᱱ ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱥᱟᱥᱛᱷ ᱠᱟᱣᱥᱚᱞ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱠᱷᱮᱞ ᱟᱨ ᱰᱤᱡᱤᱴᱟᱞ ᱜᱚᱵᱷᱚᱨᱱᱮᱱᱥ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱴᱟᱭᱤᱴ ᱠᱚᱨᱮᱭᱚ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱛᱟᱭᱛᱮ ᱫᱮᱸᱜᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱥᱤᱭᱟ ᱠᱮᱫᱮ ᱢᱟᱭᱱᱮᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱟᱢᱩᱞ ᱵᱤᱭᱟᱨ ᱵᱚᱭᱟᱨ ᱵᱷᱟᱜᱚᱣᱟᱱ ᱵᱤᱨᱥᱟ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱜᱚᱱᱚᱡ ᱫᱤᱞᱮᱝ 9 ᱡᱩᱱ ᱢᱩᱥᱤᱱ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱥᱩᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱴᱟᱨᱮ ᱥᱨᱚᱫᱷᱟᱧᱡᱟᱞᱤ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱮᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱨᱮ ᱢᱩᱞᱠ ᱫᱚ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱪᱤ ᱟᱹᱠᱤᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱯᱩᱨᱱᱚ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱨᱮ ᱡᱚᱱᱡᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱩᱫᱟᱭ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱛᱢᱟᱥᱚᱢᱢᱟᱱ ᱥᱟᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱟᱨ ᱮᱠᱛᱤᱭᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱠᱟ ᱪᱟᱠᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱤᱱ ᱥᱚᱢᱯᱟᱣ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱱᱮ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱠᱚᱭᱞᱟ ᱟᱨ ᱠᱷᱟᱱ ᱨᱟᱡᱽ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱚᱛᱤᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱫᱩᱵᱮ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱡᱟᱢᱥᱮᱫᱽᱯᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ NH-33 ᱯᱞᱟᱭ ᱳᱵᱟᱨ ᱟᱨ ᱮᱞᱤᱵᱷᱮᱴᱮᱰ ᱠᱚᱨᱤᱰᱚᱨ ᱵᱟᱱᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱱᱟᱭᱴᱤ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱱᱮᱞ ᱦᱚᱱᱚᱨ ᱠᱮᱱ ᱛᱟᱭᱱᱮ ᱟᱸᱰᱚᱜ ᱠᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱪᱤᱱᱮᱱ ᱯᱚᱨᱤᱭᱳᱡᱚᱱᱟ 2027 ᱡᱚᱠᱷᱟᱨᱮ ᱯᱚᱠᱛᱟᱱᱟ ᱟᱸᱰᱚᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱲ ᱵᱟᱲᱟᱭᱛᱮ ᱯᱩᱱᱩᱪᱤᱫ ᱦᱚᱵᱟᱱᱟ ᱨᱟᱡᱽᱯᱟᱞ ᱥᱚᱱᱛᱳᱥ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱜᱟᱝᱣᱟᱨ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱯᱮᱭᱟᱛᱮ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱟᱡᱽ ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ ᱟᱭᱳᱜᱽ ᱨᱮᱱ ᱩᱯᱱᱤᱭᱚ ᱱᱟᱢᱟ ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ ᱟᱭᱩᱠᱛ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱤᱭᱩᱠᱛᱤ ᱯᱨᱚᱥᱛᱟᱵᱽ ᱨᱮ ᱢᱚᱱᱡᱩᱨᱤ ᱠᱤᱱ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱮᱱᱨᱮ ᱚᱱᱩᱡᱽ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱥᱤᱱᱦᱟ ᱛᱚᱱᱩᱡᱽ ᱠᱷᱟᱛᱨᱤ ᱟᱢᱩᱞ ᱱᱤᱨᱚᱡᱽ ᱠᱷᱟᱞᱠᱚ ᱟᱨ ᱥᱤᱵᱽ ᱯᱩᱡᱚᱱ ᱯᱟᱴᱷᱚᱠ ᱮᱢᱟᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ ᱟᱭᱩᱠᱛ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱩᱠᱛᱤ ᱡᱮᱱᱮ ᱨᱟᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱱᱮᱴᱣᱟᱨᱠ ᱠᱚᱨᱮ ᱤᱴᱤᱝ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱨᱤᱞ ᱱᱟᱢᱟ ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱥᱮᱵᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱠᱲᱟ ᱮᱱᱮᱴᱮ ᱦᱚᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱨᱮ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱚ ᱦᱟᱡᱟᱨᱤᱵᱟᱜᱽ ᱫᱩᱢᱠᱟ ᱜᱳᱰᱰᱟ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽᱜᱚᱸᱡᱽ ᱜᱟᱲᱣᱟ ᱯᱟᱞᱟᱢᱩ ᱯᱟᱥᱪᱤᱢ ᱥᱤᱝᱵᱷᱩᱢ ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱟᱭᱠᱮᱞᱟ ᱠᱷᱟᱨᱥᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱭᱱᱮ ᱨᱟᱡᱽ ᱨᱮ 18 ᱡᱩᱱ ᱢᱩᱥᱤᱱ ᱦᱩᱵᱟᱱ ᱨᱟᱡᱽᱥᱚᱵᱷᱟ ᱪᱩᱱᱟᱣ ᱱᱟᱛᱮ ᱨᱟᱡᱽᱱᱤᱛᱤᱠ ᱢᱟᱥᱞᱟ ᱜᱚᱨᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱥᱤᱴ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱩᱵᱟᱱ ᱱᱮᱱ ᱛᱨᱤᱠᱳᱱᱤᱭᱟ ᱵᱟᱫᱟᱵᱟᱫᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱢᱩᱢᱩ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱵᱚᱭᱫᱚᱱᱟᱛᱷ ᱨᱟᱢ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱯᱨᱚᱱᱚᱵᱽ ᱡᱷᱟ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱡᱯᱟ ᱥᱚᱢᱚᱨᱯᱤᱛ ᱱᱤᱨᱫᱚᱞᱤᱭᱚ ᱯᱨᱚᱛᱭᱟᱥᱤ ᱯᱚᱨᱤᱢᱚᱞ ᱱᱟᱛᱣᱟᱱᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱢᱚᱭᱫᱟᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱟᱲᱟᱫᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱨᱥᱟ ᱦᱟᱨᱤᱛ ᱜᱨᱟᱢ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱩᱲᱤ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱟᱭᱞᱟ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱟᱠᱟᱱ 13 ᱠᱩᱭᱱᱴᱟᱞᱮᱛ ᱨᱚ ᱞᱟᱱᱟ ᱩᱞᱤ ᱥᱤᱢᱰᱤᱜᱟ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱫᱟ ᱭᱩᱱᱟᱭᱴᱮᱰ ᱠᱤᱝᱰᱚᱢ ᱛᱮ ᱠᱷᱩᱞᱡᱮᱱᱮ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱯᱤᱭᱩᱥ ᱜᱳᱭᱟᱞ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱤᱱ ᱱᱤᱛᱤᱨᱠᱮᱫ ᱛᱟᱭᱱᱮ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱞᱳᱠ ᱥᱮᱵᱟ ᱟᱭᱳᱜᱽ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱦᱩᱵᱟᱱ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱯᱟᱛᱨᱚᱛᱟ ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱥᱟᱹᱵᱤᱱ ᱛᱟᱭᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱯᱚᱠᱛᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱱ ᱯᱚᱨᱤᱪᱚᱭ ᱜᱟᱯᱟ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ 5 ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱩᱵᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱮᱛᱟᱜ 10 ᱵᱟᱡᱮ ᱛᱮ 1 ᱵᱟᱡᱮ ᱡᱚᱠᱷᱟᱨᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱮᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱞᱚᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱛᱮᱢᱤᱭᱚᱴ ᱨᱮ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱱᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ
3: ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱟᱯᱮ ᱰᱩᱢᱱᱤᱢᱟᱹᱭ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱚᱠᱛᱮ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱮᱱᱟᱭ ᱢᱟᱱ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱞᱮᱛᱟᱲ 3,399 ᱢᱟᱦᱟ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱚᱸᱰᱤᱛ ᱡᱚᱣᱟᱦᱚᱨᱞᱟᱞ ᱱᱮᱦᱨᱩᱣᱟᱜ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱦᱚᱸᱭ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱳᱥᱴ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱ 12 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱹᱭᱩᱨᱤᱡ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱨᱮ ᱯᱩᱭᱞᱩᱭ ᱟᱸᱜᱚᱪ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱥᱚᱭᱮᱢ ᱥᱟᱦᱟᱭᱛᱟ ᱥᱟᱢᱩᱦ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚᱛᱮ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ

0: तिंगु केटेजो कनाको
1: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल,
2: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया, हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
1: महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों की तेजी से सुनवाई हो, दोषियों को तेजी से सजा हो,
2: 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर लाखों मुस्लिम बहनों का जीवन तबाह होने से बचाया है।
0: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान गेल सेरमा पुरवेना मारा मंत्री नरेंद्र मोदी दो 9 जून 2026 16 हिलो नुआ योजना एहब लेत ताहेकना जहां इदीते जतो महीना 9 तारीख हिलो हमाल होड़मो आयो होड़ को फ्री ते को रान कोआ। सिरा मंत्री हेमंत सोरेन दो नीति आयोग दुपड़ूब रे झारखंड मैन्युफैक्चरिंग हब आर नॉलेज इकोनॉमी लेकाते लहांती लगित किरई दोहड़ा केदा। गोमके दो सेचेत चिस्ट कौशल विकास चास खिलोंड आर डिजिटल गवर्नेंस रे केंद्र ठेन खोन गोड़ोई कोया केदा। न्यूमान फुर्गलिये भगवान बिरसा मुंडवा गुर महारे 9 जून हिलो झारखंड साव गोटा दिसम रे मन आंजले को चाला दिया। नुआ ताक रे मारंग मंत्री नरेंद्र मोदी दो लय केदा जे उनिया सनाम जीवन आदिवासी गता का सम्मान लाक्चार आर अईदरी को रुखिये लगित ए सपरत लेना। केंद्रीय कोयला और खान पुनत मंत्री सतीश चंद्र दुबे दो जमशेदपुर रे NH-33 फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर बनाव कामी को नेल केदा। नेल तायो मंत्री दो लय केदा जे नोवा परियोजना 2027 साबित ते पुरा जहां रे मानगोरिन होड़ को जाम खोन मारंग दुहे को न्यामा। पुनोत गोमके संतोष कुमार गंगवार दो झारखंड राज्य सूचना आयुक्ता नियुक्ति प्रस्ताव रे हेसरी एम केदाय। नुआ लेकाते अनुज कुमार सिन्हा तनुज खत्री अमूल्य नीरज खलको और शिव पूजन पाठक दो नवा सूचना आयुक्त को बचाव के कोआ। पुनोत रे आधार नेटवर्क केटेज लगित 8 नवा आधार सेवा केंद्र उसरा को एहबा। नुआ केंद्र हजारीबाग दुमका गोड्डा साहेबगंज कड़वा पलामू पश्चिम सिंहभूम और सरेकेला खरसवा रे खुलुआ। नहा दो पुनोत रे तुरुई मुड़ुत शहर रे नुआ चालू कना। पुनोत रे 18 जून हिलो हुयु राज्यसभा चुनाव इदी कते राजआरी हुलो चमका बढ़तीना। बारिया सीट लगित हुयु नुआ पे नका हेपराव रे झामुमु रिन बैद्यनाथ राम कांग्रेस रिन प्रणव झा आर भाजपा खोन गोड़ोवाकर निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी डाही रे मेना कोआ। बिरसा हरित ग्राम योजना खोन सेलेद तिरलो चासी खोन चासो खान गेल पे क्विंटल खोन बढ़ती उल सिमडेगा होनोत खोन सोझे यूनाइटेड किंगडम को भेजा केदा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दो सोशल मीडिया होते ते तिरलो चासी कुआ नुआ नगामिये कमी सराहवा कदाय। झारखंड लोक सेवा आयोग पाहटा खोन कोरा कान झारखंड पत्रता बिनिड लगी रांची जिला प्रशासन दो सनाम लेकान सत सपड़ावे सत केदा। नुआ बिनिड गपा रांची रिया मोड़े केंद्र रे सेता 10 बजे खोन 1 बजे हबीज हुयुआ। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी दो 21 जून हिलो हुयु नीट यूजी दोहड़ाते बिनिड इडी कते मारंग फैसला हातावते बिनिड ओक्ते गेल मोड़े मिनट बढ़ती केदा को। नित पटुआ को कुकली सकाम सोल्हे लगी 160 मिनट ओक्तो को न्यामा। पश्चिम बंगाल सिविल सेवा बिनिड रे पटुआ और जत्री को भीड़ नेल अते रेलवे तेहेन खोन रांची हावड़ा रांची बिनिड स्पेशल ट्रेने चलावेदा। ट्रेन तेहेन निद 9:30 बजे रांची खोन खुलव कते सेता 6:30 बजे हावड़ा तीयगा। ओंडेगे आपोस दो गपा निद हावड़ा खोन खुलआ। पुनोत रे मानसून दो संताल परगना लेकाते सेटेरेना जहां इदीते मौसम विभाग दो पुनोत रे आरे होनोत रे बढ़ती दा रे ऑरेंज अलर्ट को जारी केदा। कोल्हान और संताल परगना रे नुआ इदीकते ओसोंग नेलोक कना। रांची रे झारखंड T20 क्रिकेट लीग रमोजन हेपराव लेताड़कना। टूर्नामेंट रे पुनोत रे भगी दोल और राकाब कान खिलोंडिये अकवा हुनर लेकाते भगी को उदुगेदा। नुआ T20 लीग नेनेल लगीर अडी बढ़ती होड स्टेडियम को सेटरोक कना। नुआ साथे के आकाशवाणी रांची खोन हप्ता की खबर मुचेदेना चोहार।
3: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं समाचार ध्वनि चित्र।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र।

0: इस अंक में रक्षा अलंकरण समारोह 2026 भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि और केंद्र में वर्तमान सरकार के 12 वर्षों का कार्यकाल। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में 8 जून को रक्षा अलंकरण समारोह 2026 के पहले चरण का आयोजन किया गया। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के कर्मियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए प्रतिष्ठित कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए। झारखंड के बोकारो के सीआरपीएफ जवान सद्दाम हुसैन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों शौर्य चक्र मिलने से पूरे राज्य में जश्न का माहौल है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में 2 आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में अदम्य साहस दिखाया था।
1: जम्मू एवं कश्मीर में भारी हथियारों से युक्त 2 विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना मिली। सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन तय योजना अनुसार तलाशी अभियान का हिस्सा थे और उन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति में लक्ष्य क्षेत्र में रणनैतिक रूप से मोर्चा संभाला और अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल से युक्त आतंकवादियों की अंधाधुंध गोलीबारी के बावजूद असाधारण धैर्य के साथ अपने मोर्चे पे डटे रहे और बड़ी सटीकता के साथ अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर राउंड फायर करके लक्ष्य को बर्बाद किया। इस असाधारण वीरता एवं अदम्य साहस के लिए सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन।
0: सीआरपीएफ जवान सद्दाम हुसैन ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि
2: ये हम बांदीपुरा 3rd बटालियन स्पेशल टास्क टीम 20 फोर्सेस से जो सीआरपीएफ की बांदीपुरा में स्थित है, हमारे सीओ साहब श्री बिमल पवार सर ने उन्हें सूचना मिली कि फॉरेन के कुछ टेररिस्ट जो कि हमारे एरिया के अंदर घुस चुके थे और उसी नुकसान से बचने के लिए जैसे हमें जानकारी मिली हम अपने टीम के साथ वहां गए और जाने के बाद वो ऑपरेशन को सक्सेस किए और 25 मीटर की दूरी में ही आतंकवादी को मार के गिराए। आतंकवादी जो था वो बाहर का था, एफटी था, फॉरेन टेररिस्ट। पहले वो हमारे साथ गोलीबारी काफी देर तक चली, कम से कम 2 दिन की लड़ाई चली और उसको फिर मार गिराया गया। इसमें हमारी बहुत सारी टीमें थी जिसमें मार्कोस, पैरा, आरआर, आर्मी, असम राइफल। मकसद तो उनका नुकसान पहुंचाना होता है, वो बाहर के टेररिस्ट होते हैं जिन्हें हम आतंकवादी बोलते हैं, वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के फिराक से अंदर घुसे थे जिसको हमने 5 नवंबर 2024 को न्यूट्रलाइज किया। मेरे दिमाग में जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर अच्छे फिराक से आए तो ठीक है, अगर गलत फिराक से आए तो हमें मारने का यही है। चूटावारी केटसन जो कि बांदीपुरा में पड़ता है।
0: झारखंड समेत देश भर में 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जल, वन और भूमि की रक्षा के लिए विदेशी शासन के विरुद्ध अदम्य साहस से संघर्ष किया। उनकी गाथा आज भी देशवासियों को राष्ट्रभक्ति, साहस और त्याग की प्रेरणा देती है। गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से श्री शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का स्वर बुलंद किया। उन्होंने आदिवासी समाज को अपने अधिकारों और विरासत की रक्षा के लिए संगठित किया तथा जल, जंगल और जमीन के संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप दिया।
3: भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों के लिए तो अपनी मूल संस्कृति के उद्धारक बने ही, परंतु 25 साल के अल्प जीवन के अंदर भी इन्होंने देश भर के अनेक लोगों के लिए जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन किसके लिए होना चाहिए और जीवन किस ध्येय को समर्पित होना चाहिए, इसको बहुत स्पष्ट रूप से अपने कर्मों से व्याख्यायित किया। जब पूरे देश पर और 2/3 दुनिया पर अंग्रेजों का शासन था, उस वक्त मक्कमता के साथ धर्मांतरण के खिलाफ खड़ा होने की वीरता बालक बिरसा मुंडा ने बताई और आगे चलकर ये दृढ़ता और वीरता

0: एक नायक के रूप में परिवर्तित, जनजातीय समाज में ढेर सारी जागरूकता लाए, मदिरा पान का विरोध किया, जमींदारों की शोषण व्यवस्था का विरोध किया और ब्रिटिश राज का भी विरोध करने का काम किया। सामाजिक सुधार के लिए ये देश का आदिवासी समाज हमेशा के लिए भगवान बिरसा मुंडा का आभारी रहे।
1: इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का त्याग, संघर्ष और जनजातीय समाज के उत्थान के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है।
2: हमारे राज्य की विशेषता है कि आजादी के लिए हमारे लोगों ने जो संघर्ष किए हैं, पूरे देश में सारे देशवासी याद करते हैं और निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा को जिस प्रकार से देश भर में, देश के बाहर भी लोग याद करते हैं, वो अपने आप में एक अविस्मरणीय है कि वास्तव में इनका इतिहास पढ़ने समझ में आता है कि इनका संघर्ष कैसा रहा और किस प्रकार से हमारे देश को आजादी दिलाने में इस राज्य का कितना महत्वपूर्ण योगदान था, ये हम सबकी समझ में आता है। तो मैं निश्चित रूप से इन पर वो अपने नतमस्तक करते हुए अपने पूरी सद्भावना इनके प्रति अर्पित करते हैं।
1: वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लगभग 125 साल बीत जाने के बाद भी आज भी आदिवासी और अन्य वर्गों के बीच भगवान बिरसा मुंडा को याद किया जाना बड़ी बात है।
3: आप सब लोगों को पता है ये भगवान बिरसा मुंडा जी का आज पुण्यतिथि है। लगभग 125 साल का एक लंबा वक्त में भी आज पूरे देश में आदिवासी समुदायों के बीच, हर वर्गों के बीच आज इनको याद किया जा रहा है। निश्चित रूप से इतने लंबे वर्षों तक किसी को सम्मान देना, उनको याद रखना, उस व्यक्ति में जरूर कुछ ऐसे गुण रहे हैं, ऐसा उन्होंने इतिहास रचा है जिनको लोग सदियों से याद करते आ रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। हर साल की भांति इस बार भी हम लोग यहाँ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, उनके इस समाधि स्थल पर सिर झुकाने आए हैं, आगे भी आएंगे।
1: स्वतंत्र भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार बधाइयां मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निरंतर सेवा, समर्पण और सुशासन का ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सम्मान प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री का विश्वास है कि आत्मनिर्भर हुए बिना भारत विकसित नहीं बन सकता।
4: प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र प्रथम के भाव से बड़े निर्णय लिए, ऐसे निर्णय जो आज वर्षों की तपस्या के बाद आज सच्चाई बन चुके हैं, जैसे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, GST लागू करना, वन रैंक वन पेंशन लागू करना, गरीबों को 10% आरक्षण देना, परमाणु क्षेत्र में रिफॉर्म के लिए शांति कानून, माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को भी एक नया आयाम दिया है, नई बुलंदी दी है, आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कदम उठाने का श्रेय उनके नेतृत्व को ही जाता है।
1: इधर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल को सेवा और सुशासन का स्वर्णिम काल बताया।
5: माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है और लगातार ये एक आंदोलन बन चुका है और इसके माध्यम से पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आह्वान किया गया है, निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ी संख्या में हम देखें तो हम पर्यावरण को संरक्षण और संवर्धन करने का कार्य किया जा रहा है। चार आयाम, युवा, महिला, किसान और गरीब, इन चार आयामों में प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में सरकार के माध्यम से योजना बनाना, उस योजना का लाभ उन तक पहुंचाना और इसका सीधा सीधा असर हम देख सकते हैं। वन स्टॉप सेंटर पूरे देश के स्तर पर लगभग 973 केंद्र जिसके माध्यम से जो संकट में

0: फंसी हमारी महिलाएं हैं, तो उनके लिए हम सेवा प्रदान करते हैं। और लगभग 14.5 लाख से ज़्यादा महिलाएं अब तक उन वन स्टॉप सेंटर में पहुंचकर, चाहे उन्हें जिस तरह की सुविधाएं, चाहे लीगल उन्हें मदद की आवश्यकता हो, या फिर उन्हें स्वास्थ्य हेल्थ की हो, या फिर पुलिस, हर तरह की सुविधाएं उन्हें हम प्रदान करते हैं। और उसके साथ महिला हेल्पलाइन 181, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम ERSS 112 में जो एकीकृत हुआ है, तो वो लगभग 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ये चल रहा है, और उसके माध्यम से भी हमें 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को उसमें हमने लाभ दिया है।
1: वहीं नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री के तौर पर 4,399 दिन के कार्यकाल के लिए श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों और विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी साझा की।
2: जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद इन 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, इससे स्पष्ट होता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो 12 वर्षों का कालखंड रहा, ये कोई सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा का, वो साधना का, तपस्या का वो एक प्रकार से कालखंड रहा। जहां जम्मू कश्मीर में 370 लगा हुआ था उसको समाप्त करना, जम्मू कश्मीर की धरती में जो आतंकवाद जिस प्रकार से वहां हिंसा होती थी, 3 तलाक जैसे वो जो कुप्रथा थी उसको उन्होंने समाप्त किया। आप सबके ध्यान में है अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के मंदिर है, वो भी बन करके तैयार हो, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। आज देश के अंदर में 22 राज्यों पर NDA की सरकार, जो कोई साधारण बात नहीं है। देश की भूभाग का जिसको कहते हैं 78% हिस्सा में आज BJP या NDA गठबंधन की सरकार।
1: गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान देश की विकास यात्रा की सराहना की। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना, डिजिटल तकनीक, सामाजिक कल्याण, आर्थिक सशक्तिकरण और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है।
3: 12 साल में मैं झारखण्ड की बात करूँगी, झारखण्ड में जितना काम 12 साल में हुआ भूतों न भविष्य थे, पिछले 70 साल में कोई काम ऐसा नहीं हुआ। और मैं उसका उदाहरण दे सकता हूँ कि मैं गोड्डा जहाँ से सांसद हूँ, 75 साल बाद वहाँ के लोगों ने रेल देखा। दुमका जो कि उपराजधानी है, 68 साल वहाँ के बाद वहाँ के लोगों ने रेल देखा। आज यदि झारखंड का दूसरा एयरपोर्ट कहीं है तो वो देवघर में है। यदि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, इतने वर्षों के बाद मिला, तो वो झारखंड को मिला और वो देवघर में है।
1: और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि 7:45 प्रसारित किया जाता है। संपादक महविश रहमान, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता कामिनी।

5 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026, रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा हित में जारी।
4: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम में ये पहला गीत।

अभी आप सुन रहे थे पहेली फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत, शब्द रचना गुलजार के थे। संगीतबद्ध किया था MM करीम ने, आवाज़ें थीं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की। इसी के साथ फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम वर्तमान समय सरकार के 12 वर्ष पूर्ण।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
2: नमस्कार। 10 जून 2026 एक ऐसी तारीख बन गई है जो कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगी और लोकतंत्र जिसकी बात सिर्फ बात नहीं होती बल्कि भारत उस पर गर्वान्वित महसूस करता है उस इतिहास में भी लिखी जाएगी। नरेंद्र मोदी एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निर्वाचित एक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया है और इसके अलावा एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के 12 साल भी कम्प्लीट हुए हैं। तो अब विकसित भारत की बहुत बात होती है लेकिन एक ऐसा मंत्रालय जिसकी बात गांव गांव तक पहुंचती है और सिर्फ बात नहीं क्या वाकई में गांव के लोग उस बात को महसूस भी करते हैं। जी हाँ, हर घर जल और नल ये एक ऐसी योजना रही जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा 12 साल में रही और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी। बहुत बहुत स्वागत है पाटिल जी आपका।
3: नमस्कार।
2: दो कीर्तिमान स्थापित हुए 12 साल सरकार के और दूसरा प्रधानमंत्री ने वो रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी चर्चा अब तक सबसे ज्यादा होती थी जवाहरलाल नेहरू की। दोनों को आप किस तरह देखते हैं?
3: देखो, 12 साल कंटिन्यू काम करना, लोगों की जो आस है जो अपेक्षा है वो पूरी करना और बार बार जीतना और ऐसे मुश्किल परिस्थिति में जीतना ये अपने आप में बड़ी बात होती है। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी वो सब लड़ते थे इलेक्शन, उस टाइम कांग्रेस के सामने कोई विरोध पक्ष नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके सामने तो बहुत ही पावरफुल लोग, सीनियर लोग, कांग्रेस खुद लड़ती है, उसके अंदर अपने बलबूते पे लड़कर वो आना और 12 साल कंटिन्यू सेवा करना और करते रहना, यही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और उसको हम देखेंगे कि 12 साल में क्या किया उन्होंने, लोगों की सभी अपेक्षा पूर्ण करने में उत्तीर्ण हुए। एक लाइन में अगर कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं कि काम तो उसके अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत काम उन्होंने किए, देश को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी समाज के लिए कोई न कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है।
2: पाटिल जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे क्योंकि आपके साथ तो उनका एक जो साथ और अपनापन रहा वो सिर्फ अभी 12 साल का नहीं, वो तो कितने समय पुराना हो गया गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आपने क्या देखा कि इतना ज्यादा हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसीदे इन 12 सालों में भी, जब से सरकार बनी अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी यही बात होती रही और सरकार ने 12 साल कंप्लीट कर लिया?
3: देखिए, हमारा कहते ना अंगूर खट्टे हैं, तो इन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली मगर जो उनकी लालसा थी कि सरकार को गिरा देंगे, सरकार बना लेंगे, मुझे लगता है शायद वो लोग जो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है क्योंकि पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है और इसके लिए खड़ा है कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूर्ण करने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व उनमें उसमें दिखता है और ये मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो सपने नहीं दिखाते। अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए या कोई भी चीज के लिए। उन्होंने डिमांड कोई करे उसके पहले उसकी आवश्यकता को समझ के समय के पहले उसको पूरा कर दिया। ये आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है।
2: मोदी जी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा नहीं होती थी जितना विपक्ष उनकी चर्चा करता था और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं को किया जाता है।
3: देखिए, उनको लगता था कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा खानदानी अधिकार है, ऐसा समझते थे। आज एक आम आदमी में से एक सामान्य आदमी अपने बलबूते पर यहां तक पहुंचता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अभी किसी से मैं बात कर रहा था कि 12 साल तो रिकॉर्ड हुआ, 12 साल बेमिसाल तो रही है, आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
2: तो यही तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास ही है जिसने यहां तक उनको पहुंचाया है?
3: नहीं, आत्मविश्वास तो उसकी तो प्राथमिकता है, मगर उसके साथ प्लानिंग है, वो जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको ध्यान देते हैं, उसको कैसे उनको मदद की जाए उसके लिए सोचते हैं, उनकी योजना बनाते हैं। टारगेट अगर महिला के लिए तो महिला की योजना बनेगी, किसान के लिए तो किसान के लिए योजना बनेगी। हमारे देश में हम कहते हैं कि ये तो खेती प्रधान देश है, मगर आज तक कभी किसानों के लिए योजना नहीं बनी थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहली बार बनाई। यानी ऐसे कई आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने मदद की है।
2: पाटिल जी, अब हर घर जल और नल, ये योजना मतलब ये विडंबना ही है इस देश की कि आजादी के बाद इतनी सारी चीजों पर बात होता था लेकिन तब भी महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर लाना पड़ता था। मैंने कई गांवों में जाकर देखा उत्तर प्रदेश के कि महिलाएं इतना खुश होती थी। ये जो विजन है, और क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित है, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि ये विजन अब तक क्यों नहीं आ पाया किसी के दिमाग में और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है?
3: किसी को गरीब लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया है। हमारे यहाँ देश में घरों में टॉयलेट नहीं था, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, अंधेरी रात में उनके ऊपर कई बार असॉल्ट भी हुए। कई लोगों को ये जो टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर घरों में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदत बदल दी, 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए जाती थी, उसी तरह यहाँ भी टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी। तो जिस तरह से टॉयलेट का काम किया उसी तरह पानी का भी काम किया। हर घर में नल से जल, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज तक 70 साल में कांग्रेस के समय में कभी भी किसी के घर में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो एक मोहल्ले में एक हैंडपंप डाल देते थे तो उनको लगता था हमने पानी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो हर घर में और वो भी हर पर हेड 55 लीटर पानी उसको मिले, अच्छा पानी, क्वालिटी का पानी मिले, पूरी क्वांटिटी में मिले, इसकी व्यवस्था करने की बात थी। 16 करोड़ घरों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पानी पहुंचा दिया। 3 करोड़ घरों में अभी जो पानी पहुंचाना है उसकी डेट भी तय कर ली कि दिसंबर 28 तक ये भी पूरा काम पूरा करना है। तो इससे हुआ क्या, जो 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें मुक्ति मिली। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज पानी लाने जाने में उनके जाते थे, आज वो अपने फैमिली के दे सकते हैं, उसको आर्थिक उपार्जन में उसको खर्च कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात हुई। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इसके कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जो पानी के कारण जो गंदा पानी आता था उसके कारण जो बीमारी आती थी उसके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते थे वो 8.4 लाख करोड़ रुपया वो लोगों का बचा। तो यानी एक योजना उसके पीछे कितने लोगों का फायदा हो, महिलाओं को पानी की मुश्किल दूर हो गई, टॉयलेट बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक योजना के साथ महिलाओं को, युवाओं को, सबके ध्यान में रखकर ये योजना माननीय मोदी साहब भी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो काम मोदी साहब ने किया है।
2: मुझे याद है पाटिल जी, लास्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने वो जल संचय के बारे में बताया, तब आप दिल्ली आए थे और आप बता रहे थे कि पीएम ने किस तरह से कहा कि ये जल संचय वाला जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे हमें पहुंचाना है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है।
3: देखिए, जल संचय से जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्मभूमि से मातृभूमि में जल संचय के लिए सहयोग करना चाहिए। ये दो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को कही थी, एक वर्चुअल मीटिंग में कही थी। हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था, हमने अचीव किया, 27,50,000 पर हम पहुंच गए। हमने नया टारगेट लिया 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट लिया और हम 1,55,00,000 तक पहुंच गए। इसमें मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने, बाकी सभी जो स्ट्रक्चर बने वो छोटे से लेके बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बने वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए। और इसमें छोटे छोटे भी है तो बड़े भी है। एक कच्छ में एक एंकर स्विच वाला जो है, उनका नाम है दामजी भाई एंकर, शायद वो अभी नहीं रहे, उनकी फैमिली है, वो बॉम्बे रहते हैं मगर वो लोग कच्छ के हैं। कच्छ में एक भूखी नदी है, वो भूखी नदी में पानी नहीं है, उसको सफाई करनी थी, उसको रिसिल्टिंग करना था, उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च किए। एक व्यक्ति अपने गांव में नदी के लिए इतना पैसा खर्च सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के बाद ही हो सकता है। एक ऐसा आदमी है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे देश तकलीफ में है, हम एक टाइम का खाना छोड़ दो, लोगों ने खाना छोड़ दिया। मोदी साहब ने कोरोना के समय में कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना पॉजिटिव सोच है और सिर्फ सोच नहीं उसको अमलवारी भी करवाने की ताकत रखते हैं। तो ये जो उनका काम करने की जो सिस्टम है वो आपको देखें, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाए, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले नर्मदा से साबरमती और साबरमती से कच्छ तक जितनी नदियां तालाब सरोवर आए वो सबको पानी से भर दिया और पहला रिवर लिंकिंग था। केन बेतवा दूसरा रहा मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में। 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2030 में वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने पीकेसी की एक नया योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू की, वो भी शायद 1,00,000 करोड़ से बड़ी योजना है। राजस्थान की जो पानी की किल्लत है वो आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी साहब काम कर रहे हैं तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और जो जल संचय की जो विशेषता ये है कि हम डैम बनाते हैं, डैम से पानी कैनाल में ले जाते हैं, तो कैनाल जहां तक पहुंचती है उसके अगल बगल के किसानों को फायदा होता है, मगर जो दूर दरार है, गांव दूर है, खेत दूर है, उसको पानी नहीं मिलता। जल संचय से हर गांव में जो बह के जाने वाला पानी खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से दरिया में चला जाता है, हमको उनको वहीं रोक देते हैं, खड्डे में ही बोर करके 100 फुट का उसमें पानी उतार देते हैं, खेत में भी 4x6 का खड्डा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं, एक बारिश में 4 से 5 लाख लीटर पानी वो खेत में नीचे जमीन में उतर जाता है। इसके कारण जो किसानों के कुएं हैं, बोर है, उसमें पानी ऊपर आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जल की क्वालिटी सुधर गई। गांव में भी ऐसा हुआ, गांव के भी जो कुएं थे या बोर थे उसमें भी पानी का स्तर बढ़ गया, क्वालिटी सुधर गई। तो ये जल संचय अपने आप में बहुत बड़ा काम, इसके लिए कि हम हर जगह पर डैम बनाकर पानी नहीं ले जाएंगे तो ये जल संचय की वजह से हमको वहां की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी।
2: आपको लगता है ये जो इसी तरह के विषय हैं, क्योंकि पुरुष तो बाहर नौकरी करने चले जाते थे या काम करने के लिए, महिलाओं को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, चाहे वो टॉयलेट वाली बात हो या अगर घर में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं है, यही जो एक विमेन वोट जो बना कि पहले जो महिलाएं बीजेपी के खिलाफ भी वोट करती थी, सारी की सारी महिलाएं अब मोदी मोदी करने लगी हैं, आपको लगता है यही वो वजह है?
3: एक वजह नहीं है, महिलाओं देखती है कि पहला आपको बताऊं, मैं गुजरात में जब आए थे उस टाइम में पावर नहीं आता था, महिलाओं को रसोई जल्दी बनानी पड़ती थी, जल्दी खाना खा के जल्दी बर्तन करके उनको वो बैठ जाती थी और फिर उसके पास बहुत टाइम था और एंटरटेनमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी साहब ने आकर एक सिंगल फेज अलग से लिया, पूरे गुजरात में सभी घरों में कभी लाइट नहीं गई तो उनकी व्यवस्था हो गई, तो बहनों को जल्दी रसोई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाना खा के फिर फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं रहा, वो देर तक बैठ सकती थी, वो टीवी देख सकती थी, उसको एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बन गया। तो इसके लिए महिलाओं को लगा कि नहीं हमारे लिए चिंता की है, तो उनके जीवन में एक प्रकाश आ गया, ऐसा उनको लगा। आज देश में भी देखेंगे कि देश में अगर कोई भी पुरुष बाहर जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सबको लगता है कि सुरक्षित आ जाए घर में। ये सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की, आतंकवाद को खत्म कर दिया, नक्सलवाद को खत्म कर दिया और जिस तरह से आज महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया, हर सेक्टर में प्रमोट किया, तो उसकी वजह से उनके मन में जो इच्छा थी, जो टैलेंटेड थी मगर उनको मौका नहीं मिलता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने महिलाओं को भी मौका दिया। सबसे पहले गुजरात में उन्होंने इलेक्शनों में वहां जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत में 50% महिलाओं के सीट रिजर्व कर दी, वो पहला इंसिडेंस था। बाद में आप यहाँ देखिए कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए भी 33% महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। महिलाओं को एक विश्वास आता है कि कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी चिंता करती है। आज ये सभी महिलाओं मोदी साहब की चिंता करती है कि उसके विरोधी जो है उनको ठीक रखना, उनको सत्ता से दूर रखना, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
2: आप गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी जी और अब पीएम के तौर पर दोनों देखा आपने, कुछ अंतर आया क्या पहले वाले मोदी जी में और अब वाले मोदी जी में?
3: मैं मानता हूं कि पहले भी मोदी साहब सामान्य जन के लिए काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। वहां उनकी मर्यादा थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री है, इसके लिए उनको एक काम भी उनका बड़ा है, तरीका भी थोड़ा बदल गया है और मगर आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के तौर पे भी जो काम करते थे उसको भी उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया और नई सोच के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने यहाँ पर भी कई योजना बनाई। हम कहेंगे कि अवकाश से लेकर पाताल तक हर जगह पे उन्होंने काम किया। हम चंद्र पर पहुंच गए, जो कभी हमारे लिए सपना था तो उन्होंने कर दिया। आपको सुरक्षित करने के लिए जो फ्लाइट आई उसके अंदर भी महिलाओं को उन्होंने उनकी कमान सौंप दी, उसी तरह उन्होंने जमीन के ऊपर भी जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो भी उन्होंने किए, सबमरीन भी नई नई बनाई और जल को भी सुरक्षित करने का काम, यानी जल सीमा को भी सुरक्षित करने का काम भी उन्होंने कर दिया। आज भारत की ओर देखने का नजरिया लोगों का बदल गया है। आज भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है, पहले तो उनकी कोई दरकार भी नहीं करता था, वो अपमान करते थे, आज वो बात नहीं रही। ये जो जाने वाले लोग थे पहले भी और अभी भी, उनको ये बात समझती वो पूरी वो देखते भी है।
2: गुजरात का कई सारे वहां के किस्से जो हैं मैंने किताबों में पढ़े और कई बार हमने जो मोदी जी के बचपन के दोस्त वगैरह उनके इंटरव्यूज देखे कि मोदी जी एक तो हर किसी को याद रखते हैं नाम से और दूसरा हर बात की बारीकी में डिटेल में जाते हैं, काम के मामले में भी और वैसे भी। तो जब आप वहां पर थे गुजरात में, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर उनको कुछ गलत बता दिया हो तो वो एकदम पकड़ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे तथ्य गलत बोला गया है?
3: वो तो पूरा देश जानता है कि बहुत शार्प है, उनको कोई गलत बता के उन्हें कोई ठग जाए ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती। और उनका जो डिटेलिंग करने का काम है उसके अंदर कोई भी आदमी उनको कोई गलत कुछ बता भी नहीं सकता। और वो जो सुनते सबकी है और करते हैं अपने मन की, क्योंकि उनको अपने आप में भरोसा है, उनका प्लानिंग होता है, बहुत माइक्रो लेवल पे वो प्लानिंग करते हैं और परिणाम लाके देते हैं। गुजरात में पहली बार महानगर पालिका अगर किसी ने जीती थी, अहमदाबाद महानगर पालिका, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जीती थी। तो ये वहीं से उनकी जो शुरुआत हुई थी वहीं से वो जीत के लिए ही उनका जन्म है, जीतते ही जाते हैं, उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और ना कभी देखेंगे।
2: आपने कोई एक चीज जो उनसे सबसे ज्यादा सीखी हो जिसको आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आपने कर रखा हो? बिल्कुल,
3: एक बार 26 जनवरी का दिन था, आवाडांग में उनका कार्यक्रम था और वो जो साफा लगाते हैं तो ये साफा मुझे लेके जाना था और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट। और उन्होंने किसी से बंधवाना शुरू किया, जैसे उन्होंने अभी तो वो रखा ही था, हाथ में ही पकड़ा था और मैं पहुंच गया था। मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे ऐसे लगा कि सीआर ये कैसे चलेगा, मैंने कहा सॉरी सर। उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला, मुझे आज तक भी वो 2 शब्द उनके वो मुझे उसके घाव आज भी दिखते हैं। तो ये उनसे ये सीखा है कि समय पे ही काम होना चाहिए, हमें देर करने की कोई आदत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में भी मेरे हमारी मीटिंग जो होती है मैं डॉट टाइम शुरू करता हूँ, समय पर पूरी करना, जो भी काम है उसको हमें आज करना है तो कल तक छोड़ना ही नहीं, आज ही पूरा करना। मेरे पास कोई भी फाइल आती है मैं सेम डे उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये सब आदत है जो मोदी साहब ने सिखाई है कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और हम सामान्य लोगों को अवेलेबल होने चाहिए। उनसे सीखे हैं, यहाँ कोई भी आके मिल सकता है, हमारे गेट पे किसी को रोकते नहीं है, किसी का नाम तक नहीं पूछते हैं। तो उसको लगता है कि मैं कोई प्रधान के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सब बातें उनसे सीखी है कि लगाव लोगों से बढ़ना चाहिए और उन्हीं के आधार पर जो टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से सीखी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पॉलिटिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी उनसे ही सीखी है, उनका ही अनुकरण करके हम आगे बढ़ते हैं।
2: आपके इस एग्जाम्पल से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने 2 शब्दों में अपनी बात भी रख दी और आपको आज तक वो बात याद भी है। इसका मतलब तो वो बहुत सरल तरीके से अपनी बात बता देते हैं लेकिन छवि उनकी ऐसी बनाई जाती है कि एकदम बहुत दहशत रहती है उनको देख करके।
3: नहीं नहीं, वो तो देखो अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं एक इंसिडेंस आपको और कहना चाहूंगा, 2014 का लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े, काउंटिंग में करीब 10-15 दिन का टाइम था। एक बार उन्होंने वहां के सभी सेक्रेटरी और जो गांधीनगर में है सभी आईएएस अधिकारी और सभी एमपी सबको स्पाउस के साथ बुलाया था, और वहां उन्होंने उनका कॉन्फिडेंट लेवल आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूं। काउंटिंग के पहले 15 दिन पहले कोई व्यक्ति जो कभी दिल्ली नहीं गया वो कहता है कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ और मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे बारे में बहुत सी चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें चलती है, कोई कहता है कि मोदी जी ने किसी अधिकारी को गेट आउट कह दिया, किसी को फाइल फेंक दी, गुस्सा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है और मैंने आज तक कभी किसी भी अधिकारी को गेट आउट नहीं कहा, मैंने कोई भी अधिकारी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कोई भी फाइल कभी अधिकारी को फेंकी नहीं। मुझे अगर गुस्सा आया होगा तो मैंने वो फाइल लेकर साइड में रख दी होगी, इससे ज्यादा मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपके मन में होगा यहाँ सब अधिकारी की पत्नी बैठी है, उनको होगा कि मेरे पति को भी मोदी साहब ने डांटा होगा मगर वो बता नहीं रहे होंगे घर में। पर मैं आपको कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ उसके पहले मुझे एक क्लियर करना था, इसके लिए बताया, मगर वो क्लियर तो किया उन्होंने, मगर जो आत्मविश्वास प्रकट हुआ, कॉन्फिडेंट लेवल जो प्रकट हुआ कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये उनका काम करने का तरीका है।
2: ये तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। लेकिन पाटिल जी, इन 12 सालों में आपने, चलिए हर घर नल और पानी वाला तो आप ही का डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अलावा ऐसा कौन सा माइलस्टोन आपको फैसला लगता है या सरकार की कोई नीति लगती है जो हमेशा मतलब याद रखी जाएगी?
3: वो एक चीज नहीं है। मैंने कहा ना फिर से महिलाओं के लिए हम बात करेंगे, तो वो रोटी जो रसोई करती थी तो लकड़े पर करती थी, धूम्र से मुक्त कर दिया मोदी साहब ने महिलाओं को। और उसके साथ उसका छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसका भी फेफड़ा बचपन से ही वो वीक हो जाता था, तो सिर्फ महिलाओं के लिए बच्चों के लिए भी उसके अंदर काम हो गया, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा आयुष्मान में लोग बीमार पड़ते थे, घर में नहीं बताते थे, उनको लगता था कि बेटे को पता चलेगा, खर्च होगा, बेटे के पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेगा, मकान बेचेगा, खेत बेचेगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कर्जदार बने, और वो जो भी दर्द है उसको छुपा लेते थे। बहुत तकलीफ होती थी तो बाहर जाके खेत में जाकर रो लेते थे और घर में नहीं बताते थे, आंसू लेकर नहीं आते थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ और उनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा मोदी साहब ये योजना से कर रहे हैं। ये भी आपको दिखेगा कि ये भी अपने आप में बहुत बड़ी योजना ये भी बनी है। किसानों के लिए कभी कोई योजना नहीं बनी, उनके लिए भी 6,000 रुपया साल में 3 बार डाल देते।

0: मैं चाहता है और वो युवा कोई निराश ना हो जाए, उसके पहले उसको कोई चांस मिल जाए, तो उसके लिए भी उनकी कोशिश रहती है।
1: ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है हमेशा कि मतलब देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था डिरेल हो चुकी है, तमाम चीजें ऐसी बातें बताने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव को कैसे देखते हो आप?
0: जब पूरे विश्व में सभी जगह युद्ध चल रहा है, एकमात्र हमारा देश है वो भी माननीय मोदी साहब की जो पॉलिटिकल जो सेंस है उनकी, उनकी जो विदेश नीति है उसके कारण हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध है, एक जगह नहीं है, दो देश के बीच में नहीं है, मगर हम बिल्कुल शांति से रहे, हमें कोई भी युद्ध का डर नहीं लग रहा है, हम न्यूज तक नहीं देखना चाहते कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये जो पोजीशन परिस्थिति जो आई है वो तो मोदी साहब की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ है ऐसे समय में, कोरोना के समय में, कोरोना के बाद में, युद्ध के समय में, इतना GDP जो आया है वो खुद ही रिकॉर्ड है। मनमोहन जी तो अर्थशास्त्री थे, उस टाइम तो हम 11वें नंबर पे थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थे, मोदी साहब ने 5वें पर लाई और 3वें पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी उनको कहकर लाए हैं, हमने कहा कि हमने कुछ किया और हो गया, ऐसा नहीं है, पहले से उन्हें कह दिया कि मैं ये नंबर पे देश के अर्थतंत्र को लेके आऊंगा। तो ये व्यवस्था करना तो हर क्षेत्र में, डेवलपमेंट हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, देश का हो, चंद्र पे जाना है, अवकाश में जाना है, हमें फाइटर प्लेन लेने हैं, अच्छी सबमरीन लेनी है, वो भी देश में बनाना है, तो सब काम एक ही आदमी इतनी ताकत के साथ कर रहा है। और ये बैठे बैठे बस उनकी एक ही सोच है कि बस हमें प्रधानमंत्री बना दो। क्यों बना दो, उसका कोई वजह नहीं है उनके पास, उनको खानदानी ये सीट उनकी है ऐसा उनको लगता है। ये चाय वाला कैसे आ गया, ये चाय वाला पूरे देश के लोगों की चाहना लेकर आया है और इसको हटाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।
1: चलते चलते पाटिल साहब, मैं यही जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री को आप सब लोगों ने ग्रीट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दी, इतना रिकॉर्ड पीएम ने बनाया, प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था?
0: नहीं, मोदी साहब ने सबका आभार व्यक्त किया, सबको धन्यवाद दिया।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीआर पाटिल जी, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई इसीलिए बहुत ज्यादा अहम ये बातचीत थी कि मोदी जी के साथ ये अपनापन और जो पल आपने बिताए हैं, बहुत ही कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनके साथ इस तरह से बारीकी और करीबी के साथ में रहे, इसलिए ये बातें शायद कोई और नहीं बता पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर। अब सुनिए मोबीक्विक के संस्थापक विपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपने, उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ भारत की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में जनता ने 2 बार आशीर्वाद मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार का 3रा कार्यकाल चल रहा है। इन 12 साल में हमने कई नीतियां देखी, जमीन पर उतरती हुई नीतियां देखी, सभी के फोकस में, सभी के केंद्र में आम आदमी था और एक ऐसी ही नीति थी डिजिटल इंडिया को लेकर। और जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, नीतियों में क्या कुछ बदलाव संभव है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोबीक्विक के फाउंडर और CEO विपिन प्रीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है विपिन आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी के समय में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें और 12 वर्षों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें तो आपने जिस तरीके से आपका सफर रहा है उसमें आप अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे करते हैं?
4: पहले तो शिशिर जी धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। और मोबीक्विक जो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी करीब 17 साल पहले, उसमें से 12 साल मोदी सरकार के अंदर ये कंपनी खड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सन 2014 में ही मोबीक्विक को सबसे पहली फंडिंग मिली थी और उसके बाद मोबीक्विक ने करीब करीब 2000 करोड़ रुपए पिछले 12 साल में डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर्स से उठाए और बिजनेस बनाया। तब हमारे पास आई थिंक 30 लाख या 40 लाख यूजर थे। आज की डेट में मोबीक्विक प्लेटफॉर्म 18 करोड़ यूजर यूज करते हैं पूरे भारत में। तो इन नंबरों से ही आपको समझ आ जाएगा, इन आंकड़ों से, कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इकोनॉमी है वो किस हद तक उसकी ग्रोथ हुई है। मुझे याद है 12 साल 15 साल पहले जब आप मोबाइल फोन पे कॉल करते थे तो सोचना पड़ता था कि कितने की कॉल पड़ेगी, मैसेज करना है तो कितना पैसा लगेगा। आज के समय

0: में आप नहीं सोचते। आज के समय में अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप बैंक नहीं भागते, आप फटाक से अपना फोन निकालते हैं और यूपीआई से डिजिटल पेमेंट करते हैं। करीब करीब 4 में से 1 भारतीय या 3 में से 1 भारतीय ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स के साथ जुड़ चुका है, जिसमें मोबीक्विक ने एक बहुत बड़ा सफर और बहुत बड़ा योगदान दिया है। बट इन सब के पीछे जो नीतियां हैं जिनसे ये पॉसिबल हुआ है, उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले डिजिटल आइडेंटिटी नहीं होती थी, हम राशन कार्ड लेके घूमते थे। अब आधार जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, पैन जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, मोबाइल फोन के रेट सस्ते हुए हैं, फिर जो यूपीआई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो उससे मोबीक्विक की बिजनेस को बनाने में बहुत बहुत बड़ा हाथ है। उसके बिना मुझे लगता नहीं है ये संभव भी था।
1: तो मतलब 17 साल के आपके सफर में, 12 साल मोदी सरकार के, और इन 12 साल में जो डिजिटल इंडिया का सफर रहा, उसमें काफी हद तक आपके अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली। और आप ही के नहीं, ऐसे कई ऐसे पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एग्रीगेटर की हम लोग बात करें, वो सिस्टम में आए, उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। अगर मैं 3 प्रमुख नीतियों की बात करूं 2014 से लेकर के 2026 के बीच में, वो ऐसी कौन सी 3 बड़ी नीतियां थी जिन्होंने आपके कारोबार को, कहने का मतलब कि डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद की?
0: तो इनमें काफी नीतियां थी, बट सबसे पहला मैं ये मानूंगा कि कोई भी सरकार जब किसी बिजनेस के साथ काम करती है, तो हम जब बिजनेस सरकार से बात करते हैं तो उनकी नीतियों को और उनकी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो 12 साल पहले ही हमें समझ आ गया था कि ये सरकार डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी लेके आएगी और उसको हर एक लेवल पे इम्प्लीमेंट करेगी। एंड आई थिंक वो जो डिजिटल इंडिया की जो एक मुहिम बनी, जिसके अंतर्गत ये सब हुआ कि आधार, पैन, जनधन अकाउंट्स खुले इतने सारे, अभी हर पर्सन के पास, हर इंसान के पास अकाउंट है, तब नहीं थे। तो ये जो नीतियां थी डिजिटल इंडिया के अंडर, जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया इंडिया में, डिजिटल डीपीआई कहते हैं इसे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक एक इंसान अपनी डिजिटल में पहचान नहीं बना सकता, तब तक वो डिजिटल पेमेंट भी नहीं कर सकता और अब डिजिटल लोन भी नहीं ले सकता, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। इन सबको जो साथ में जोड़ा गया है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि इवन बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज तक अचीव नहीं हुए।
1: एक जो बड़ी पहल जिसको हम कहें जैम ट्रिनिटी की, हम लोग बात करें, आपने अभी जनधन की बात की थी, आपने आधार की बात की, आपने मोबाइल का बात किया, और 2015 से हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी किस तरीके से समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजना है उसका फायदा पहुंचाने में मदद की। इस जैम ट्रिनिटी को आप कैसे देखते, क्योंकि एक समय, जैसा आपने खुद कहा, कि एक मोबाइल फोन को लेकर के हम एक बार सोचते जरूर थे, और हमें वो भी दौर याद है जो आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं, जब 16 रुपए का एक कॉल होता था तो लोग कहते थे मिस कॉल मार देना। वो मिस कॉल मार देना आज भी हमारे मोबाइल कल्चर का एक पार्ट है। ये अलग बात है कि अब हम उस मोबाइल पे 16 रुपए की चिंता नहीं करते, बल्कि मिस कॉल मार देना एक बात कहते हैं। ये मिस कॉल मार देने से जनधन, आधार, मोबाइल, ये ट्रिनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं, समाज के आखिरी पायदान पर व्यक्ति जो है उस तक सामाजिक योजनाओं का फायदा पहुंचाने?
0: इसमें सबसे पहले जो मोबाइल की मैंने बात की कि जब इंडिया में 4G आया या 5G आया और नए ऑपरेटर्स आए, जैसे जियो आया या एयरटेल ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इसके ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी का पुश था सरकार की तरफ से कि आपको, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और उसके अंदर डेटा और कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए, और वो हुआ, आप हमने पिछले 10 सालों में देखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया आज की डेट में दुनिया के आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 डेटा कंज्यूमिंग कंट्रीज में है। हम डेटा यूज करने से पहले सोचते भी नहीं है, जबकि यही 10 साल पहले कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले या कोई वीडियो देखने से पहले आप सोचते थे कि इस पे कितना GB डेटा, MB डेटा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बिकॉज इस चीज को हर दर्जे के लोगों तक पहुंचाना, वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा है आधार। तो आधार के ऊपर तो ऐसा है कि डिजिटल आइडेंटिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपका अकाउंट भी नहीं खुलेगा। तो ये उसको पूरा डिजिटाइज करना और उसके प्रोसेसेस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना कि कोई भी पूरे देश में, उस दिन मुझे अपने आधार में कुछ चेंज कराना था मुझे 5 मिनट लगे। मैं एक नियर बाय एक बैंक में एनरोलमेंट सेंटर में गया और मैंने वहां पे अपना ऑथेंटिकेशन किया और मुझे कुछ एड्रेस चेंज कराना था, वो इमीडिएटली वहां पे हो गया। इस तरह की सुविधा हमारे देश में नेशनल लेवल आज तक कभी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिससे आप ये देख सकते हो कि ये आइडेंटिटी है इस पर्सन की और इस आइडेंटिटी के ऊपर आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। हमारा देश अभी भी गांव में बसा है, हालांकि शहरों ने काफी तरक्की की है, बट करीब 30-35% आज भी गांव में है और सेमी अर्बन है। हर इंसान बैंक में जाके कंफर्टेबल नहीं रहता था और बैंक भी जो होते थे, जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो हर एक का अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर किसी की तनख्वाह कम है या उसके अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं तो उसका अकाउंट खोलना मतलब आपको एक लॉस उठाना है। तो उसके ऊपर जो जनधन अकाउंट्स की पॉलिसी बनी, जिसके ऊपर हमारे बैंकों ने काम किया और सबके अकाउंट खोले, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की डेट में मेरा ये मानना है कि 90% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप छोटा बच्चा देखो, आप एक बूढ़ा देखो, कोई रिटायर्ड पर्सन देखो, आप गांव में चले जाओ, आप किसी को भी डिजिटल पेमेंट इसीलिए कर पाते हो क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट।
1: तो एक डिजिटल सिस्टम का एक ये भी फायदा हमें इस स्वरूप में देखें कि जब पहले कहा जाता था कि केंद्र से 1 रुपया चलता था और 15 पैसे लोगों तक पहुंचते थे, आज हम बात करते हैं कि लाभार्थी का जो भी बेनिफिशियरी है उसकी पहचान साबित हो जाती है डिजिटल माध्यम से और डिजिटल माध्यम से ही लेनदेन हो पाता है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेस का जो एक बेहतर इस्तेमाल है, ये डिजिटल माध्यम से और भी बेहतर तरीके से हो पाया। इसका फायदा आप किस तरीके से देखते हैं? गवर्नमेंट की बजटिंग की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, फिस्कल प्लानिंग की बात करें, उसमें उसका योगदान किस तरीके से?
0: देखिए, डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल बिल्कुल साफ होता है और डिजिटल में पेपर का यूज मिनिमम होता है और इसीलिए डिजिटल में लीकेज बहुत कम होता है। वरना हमारे देश में जहां पे इतने गरीब लोग हैं, सरकार हमेशा से उन पे पैसा खर्च करना चाहती थी और खर्चती है भी और 12 साल पहले भी खर्चने की कोशिश करती थी, बट वो उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो इतने स्टेप से जाता था, इतनी लेयर से जाता था कि वो, जैसा कि आप बता रहे हैं, 1 रुपए की जगह 15 पैसे। बट अब जब सरकार ने डीबीटी बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट सबके पास है, तो आपको किसी को गैस की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको बिजली की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको खाने की सब्सिडी देनी है, किसी भी तरह की सब्सिडी देनी है, आपके पास उस इंसान की पूरी डिटेल्स हैं, उनके बैंक अकाउंट हैं, उनकी आइडेंटिटी है, आप डायरेक्टली उनके अकाउंट्स पे एक क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
1: विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रिवोल्यूशन की हम लोग बात करें, उसमें बहुत सारे हो रहे बदलाव पे आपने चर्चा की, आपका आभार, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोबिक्विक के संस्थापक विपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। हम आकाशवाणी के
4: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न, सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेस मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का

0: निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देशभर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉ मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख हबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
1: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अल नीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले तीन चार दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केरल माहे ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने सातवें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने तीन तीन विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला टी20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on the first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. 5 Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. 5-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration, focusing on food security and smart technology in farming. Lieutenant General Dhiraj Seth appointed as country's next army chief. And in cricket, Afghanistan set a target of 195 runs for India in rain-marred first ODI of 3-match series in Dharamshala. Prime Minister Narendra Modi will reach the French city of Nice tonight, marking the beginning of his six-day visit to France and Slovakia. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Nice has filed this report.
4: France occupies a special place in India's strategic vision. As Prime Minister Narendra Modi arrives in Nice tonight at 10:30 p.m., attention is focused on a series of high-level engagements aimed at deepening cooperation across innovation, technology, and strategic sectors. Tomorrow at 2:30 p.m., Prime Minister Modi and President Macron will jointly inaugurate Bharat Innovates, India's flagship deep tech showcase in Europe. More than 120 Indian startups, along with global investors, CEOs and technology leaders, will participate in the event. Prime Minister Modi will also hold bilateral talks with President Macron. Discussions are expected to cover defense, artificial intelligence, space, trade, education and other global challenges. Here in Nice, expectations are high that the visit will inject fresh momentum into one of India's most trusted strategic partnerships. This is Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
3: On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia tomorrow. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini. He will also hold talks with his Slovakian counterpart Robert Fico in Bratislava. Slovak President Peter Pellegrini, in a social media post today, said that Prime Minister Modi's historic visit will open new opportunities for Slovakia-India cooperation. In a social media post, President Pellegrini stated that he is looking forward to welcome Mr. Modi in Bratislava. The Indian community in Bratislava is preparing a unique welcome for Prime Minister Modi during his maiden visit to Slovakia. We have more from our correspondent covering the Prime Minister's Slovakia visit.
5: As Slovakia prepares to host an Indian Prime Minister for the first time, members of the Indian community are making special arrangements to accord a grand welcome. Paintings, cultural programs and dance programs are being planned to mark the historic visit. Indian Ambassador to Slovakia, Apurva Srivastava, says the excitement is clearly visible among the Indian diaspora. Preparations are underway across the community and the national flags of India and Slovakia can be seen in the capital city, Bratislava. The enthusiasm has been further boosted by the significant increase in travel and exchanges between the two countries over the past 5 years. Bratislava's strategic location in Central Europe is also expected to help strengthen tourism links with India. Smithy M. Palluruthi for Akashvani News from Bratislava.
3: After concluding his Slovakia visit, Prime Minister Modi will return to France to take part in the G7 summit in the eastern part of the country in Evian on the 16th and 17th of this month. The White House today said U.S. President Donald Trump will meet Prime Minister Modi on Wednesday during the G7 summit. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. On the final leg, Prime Minister Modi will travel to Paris on the 18th of this month to attend Europe's largest technology and startup event, Viva Tech Summit. Mr. Modi is also expected to attend the 5-day BRICS Agriculture Conference concluded at Indore in Madhya Pradesh today. At the end of the conference, the Indore Declaration was adopted unanimously. The declaration outlines key decisions on food security, farmers' welfare, climate-friendly farming, agricultural trade, and use of smart technology in farming. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan said that BRICS nations represent nearly half the world's population and contribute around 42% of global agricultural output. He said Indore Declaration is not will and shared responsibility of BRICS nations. We have a report.
6: 4 new institutional initiatives were announced at the conference.
7: Institutes will be set up for joint research on natural and regenerative farming, with the Indian Institute of Farming Systems Research playing a key role. The second initiative involves setting up a BRICS digital agriculture network to bring artificial intelligence and digital technology into farming, which will be coordinated by IIT Delhi. The third initiative will establish a global forum to protect farmers' rights related to seeds and to preserve traditional seed varieties. The fourth initiative will set up the BRICS Agri-N network for sharing agricultural inputs and genetic resources among member countries. With Abhinav Goyal's report.
3: Union Home Minister Amit Shah arranged to study the shift in population structure in border districts. Chairing the meeting of the committee, Mr. Shah also asked the panel to visit border areas, metro cities and industrial towns for an assessment of changes because of illegal migration and other unnatural causes. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force crashed at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning during a routine sortie, claiming the lives of five air warriors. The Indian Air Force IAF has expressed grief at the loss of lives. In a social media post, IAF said Squadron Leader Prashant Singh, Flight Lieutenant Shubham Kumar, Sergeant Jitendra Sharma, Agniveer Vayu Kemaram Kumawat and Agniveer Vayu Danish Alam made the supreme sacrifice in the line of duty. The IAF said that a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. Defence Minister Rajnath Singh has also in a social media post, Mr. Singh said their courage and service to the nation will always be remembered with pride and gratitude. He also conveyed his heartfelt condolences to the bereaved families. Hour of grief. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News. To our website, www.newsonair.gov.in, and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. The government has appointed Lieutenant General Dheeraj Seth as the next Chief of Army Staff with effect from the 30th of this month. He is presently serving as the Vice Chief of the Army Staff. The present Chief of the Army Staff, General Upendra Dwivedi, is retiring. Statement that Lieutenant General in December 1986 and has an extensive experience across the operational, strategic, capability development and institutional domains, contributing significantly to the Indian Army's combat effectiveness and long-term transformation over a distinguished military career spanning nearly four decades. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Narendra Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today we focus on the steps taken by the government to strengthen and celebrate the nation's cultural legacy.
1: Over the last 12 years, India's cultural journey has flourished. Government has undertaken numerous initiatives, both nationally and internationally, that have instilled a deep sense of pride in the country's cultural heritage among its people. The making of Kashi Vishwanath Corridor, Mahakal Lok Project, redevelopment of Maa Kamakhya Temple, reconstruction of Juna Somnath of the Modi government. Under the museum grant scheme, the nation's cultural infrastructure has been upgraded by establishing 21 new museums and modernizing 23 existing ones. Over the years, the scheme has emerged as a key support system in Nagaland. Talking to Akashwani News, Mr. Talit Ismail, guide lecturer with the Nagaland's Department of Art and Culture, highlighted the benefits of the
8: and than the Dikstad Gallery. Through the Museum Grant Scheme, the one thing, most impactful thing we can say is it gave us an opportunity to build new infrastructure to preserve our traditions and culture.
1: The cultural function and production grant have also emerged

के दो मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में आज रात नीस पहुंच रहे हैं। वो फ्रांस के और कल भारत इनोवेट्स का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। कि गिरकर तबाह होने से पांच रोजा ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस इंदौर आलामी को इत्तफाक राय से मंजूरी देने के साथ खत्म हो गई, जिसमें गजाई तरकूज की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को मुल्क का अगला फौजी सरदार ने धर्मशाला में तीन मैचों की सीरीज के बारिश से मुतासर पहले बैन अलावी मैच में भारत के लिए 195 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील।

0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक जमहूरिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरे को यूरोप के साथ भारत की शराकतदारी में एक अहम तरीन लम्हा समझा जा रहा है। 2014 के बाद से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यह फ्रांस का 7वां दौरा है। इस साल जनवरी में कलीदी भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदे के बाद से इस बरेआजम का यह उनका पहला दौरा भी है। तरीन और इंतहाई भरोसेमंद जामिया शराकतदारी रखने वालों में रखेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: फ्रांस को भारत के जामी विजन में खसूसी मकाम हासिल है। इस साल के अवैल में सदर मेखवा के भारत के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात के खसूसी आलमी जामी शराकतदारी का दर्जा दिया था, जो कि आलमी हल को एक नई शक्ल देने के लिए उनके मुश्तरक मकसद की अक्कासी करता है। भारतीय मियारी वक्त के मुताबिक आज रात 10:30 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी नीस पहुंचेंगे, जहां आला सतही मसरूफियात के एक सिलसिले पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिसका मकसद इख्तिरा टेक्नोलॉजी जामे शोबों में ताउन को गहरा करना है। कल दोपहर 2:30 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी सदर मेखवा मुश्तरक तौर पर भारत इनोवेंट्स का इफ्तिताह करेंगे, जो यूरोप में भारत की अहम दीप टेक नुमाइश है। आलमी सरमायाकारों, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडरों के साथ साथ 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स इस तकरीब में शिरकत करेंगे, जो भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के दौरान मुनक़िद की जा रही है। वजीर आजम मोदी सदर मेखवा के साथ बाहमी बातचीत भी करेंगे। तवक्को तबादला ख्याल आलमी चैलेंजों का अहाता किया जाएगा। यानी भरोसेमंद जामे शराकतदारों में से एक में मसरूफियात को मजीद मुस्तहकम करेगा। फ्रांस से नीस से आकाशवाणी न्यूज के लिए शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: ब्रेटिस्लावा में भारतीय बिरादरी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्लोवाकिया के पहले दौरे के लिए उनके मखसूस और मुनफरिद खैर मकदम की खातिर तैयारी कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अब जब स्लोवाकिया पहली मर्तबा किसी भारतीय वजीर आजम की मेजबानी के लिए तैयारियों में मसरूफ है, भारतीय बिरादरी के अफराद उनका शानदार खैर मकदम करने के लिए मखसूस तैयारियां कर रहे हैं। पेंटिंग, सकाफती पेशकश और रक्स के प्रोग्राम इस तारीखी दौरे के मौके पर तैयार किए जा रहे हैं। स्लोवाकिया में भारत के सफीर अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा है कि भारतीय बिरादरी अफराद के माबन तजस्सुस नुमाया तौर पर नजर आता है। बिरादरी में स्लोवाकिया के कौमी परचम लहराते हुए देखे जा सकते हैं। पिछले 5 साल के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान सफर और तबादलों में नुमाया इजाफे की वजह से जोश व खरोश में इजाफा हुआ है। वस्ती यूरोप में बिरादरी काम करने में भी मदद कर सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा तवक्को है कि अवाम से अवाम के ताल्लुकात में नई तहरीक पैदा करेगा और भारत स्लोवाक जमहूरिया के दरमियान सियाहत और बाहमी ताउन को मजीद मुस्तहकम करेगा। ब्रिसिल्वा से आकाशवाणी के लिए सिमिति पुलुरिति की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: भारतीय फिजाइया का एक AN-32 ट्रांसपोर्ट तैयारा आज सुबह मामूल की एक परवाज के दौरान आसाम में जोरहाट फिजाई स्टेशन पर गिरकर तबाह हो गया। इसमें फिजाई अमले के 5 अफराद जां बहक हो गए। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम ने फर्ज निभाते हुए अपनी जानें कुर्बान कर दी। भारतीय फिजाइया ने कहा कि हादसे की वजह जानने के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दी जा रही है। भारतीय फिजाइया ने जानों के इतलाफ पर दुख का इजहार किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी 5 अग्निवीरों की हलाकत पर दुख का इजहार किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क के लिए उनकी शुजात और खिदमात को फख्र और वकार के साथ हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने मुतासर होने वाले सोगवार कुनबों के साथ दिली ताजियत का इजहार किया है। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में मुनक्किदा 5 रोजा ब्रिक्स जरी कॉन्फ्रेंस आज कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर इंदौर आलामिया मुतफिक तौर पर मंजूर किया गया। इस एलामिया में खुराक की यकीनी फराहमी, किसानों की बहबूद, माहौलियात की मुआफिक काश्तकारी, जरई तजारत और डिजिटल जरात से मुतालिक अहम फैसलों को उजागर किया गया। जरात के मरकजी वजीर शिवराज फाबादी की नुमाइंदगी करते हैं और आलमी जरई पैदावार में इनका हिस्सा तकरीबन 42% है। उन्होंने कहा कि इंदौर आलामिया सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि ब्रिक्स मुल्कों के मुश्तरक अज़्म और इज्तिमाई जिम्मेदारी का मजहर है। कॉन्फ्रेंस के दौरान

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एक तारीख प्रकृति से अलग नहीं है, उसके अंश हैं। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जल की बात करना जरूरी हो जाता है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का एक विचार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस समाज ने अपने जल को सहेजना छोड़ दिया, उसने मानो अपनी स्मृति भी खो दी। उनके ही दर्ज पादकीय में अपना स्वर दे रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। जल की जड़ें संस्कृति की धाराएं।

0: दिव्य व्यवस्था में प्रकृति को मानक ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती, फिर भी आप पाएंगे कि एक रूपता बनी रहती है। पानी की राजनीति ने प्रकृति के इस स्वभाव को भूलने की अक्षम्य गलती की है, इसलिए हम प्रकृति से क्षमा नहीं पा सके हैं। बड़ी गलती हमसे ये हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है। यदि कुछ 1,00,000 साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है, तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते। तालाब बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है, न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी। तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए। जो पानी यहाँ रुककर साल भर ठहरता था, उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंडपंप लगाकर पानी निकाला है, डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी। लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे हैं, इसकी सजा भुगतनी होगी, हमें भूलना नहीं चाहिए। पहले आ जाता है हमारी धरती, सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है, इसमें 100 पैसा डालेंगे तो 100 पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे सीधे सजा या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है।
1: विश्व पर स्मरण है उस चेतना का जो हमें सिखाती है कि जल सिर्फ जीवन देता नहीं, जल ही जीवन है। प्रकृति की बात हुई, प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का नाम ही योग है, एक ऐसी विद्या जो महज देह को नहीं चेतना को साधती है, और आज यही योग विश्व के खेल मंचों पर अपना परचम फैल करने की दिशा में गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इस रोचक यात्रा के बारे में बता रहे हैं आर्य, जिनसे बातचीत की है।
2: परंपरा से प्रतिस्पर्धा तक,
3: हजारों वर्ष पहले भारत की धरती पर जन्मी एक साधना जिसने मन को स्थिरता दी, शरीर को शक्ति दी और आत्मा को संतुलन। ऋषियों के आश्रमों से शुरू हुई ये यात्रा आज विश्व के खेल मंचों तक पहुंच चुकी है। एक समय था जब योग केवल स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज योगासन प्रतिस्पर्धा का भी विषय है। खिलाड़ी कठिन आसनों में अपनी क्षमता, संतुलन, लचीलापन और मानसिक एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं योगासन भारत के महासचिव और विश्व योगा
4: हमारे साथ हैं योगासन भारत के महासचिव और विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य।

है और भारत की अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। बहुत विराट है, बहुत विशाल है और असीमित है, इसको बांधा नहीं जा सकता। परंतु योग के माध्यम से जो यात्रा समाधि तक जाती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, आठ अंगों से होते हुए व्यक्ति आठ अंगों की यात्रा में तीसरा जो पायदान है वो उसका नाम है योग आसन। और इन आसनों को हमने प्रतिस्पर्धा में लाने की जब बात की तो हमने देखा कि प्रयास तो कई वर्षों से हो रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों से हो रहे थे, परंतु उनकी जो दिशा थी वो वैज्ञानिक नहीं, वो स्पोर्ट्स परक नहीं थी, इस कारण वो स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे। और ये प्रयास देश में दुनिया में कई स्थानों पर धीरे धीरे हो रहे थे और उसमें अविद्या

वैज्ञानिकता भी बहुत अधिक थी। तो हमने उसको परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में, स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन किया और क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या वैधानिकता है, क्या इसकी सावधानियां हैं और इसको किस प्रकार हम विज्ञानपरक बनाते हुए खेल विज्ञान के साथ जोड़ते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत काम करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि नोकी और वो भी निर्धारित श्रृंखला वो निर्धारित की जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए डिफिकल्टी के लेवल पर, ए मायने सामान्य, बी मायने उससे और कठिन, सी मायने वो सन, ऐसे हमने कैटेगरी तय की और जो अपनी क्षमता के अनुसार कर सके उनकी आयु भी तय की, उनकी क्षमताओं का चयन वो स्वयं करें, उन आश्रमों में से करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और उसमें महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, क्लासिकल जो सूत्र है, उसको मॉडर्न के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की, वो था स्थिर सुखम आसनम, आप डूइंग द पोस्टर विद ईज इज कॉल्ड आसन। तो हमने इसके ऊपर काम करते हुए इसको

0: रामदेव जी से चर्चा की कि इसको बच्चों तक योग को कैसे पहुंचाया जाए। तो उस वार्ता में यह निश्चित हुआ कि खेल के मैदान थे वो संकुचित होते जा रहे, वहां पर बड़ी बड़ी अट्टाली, योगासन एक ऐसी विधा है, ऐसा खेल है जो आप घर बैठे 2x6 फीट का एक स्थान तय करें, ना कॉस्ट इफेक्ट। तो मुझे लगता है वो स्वदेशी खेल योगासन ही हो सकता है।
1: 2023 के गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए, काफी समय के बाद हुए थे, वहां योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुआ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि योगासन स्पोर्ट को प्रमोट करने वाला भारत में जो, उसकी थोड़ी भूमिका बताएं कि वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे स्काउटिंग करता है बच्चों को। और
0: योगासन को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूं ग्राउंड लेवल पर हमें सबसे बड़ी कठिनाई टेक्निकल हैंड्स नहीं थे, योग सिखाने में पोस्चर में उनको 1 मिनट खड़ा रहना बड़ा कठिन है साहब। स्पोर्ट्स के तो 1.5 मिनट करने वाला बच्चा ही 1 मिनट परफेक्शन से कर पाता है, क्योंकि उसको माउंटिंग और डिसमाउंटिंग दोनों चीजें उसमें काउंट होती हैं। और ये जब शिकायतें हमारे पास आने लगी कि बच्चों को इंजरी बहुत हो रही है, तो हमारा फोकस उस पर रहा कि पहले अच्छे कोचेस तैयार किए जाएं, और उसमें हमारे बहुत से जिज्ञासु लोगों ने आगे बढ़कर हमसे ट्रेनिंग लेने का क्रम शुरू किया, और वहां से शुरुआत हुई। आज 630 जिलों में ये हमारी खेल संघ है और उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ है। लगभग यदि मैं यूं कहूं कि 2000 से अधिक हमारे पास कोचेज हैं, ट्रेंड कोचेज हैं, लगभग 2000 से अधिक हमारे पास ट्रेंड रेफरीज हैं।
1: इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, आर्या जी ने दो चीजें बोली, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी भी आसन को शुरू करने से पहले नमस्कार की मुद्रा बनाना वो माउंटिंग है, और आसन समाप्त करने के बाद वापस से नमस्कार की मुद्रा बनाना ये डिसमाउंटिंग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल आपने एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया, नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। वहां कितने देशों ने हिस्सा लिया और किस तरह का रिस्पांस मिला जब आपने अलग अलग एशियाई देशों को पत्र लिखा कि योगासन की चैंपियनशिप हो रही है और आप अपना दल भेजिए?
0: एशिया में बड़ा जो सेगमेंट है वो मिडल ईस्ट एशिया का है, और बड़ी भागीदारी उनके माध्यम से हुई। उसमें 21 देशों की भागीदारी उसमें रही, ईरान से लेकर बहरीन से लेकर ओमान से लेकर, जिनको कहा जाता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि योगासन को लोगों ने धर्म मजहब जाति कास्ट और क्रीड से ऊपर रखकर देखा और उसमें सहभागिता की, और पूरी खेल भावना के साथ सहभागिता की।
1: गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया, 78 देशों के 700 से ज्यादा एथलीट उसमें शामिल हुए। इस आयोजन के पीछे की सोच क्या थी, कब आपको लगा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना चाहिए?
0: 78 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन अपने आप में अद्भुत है साहब। तो मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा और उनका योग के प्रति प्रेम को देना चाहता हूं। दूसरा, पूरे विश्व में परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की जो पहचान है, उसका एक विश्वास था लोगों में कि ये संस्था ऐसी नहीं है कि जहां जाकर हमारे साथ कोई अन्याय होगा, कोई बायसनेस होगी, जहां लेवल अच्छा नहीं होगा, जहां चैंपियनशिप का लेवल अच्छा नहीं होगा। तो एक वो संबल था।
1: कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपसे ये भी समझना चाहेंगे, विश्व चैंपियनशिप के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल खेल के पहुंचने की क्या संभावनाएं
0: हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में जाने की जो संभावनाएं हैं भारत के स्तर पर अत्यंत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूं, 78 कंट्रीज में से 25 से अधिक जो देश थे वो पहले से ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे, और जैसे ये बात हमारे माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को पता चली, उन्होंने कहा कि अरे 25 से अधिक देश तो अभी हैं, हम तो बहुत अच्छे से पिच कर सकते हैं अपनी ओर से, और उन्हें आश्वस्त किया गुजरात के अपने कार्यक्रम में कि योगासन को आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हम निश्चित रूप से अवसर दिलवाने का प्रयास करेंगे।
1: कार्यक्रम के अंत में आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो योग तो करते हैं लेकिन योगासन खेल को अभी अपना नहीं पाए हैं?
0: मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि योग भी करें, योगासन खेल को भी ज्वाइन करें। योगासन खेल आपको संबल भी देगा, आपको नए भविष्य के साथ जोड़ेगा, नई चुनौतियों के साथ लड़ने की ताकत भी देगा, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, जॉब्स भी देगा, कैश रिवार्ड भी देगा और एक अच्छा सुनहरा भविष्य भी देगा। यदि योग और योगासन का संबल लेकर आप आगे बढ़ेंगे, भारत का यह सुनहरा खेल, स्वदेशी खेल, ये दोबारा भारत को ना केवल सोने की चिड़िया बनाएगा, सोने का शेर बनाकर आगे लेकर जाएगा और उस दहाड़ को पूरी दुनिया सुनेगी।
1: योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है बल्कि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि योगासन केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक खेल भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक्स तक के सपनों तक योगासन की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर जयदीप आर्य, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से आनंद श्रीवास्तव की ये बातचीत बताती है परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ये यात्रा भारत की सांस्कृतिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। योग से हम अंततः आनंद और शांति की तरफ ही बढ़ते हैं और ऐसा ही कुछ होता है जब हम संगीत से जुड़ते हैं। 21 जून विश्व संगीत दिवस, यानी वो दिन जो पूरी दुनिया को एक सुर में बांधने का प्रयास करता है। संगीत किसी एक काल का नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच बहती हुई एक नदी है, कभी शांत, कभी उफनती, कभी कलकल करती। और जब ये नदी परंपरा की जड़ों से पोषण लेकर आधुनिकता के विस्तार में फैलती है तो जन्म होता है फ्यूजन का। दिल्ली के इसी सांगीतिक परिदृश्य से उभरा है एक अनोखा बैंड कुल्फी। नाम में जितनी मिठास है संगीत में उतनी ही गहराई। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में हमने की इन कलाकारों से एक संवादी मुलाकात।

0: पांच ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको देखकर उनके संगीत की गंभीरता का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें उससे रूबरू कराया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे वोकलिस्ट हैं संभव, आपके सभी साथियों का आकाश कि ये जो नाम है कुल्फी, आपने इसका नाम कुल्फी बैंड रखा।
1: जी, हम बहुत समय तक हमारे बैंड का नाम सोच रहे थे और हम सब किरोड़ीमल कॉलेज के छात्र हैं। वहाँ पे एक संगीत समिति है म्यूजॉक नाम की, हम सब उसी से निकले हैं, कुछ अभी भी है उसमें। और ऐसे डीयू म्यूजिक सर्किट में बहुत सारे फेस्ट होते हैं एंड कॉम्पिटिशन होते हैं। वहाँ पे IIT कानपुर के फेस्ट होते हैं, हर साल कॉम्पिटिशन होते हैं। हम वहाँ पे बस बैठे थे और नाम सोच रहे थे, और वहाँ पे कोई एक दोस्त कोई कुल्फी खा रहा था वहां पर। फिर वो बोला कि यार कुल्फी रख देते हैं नाम। लगा कि ये तो बड़ा स्वीट सा क्यूट सा नाम है। ठीक है,
0: संभव, जब आप म्यूजिक बना रहे होते हैं, कोई गाना चुन रहे होते हैं, तो लिरिक्स आप कैसे उसके चुनते हैं, वो लिरिक्स कौन लिखता है, और फिर आप उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे आप उसको तय करते हैं?
1: जैसे हमने कहा कि हम एक फ्यूजन बैंड अगर हमें कहें तो वो गलत नहीं होगा। हम इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और ऑलरेडी ट्रेडिशनल बंदिश है राग मेघ में, जो बड़े गुलाम अली खान साहब जी ने बनाई है, उनकी बंदिश है। हमने उसको रीइंटरप्रेट करा है हमारे एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में, और उसको एक सॉन्ग रसिक बलमा वो हमने खुद बनाया है। हमारे एक दोस्त हेमांग कारगीत ने वो लिखा है, धुन हमने बनाई है, तो वो गाना हमने खुद बनाया है। वो बंदिश स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है जो शास्त्रीय संगीत की बंदिश स्ट्रक्चर रहता है। हमें बनाते बनाते लगा कि इसमें एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगर मिल जाए उसमें और हम उसका एक फोर्स उसमें डालें तो वो अच्छा लग सकता है। और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे भी लग रहा है कि इसकी गुंजाइश है और ये सुनने में अच्छा लग सकता है, वो हम वहाँ पे कर करके परख परख के।
0: आपके अपने अनुभव में जितना अनुभव अभी आपको हुआ है, इन जनरल अगर हम ये म्यूजिक सीन की इस पूरे इस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, अगर हम क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आप जैसे लोग जिस तरह का संगीत कर रहे हैं, बैंड बनाकर कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, किन चीजों की कमी आपको लगती है जो थोड़ा बेहतर होता तो शायद आप जैसे और लोग आगे आते, संगीत और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ते?
2: हमें जितना समझ में आता है, एक जो दिक्कत लाइव म्यूजिक वेन्यूज की कमी आ गई है बहुत ज्यादा, एटलीस्ट दिल्ली में भी।
0: ऐसा क्यों?
2: अब वो ज्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। आई थिंक पैंडेमिक के बाद लाइव म्यूजिक वेन्यूज थोड़े से स्थिर हो गए थे, और अब वही चार पांच जगहें हैं जहां पे हम लोग भी ढूंढते हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंट म्यूजिक की आउटरीच, उसके फोरम आई डोंट बिलीव इतने एग्जिस्ट करते हैं, या अगर करते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं।
0: सॉरी, आप बताइए।
3: तो इंडिया में मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि म्यूजिक इज समथिंग दैट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड। आर्टिस्ट को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे हैव पुट इन टू लर्न देयर आर्ट एंड टू डू व्हाट दे आर डूइंग इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट
0: कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप जो बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लोगों को लगता है?
3: ओके, सो आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जैसे लाइव म्यूजिक का ही सेट अबाउट लाइव म्यूजिक वेन्यूज। तो लोगों को बाहर जाके खाना खाना होता है, उनको लाइव म्यूजिक सुनना होता है, पर लोगों को उसके लिए पैसे नहीं देने होते। जैसे
0: हाँ, वो
3: 500
0: लोग
3: रुपये एक फैमिली के कॉन्ट्रीब्यूशन से एक आर्टिस्ट का बहुत बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है वेन इट्स डन इन लार्ज नंबर्स। तो ये मेंटेलिटी इज समथिंग दैट आई हैव सीन हैपन इन इंडिया।
2: अलॉन्ग विद ऑल ऑफ दैट, ओरिजिनल म्यूजिक को ज्यादा आई डोंट थिंक लोग सुनना चाहते हैं अब। हमें भी जैसा शौर्य बोल रहा है, लोग खाना खाने आते हैं और उनको म्यूजिक फ्री में सुनना है। हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ा है कि हमें अपना सेट इस ये लेकर बनाना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि लोग उठ के फिर खाना खाने चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग बैठे रहें और हमें सुने। 1-1.5 घंटा सिर्फ खड़े होकर एक बैंड को सुनना अब बहुत छोटे आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है। ये आपको एक लेवल पे आपको सर्किट में कम से कम 10-10, 15-15 साल रहना पड़ता है ताकि लोग आपको 1.5 घंटा बस खड़े होकर सुने उनका ओरिजिनल म्यूजिक। पर कवर्स उन्हें भी करने पड़ते हैं।
0: तो अभी आप लोगों ने क्या तरीका निकाला आदित्य, जैसे आप जो बात कर रहे हैं जब कवर्स का जिक्र आपने किया, तो आपको लगता है कि कवर्स ज्यादा पॉपुलर हैं
2: जी हैं
0: राधर देन योर ओन कंपोजिशंस?
2: बिल्कुल है, पर हम थैंकफुली उस तरीके में इस चीज को टैकल करते हैं कि हम कवर्स अपने तरीके में अरेंज कर लेते हैं।
0: अच्छा,
2: हम बोलते भी हैं वीव कुल्फी फाइल्ड इट।
0: जैसे भी आपने एग्जांपल दिया संभव जो बंदिश है बड़े गुलाम अली खान साहब की, उसको आपने थोड़ा रीअरेंज किया, उसे आपने एक नया टच दिया।
1: उसी आइडिया को लेके मेन स्ट्रीम गानों को एक अलग नजरिए से देख के उनको प्रेजेंट करना इज व्हाट वी एज अ बैंड आल्सो डू।

कुल्फी जैसे बैंड हमें याद दिलाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई दीवार नहीं है। विश्व संगीत दिवस पर इन कलाकारों को संस्कृति भारती की शुभकामनाएं।

0: बीती 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ने 90 वर्षों का सफर पूरा किया। वो स्वर जो 90 वर्षों से इस देश की धड़कन बना हुआ है और उसके साथ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था कस्तूरी, जिसने बीते 5 वर्षों में एक गंभीर सृजनात्मकता और सांस्कृतिक ऊर्जा का परिचय दिया है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बीती 6 जून को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के सभागार में राम कथा में नृत्य का स्पंदन विषय पर मनाए गए कला पर्व ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को और कथा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। भरतनाट्यम हो या कथक, ओडिशी हो या मोहिनीअट्टम, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी, हर शैली में राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जीवंत हो उठते हैं। इसी उत्सव से कुछ स्वरों, कुछ भावों, कुछ शब्दों के साथ इस लय में डूबें, भक्ति की लय, नृत्य की भाषा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण ने राम कथा में निहित मानवता, करुणा और लोक मंगल के तत्वों पर प्रकाश डाला।
1: I would say it is a civilizational memory, just like महाभारत, और उसमें वही राम कथा आज मॉडर्न युग में भी चल रहा है। Actually there are more than 36 to 40 versions of the Ramayana itself. रामायण का जो स्पंदन है, जो लय है, वो निरंतर है, वो शाश्वत है। आपको व्याख्या मिलती है किस तरह से आपके अंदर वो इमोशंस और भावनाएं हैं। और मैंने दो लाइन लिखी थी कैके का प्रसंग कि कैके के कारण राम वन गए और इसी कारण वो राम बन भी गए।
0: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओडिशी गुरु विदुषी शरण लॉविन ने अलग अलग रामायण परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनके सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को बड़े विस्तार से बताया।
2: In Odisha, there's a literary tradition, obviously older, but literary, that's at least 500 years old. And what's unique or special about or significant is that in Odisha, all of the writers in Odia have interpreted many of the locations as being in Odisha.
0: भरतनाट्यम कलाकार श्रीधर वासुदेवन ने समाज की सौंदर्य चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की, जिसके आधार में
3: नृत्य एक भाषा है और इस नृत्य को, इस भाषा को परिभाषित करने के लिए नाट्य का रूप हमने धारण किया है और नाट्य के लिए विषय कुछ भी हो सकता है।

0: हमारे इस विषय की खोज में इस मार्ग को बहुत ही सुलभ बनाया है महाकवियों ने, महाआचार्यों ने, उसमें से महर्षियों ने, उपनिषद के बहुत सारे स्रोत दिए, सोच के रह के उसे भाव में अभिव्यक्त करने के लिए। और ये बात को मैं बहुत ही पुष्टिकरण से विश्वास में रखता हूं, मैं अपने आप को भरोसा रखता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं रामायण काल में
1: मोहिनी एकदम कलाकार। उन्होंने शूर्पणखा प्रसंग की कलात्मक और बेहद मानवीय व्याख्या प्रस्तुत की। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्रति प्रणय निवेदन से पहले राक्षसी रूप से ललिता रूप में शूर्पणखा का परिवर्तन एक बेहद रोचक नृत्य प्रस्तुति का आधार बनता है।
2: लक्ष्मण फ्रॉम दी बाउंड पल्लवा

राम के ही निर्गुण रूप में अपना आराध्य तलाश करने वाले कबीर, 15वीं शताब्दी का वो जुलाहा जिसने न केवल कपड़े बुने बल्कि मनुष्यता का एक ऐसा ताना बाना बुना जो आज भी जस का तस है। गुरु हर गोविंद साहिब सिख परंपरा के छठे गुरु, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, वो पवित्र स्थान जो धर्म और लौकिक न्याय दोनों का ही केंद्र बना। कुछ हमारी संस्कृति में, हमारी स्मृतियों में, हमारे सुरों में और हमारे रंगों में जीते रहते हैं। असम के अस्मिता के प्रहरी और असम के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, सरोद के जादूगर मैहर घराने के महान संगीतज्ञ उस्ताद अली अकबर, कला के महानायक मकबूल फिदा हुसैन, इन सभी विभूतियों के सांस्कृतिक अवदान को प्रणाम करते हुए संस्कृति भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन। यू शिव प्रसाद, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक संगीतकार परिवार में हुआ था, कम उम्र में ही आपको संगीत की विरासत मिली। आपने अपने चाचा से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। सम्माननीय सैक्सोफोनिस्ट स्वर शिल्पी यू वेंकट राव जी और चिंतालापुड़ी वराहला राजू गारू और पी दयाकर गारू के साथ संगतकर्ता के रूप में संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया, जो आपके व्यापक संगीत बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। आपको गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आपके संगीत के प्रति अटूट समर्पण, अनुशासन और जुनून को दर्शाता है, जो आपको अन्य संगीतकारों के लिए एक आदर्श बनाता है। आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश नहीं है। यू शिव प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ हंस ध्वनि से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं वातापी। इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी सभा। वी ब्रिंग यू अ सैक्सोफोन रिसाइटल बाय यू शिव प्रसाद। यू शिव प्रसाद बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फाउंडेशन एट एन अर्ली एज। He received his formal training in Carnatic classical music from his uncle, U. Venkat Rao Garu, Chintalapudi Varhala Raju Garu, and P. Dayakar Garu, and he began performing in public. Also trained in Western key flute, showing broad musical versatility. Awarded Kalanidhi Award from Gandhi Hindustani Sahitya Sabha, New Delhi. It reflects his unwavering dedication, discipline and passion for music, making him a role model for musicians alike. Today, he is accompanied on mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. U. Shiva Prasad, composition Vatapi, composed by Muthuswami Dikshitar, is set to Aditalam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग हंसध्वनि। कार्यक्रम को जारी रखते हुए इस कानड़ा रचना के बोल हैं निन्नु वीणा रामा। इसके रचनाकार हैं त्यागराजा। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज राग हंसध्वनि। कंटिन्यूइंग हिज रिसाइटल, यू शिव प्रसाद नाउ प्रेजेंट्स अनदर कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन राग नवरस कानड़ा। Composition Ninnu Veena Rama, composed by Thyagaraja, is set to Rupakam Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवरस कांडड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा। इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग नवरस कांडड़ा। यू शिव प्रसाद कंक्लूड्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विथ राग गौरी मनोहारी। कंपोजिशन जय जय पद्मनाभा, composed by Swati Tirunal, is set to Aditalam.

0: सैक्सोफोन वादन, आपके साथ मृदंगम पर विग्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही। कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashvani Delhi and was broadcast.
2: Akashvani Samachar ke saath main Ratna Pandey. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरीटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था।

0: लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 बजे से पूर्वाहन 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Nice, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. Mr. Modi was accorded a warm welcome by senior French dignitaries. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia tomorrow. During his 2-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini. He will also hold talks with his Slovakian counterpart, Robert Fico, in Bratislava. After concluding his Slovakia visit, Prime Minister Modi will return to France to take part in the G7 summit in the eastern part of the country in Auvergne on the 16th and 17th of this month. During the G7 summit, a senior administration official said, discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. The 5-day BRICS Agriculture Conference concluded at Indore in Madhya Pradesh today. At the end of the conference, the Indore Declaration was adopted unanimously. The declaration outlines key decisions on food security, farmers' welfare, climate-friendly farming, agricultural trade and use of smart technology in farming. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan said that BRICS nations represent nearly half the world's population and contribute around 42% of global agricultural output. He said, Indore Declaration is not just a document of agreement, but a symbol of the collective will and shared responsibility of BRICS nations. Union Home Minister Amit Shah today directed the High-Level Committee on Demographic Change to study the shift in population structure in border districts. Chairing the meeting of the committee, Mr. Shah also asked the panel to visit border areas, metro cities and industrial towns for an assessment of changes because of illegal migration and other unnatural causes. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force crashed at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning during a routine sortie, claiming the lives of 5 air warriors. The Indian Air Force IAF has expressed grief at the loss of the lives. The IAF said that a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. Defence Minister Rajnath Singh has also expressed grief at the loss of 5 air warriors. The government has appointed Lieutenant General Dheeraj Seth as the next Chief of the Army Staff with effect from 30th of this month. He is presently serving as the Vice Chief of the Army Staff. The present Chief of the Army Staff, General Upendra Dwivedi, is retiring from service the same day. Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that tensions arising from the conflict involving Iran, the United States and Israel have increased challenges in the global petroleum sector, leading to a rise in crude oil prices. Speaking to the media at Ludhiana in Punjab, Mr. Puri asserted that the centre has, however, taken measures to ensure that Indian citizens are not adversely affected by the increase in fuel prices. As part of the celebrations leading up to the International Day of Yoga IDY 2026, the Ministry of Ayush, in collaboration with the Morarji Desai National Institute of Yoga and Hebbled, will organize a landmark global online yoga event tomorrow. The online yoga session will be held from 6:15 a.m. to 7:35 a.m. and is expected to witness participation from more than 130 countries. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in a rain-affected first one-day international of the three-match series in Dharamshala, Himachal Pradesh. Chasing 195 runs, India overhauled the target in 22.5 overs. Indian skipper Shubman Gill scored unbeaten 84 of 66 balls. Earlier put into bat, Afghanistan were bowled out for 194 in 24.5 overs. And that is the end of this news bulletin.
2: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। शुभ रात्रि। जय हिंद।